0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

भक्त जनाश्रयम् च वरदम् वंदे शिवम् शंकरम् वंदे शिवम् शंकरम्। मैं आचार्य पार्थ कुमार व्यास मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से श्रावण मास के उपलक्ष्य में विवाह संबंधित श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना और शिव की पूजा का महत्व में आज प्रस्तुत करूँगा। हिंदू परंपरा में भगवान शिव और माता पार्वती को आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप और अखंड भक्ति की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्नता होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, इसलिए विवाह योग्य जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा विशेष महत्व माना जाता है। श्रावण मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है, मास है। इस महीने में अविवाहित युवक युवतियों योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए तथा विवाहित दंपति वैवाहिक जीवन में अपना दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास सौहार्द और सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए

0: जाते हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय या तो महामृत्युंजय मंत्र का जप, शिव पंचाक्षर स्तोत्र या तो शिव चालीसा अवश्य माता पार्वती के सामने करना चाहिए और स्तुति पाठ करते हुए ध्यान से महामृत्युंजय मंत्र जप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और सच्ची भावनाओं से की गई शिव और पार्वती की उपासना से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है तथा दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, धैर्य और पारंपरिक समान बढ़ता है। श्रावण मास की विशेष आराधना केवल विवाह की नहीं लेकिन भगवान शिव के आराधना और प्रसन्न करने का एक अवश्य महीना होता है। भगवान शिव सुख शांति समृद्धि देने वाला देव है, महादेव है, उसको हम महारुद्र के रूप में भी पूजते हैं। तो अवश्य हम श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना उपासना करें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

आलयां। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। रुद्रीप्राट के प्रथम खंड में 10 लोक है, इसमें विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय को पाठ करने से मन को शांति मिलती है, मनुष्य को विद्या ज्ञान मिलता है, वह सत्कार्यों की ओर अग्रसर होकर मोक्ष प्राप्त करता है।

हे गणपति, हम आपका आवाहन करते हैं। देवगणों के मध्य गणेश रूप में आप ही प्रजा रक्षक है, आप ही प्रिय मित्रों के भी रक्षक है। हम आपका आवाहन करते हैं, आप ही नवनिधियों के अधिपति है। हम आपका आवाहन करते हैं, हे विघ्नेश्वर, आप ही गर्भ बीज द्वारा समस्त जगत को प्रकट करते हैं तथा स्वयं प्रकट होते हैं। अतः हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु आप हमें शक्ति प्रदान करें। गायत्री त्रितुप जगस्य अनुष्टुप पंख्या सह बृहस्पति होष्णी हाका कुपसूचे बिहे सम्यंतुत्वा। हे परमेश्वर, गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप पंखी बृहति एवं उष्णी

0: दो चरणों युक्त, तीन चरणों युक्त, छह पद युक्त, छह रहित एवं छंद सहित, ये समस्त वेद मंत्र आपका कल्याण करें। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघाणाम रसाणाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज संडे 9 अगस्त श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करता हूं हिंदू महासभा की ओर से। शिव सती चरित्र का हम लोग पाठ कर रहे हैं। सती माता रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण करते हैं। गोस्वामी जी इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग आज का पाठ करें।

सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के प्रभाव को जानते थे।

सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी यह वर्णन कर रहे हैं कि सती ने जो परीक्षा की युक्ति अपनाई, इसको भगवान रामचंद्र जी ने जान लिया, पहचान लिया। अब इसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिक्रिया क्या होगी, जैसे कहे सती की इस परीक्षा से श्री राम जी की रिएक्शन क्या है, इसको आगे की चौपाई में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, जिसको हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने आज बालकांड दोहा संख्या 53 यानी दोहा नंबर 53 से पाठ किया। चलिए आज इसको यही विराम दो, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ओम सत्यम शिवम सुंदरम।

0: ओम शांति ही शांति ही शांति ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु साधुवाद जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मंत्र की व्याख्या। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। श्रोताओं, आज मैंने अभी जिस मंत्र का पाठ किया है, यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है। कितनी सुंदर प्रार्थना इस मंत्र के अंदर की गई है। लोग कहते हैं, क्या परमात्मा के दर्शन होते हैं? क्या परमात्मा को, भगवान को देखा जा सकता है? तो इस मंत्र में तो बिल्कुल बहुत सुंदर बात ये बताई गई है, वेदाहमेतम। वेद का अर्थ है टू नो, जानना। मैं इस पुरुष को जानता हूँ। वेद का मतलब है जानना, क्योंकि वेद शब्द जिस धातु से बना है, विद ज्ञाने, तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष एक वचन में आया है, वेद अहम एतम। एतम पुरुषम, इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ, जो कैसा है, महानतम, बहुत बड़ा है, बड़ों से भी बड़ा है, उससे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है। आदित्य वर्णम, आदित्य माने सूर्य, सूर्य का वो रचक है, प्रकाशक है, वही एक परमात्मा है। और फिर क्या कहा उसके लिए, तमसह परस्तात। तम का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, अविद्यादि दोष से परमात्मा रहित है। ऐसा जो परमात्मा है, उस परब्रह्म के ज्ञान और उसकी कृपा के बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उस परमात्मा को जान के ही जीवात्मा मृत्यु का उल्लंघन कर सकता है, अर्थात मृत्यु और जन्म के बंधन से वो छुटकारा प्राप्त कर सकता है। और अंतिम में मंत्र में बड़ी प्यारी बात कही गई है, नान्य पंथा विद्यते अनाय। बिना परमेश्वर की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना करने के सिवा इस दुनिया में मुक्त होने का कोई भी मार्ग नहीं है। इसलिए परमात्मा की ऐसी दृढ़ आज्ञा है, सब मनुष्यों को इसमें वर्तना चाहिए। सब प्रकार का हमारे जीवन का पाखंड और जंजाल हम छोड़ दें और उस परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं सत चिद आनंद, उस आनंद को ही हम इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जीवात्मा का ये कर्तव्य है कि वह ईश्वर को धन्यवाद करें। और इस मंत्र में जो पहला ही शब्द भगवान कहते हैं, वेद, मैं उसको जानता हूँ, वो परमात्मा कैसे हैं, अज्ञान, अविद्या, अंधकार से रहित है, पांच प्रकार के क्लेशों से रहित हैं, पांच प्रकार के दुखों से रहित हैं। जो पांच प्रकार के दुख बताए हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब जीवात्मा को बंधन में डालने वाले हैं, परंतु परमात्मा इन सब क्लेशों से, दुखों से रहित है।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम अहम इंद्रो न पराजिज्ञ ईत्वनम् न मृत्यवेव तस्थे कदाचन सोममीन मा सुन्वन्तो याचता वसून मे पूरवः सख्ये ऋषाथन् ओम शांते शांते शांते। आदरणीय श्रोताओं को पंडिता ज्योति भोला रघुबेर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से श्रावणी उपाकर्म के शुभ उपलक्ष पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हमें आत्मविश्वासी बनना है। आत्मविश्वासी के समक्ष कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। जब मनुष्य के हृदय में यह विश्वास हो जाता है कि मैं इस कार्य को कर लूँगा, तब संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। जब आत्मविश्वास के समुद्र में ज्वार आता है तो वह हिमालय जैसे महान पर्वत को भी तुझ कूड़े करकट की भांति बहा सकता है। आत्मविश्वासी के समक्ष पर्वत नम जाते हैं, सागर थम जाते हैं, सरिताएं सूख जाती हैं और सूर्य भी परमाणु बन जाते हैं। आत्मविश्वासी कठिनाइयों से भागता नहीं, अपितु वीरतापूर्वक उनका सामना करता है। और तो और, आत्मविश्वासी मृत्यु से भी नहीं घबराता। शत्रुओं ने कालोना के स्टीफेन को कैद करके पूछा, बताओ अब तुम्हारा किला कहाँ है? स्टीफेन ने हृदय पर हाथ रख कर कहा, यह है आत्मविश्वास की शक्ति। कभी मत सोचिए मैं दीनहीन हूँ, बेकार हूँ, निर्बल हूँ। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि मैं समृद्धि प्राप्त कर सकूँ। मैं तुच्छ हूँ, शूद्र हूँ। ऐसी भावनाएं जीवन को उठाती नहीं, गिराती हैं। आप ऐसा सोचिए, अरे मैं तो महान हूँ, मेरी शक्ति महान है। मैं पर्वतों को विदीर्ण कर सकता हूँ, सागरों को लांघ सकता हूँ, इस पृथ्वी को गेंद की भांति यहाँ से वहाँ रख सकता हूँ। सोचो कि मैं हाड़ मांस का निर्जीव लोथड़ा नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसका कभी पराजय नहीं होता। मुझ में दैवी शक्ति भरी हुई है। संसार का कोई कार्य ऐसा नहीं जिसे मैं न कर सकूं। श्रोताओं, वेदों और धर्म शास्त्रों में मानव जीवन को ऊंच बनाने वाले सैकड़ों और सहस्त्रों वाक्य भरे पड़े हैं। यह ठीक है कि मनुष्य में कमियों हैं, त्रुटियों और दोष होते हैं, परंतु अपने को बार बार निर्बल और पापी कहने वाला अपनी दीनता ही बढ़ाता है। ऐसे हीन विचारों को अपने पास मत भटकने दो। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांते शांते शांते।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम सत

0: भीमांस्तनमो अस्तु अस्मै।
1: जैसे जल अग्नि को रोकता है और अग्नि जल को रोककर उसे समाप्त कर देती है, उसी प्रकार हम दुर्गुणों और दुष्ट कर्मों को रोकें। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे ताकि दुष्ट कर्मों को भली भांति त्याग कर सत्कर्मों में प्रवृत्त हो सकें। जैसे जल और अग्नि तत्व अलग अलग होते हैं, वैसे ही सत्कर्म और दुष्कर्म अलग अलग होते हैं। सत्कर्म से दुष्कर्म को रोका जाता है, पुण्य से पाप को रोका जाता है। हम दुष्कर्म और पाप से अलग होकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके सुरक्षित रहें।
0: ओम।

0: सूर्य की कल्याणकारी किरणों द्वारा खींचे गए जल के कणों से जब मेघ वर्षा करते हैं तो पृथ्वी पर जीवन का संचार होता है। जब मेघ गरजता है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तो भूमि तृप्त हो जाती है। भूमि के तृप्त हो जाने से भूमि में अन्न धन की वृद्धि होती है। वर्षा जब संतुलित मात्रा में होती है तो सभी प्रकार के दिव्य संपदाएं, औषधि, वनस्पति, लताएं, जड़ी बूटियां, अन्न एवं जीवनदायी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। हरी भरी धरती माँ के समान सब जीवों की रक्षा करती है। सृष्टि की इस अद्भुत प्रक्रिया में परमात्मा की कृपा बनी रहती है।
1: ओम नमः सायं नमः प्रातर नमो रात्र्या नमो दिवा भवाय च सर्वाय च उभाभ्याम अकरं नमः।
0: सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु परमात्मा को सायंकाल, प्रातःकाल, रात्रिकाल और दिवसकाल में नमन। सभी कालों में परमात्मा के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करना प्रत्येक जीव का धर्म है, क्योंकि ऐसा करने से परमात्मा के दिव्य गुणों का प्रभाव जीव पर अवश्य पड़ता है। परमात्मा के गुणों का दिव्य प्रभाव जीव को पाप कर्म करने से रोकता है और उन्हें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सुख देने वाले और दुखों को हरने वाले परमात्मा को हृदय से नमन करते हुए अर्थात उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनावें।

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रही है। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ है संध्या। नमस्कार आपको अभी।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग के मामलों में 47 नई जाँच शुरू की है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अवधि में कुल 780 शिकायतों की समीक्षा की गई। FCC ने मॉरिशस में साइबर और ऑनलाइन धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की। इनमें मुख्य रूप से व्हाट्सएप स्कैम्स, फर्जी निवेश वेबसाइट और बैंक के डेटा की चोरी शामिल हैं। अदालती कार्रवाई की अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ असाइजेस जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें बिक्री के उद्देश्य से 400 ग्राम से अधिक का हशीश रखने का दोषी पाया गया है। अदालत ने यह फैसला शुक्रवार 7 अगस्त को सुनाया। ऑनलाइन जारी एक और रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की है। इस संस्था ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो साल 2015 से 2025 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कारखानों के बंद होने के से पहले दिख रहे रुझान का पहला आधिकारिक आकलन प्रस्तुत किया गया है। और विदेशी स्तर पर मध्य पूर्व युद्ध के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को नेटो शैली बताया जा रहा है, जिसमें एक देश पर हमला होने पर 3 देशों पर हमला माना जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि ये नया सुरक्षा गठबंधन आक्रामक ईरान को रोकने, अमरीका पर घटती निर्भरता को पूरा करने और इसराइल को संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड और अस्थिर हवाओं के कारण हमारे स्थानीय मौसम प्रभावित हो रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह पूर्वीय ढलानों तथा ऊंचे इलाके पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी। आज सुबह ही ऊंचाई पर बारिश के चलते कोहरा भी छाया रहेगा, जबकि दिन के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर बरसात होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पर लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। उधर तटवर्तीय इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:35 पर, जबकि शाम सूर्यास्त 5:55 पर। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के

0: साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 बजे आप विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: की बेला ताजगी भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। भोर की ये बेला आप लोगों के लिए मंगलकारी रहे, ईश्वर आप सबों पर कृपा बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी उम्मीद है। आप लोगों का हम स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस पर। आइए बढ़ें जरा हम आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वैदिक वाणी कार्यक्रम को लेकर। डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ देंगे।
1: मधुर शहद सी हो आपकी वाणी, आइए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस की ओर से वैदिक वाणी।

0: आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। वैदिक वाणी सेवा में प्रस्तुत है इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सौभाग्य है कि भारत से डॉक्टर वेदपाल जी आज के संदेश को प्रस्तुत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेदपाल जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं मेरठ विश्वविद्यालय में, और आप महर्षि दयानंद से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ लिख चुके हैं, अच्छे लेखक हैं, संपादक हैं, शोधक हैं, और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए आप सम्मानित कई बार हुए हैं। विशिष्ट मान आपको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की तरफ से प्राप्त है विशिष्ट विद्वान के रूप में। हमारा सौभाग्य है कि आज का संदेश आप आदरणीय प्रोफेसर वेदपाल द्वारा सुनने जा रहे हैं। प्रोफेसर जी,
1: वेदवाणी के सभी सुधी श्रोताओं को नमस्ते। मनुष्य मात्र की एक अभिलाषा है कि वह सुख को प्राप्त करे। मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं, पशु और पक्षी, वह सब भी सुख चाहते हैं, किंतु मनुष्य और इनमें अंतर है कि वह सुख को चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति के लिए सही सही प्रयत्न नहीं कर सकते। मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है और सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के मार्गों का अवलंबन करता है, सहारा लेता है। सामान्यतः मनुष्य के इन्हीं मनोभावों को वेद के एक मंत्र में व्यक्त किया गया है। मंत्र है, ओम हविर्भिरेके स्वरितः सचन्ते सुनवन्त एके सवनेषु सोमान सचिर्मदन्तः उत दक्षिणाभिर् नेज्जिह्मायन्त्यः नरके पतामे। मनुष्य क्योंकि दुख से बचना चाहता है, अनेक प्रकार के जो उसके जीवन में आने वाले कष्ट हैं, जिसे सामान्यतः हम नरक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसमें कोई रमणीयता नहीं है, इसलिए वह नरक है, तो उससे बचना चाहता है। सुख प्राप्ति के लिए जो मनुष्य मार्ग अवलंबन करता है, वह मार्गों को हम चार भागों में समझ सकते हैं। प्रमुख भाग है हविर भी रेके स्वरित सचंत है। एक एक कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि मुझे सुख, कल्याण, स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करते रहना चाहिए। मैं द्रव्य प्रदान कर

और यह द्रव्य प्रदान करना, पदार्थों का त्याग करना, दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला होता है। इसी का एक रूप सामान्यतः व्यक्ति पूजा पाठ के समय, उपासना के समय हवि प्रदान के रूप में लेता है, और वह आहुति प्रदान करके, अग्नि को समर्पित करके अथवा किसी अन्य माध्यम से पूजा करते समय अपने पूज्य और उपासक के सामने जिन भौतिक पदार्थों को रखता है, समर्पित करता है, वह समझता है कि इससे मुझे सुख की प्राप्ति हो सकेगी। एक सामान्य मार्ग यह है। दूसरा मार्ग है सुनवंत एक है सवनेसु सोमान। व्यक्ति यह समझता है कि यदि मैं सोम का सेवन कर लूं, तो मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सोम एक औषधि है और जिसके रस का पान करने पर कहा गया है कि जो उसका पान करते हैं वह भी अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। किंतु लौकिक वनस्पति या कोई औषधि का सेवन करने से व्यक्ति को जो लाभ होंगे वो बहुत क्षणिक होंगे, बहुत अल्प ही होंगे। वास्तविक सोम वह परमेश्वर है। उस परमेश्वर की उपासना करने से, उसका सानिध्य करने से मनुष्य वास्तविक सुख की उपलब्धि करता है, उसे प्राप्त कर लेता है, जिसको उपनिषद के ऋषि ने आनंद कह करके संबोधित किया है। तीसरा जो मार्ग है हविर मदंत है सुनमंत एक है सचिर मदंत है। व्यक्ति क्या करता है, वो स्तुति करता है, प्रार्थनाएं करता है, गीत गाता है, और ये सोचता है कि जो मैं स्तवन कर रहा हूँ, मैं जो प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मेरी जो वाणी से गीत गाए जा रहे हैं, जिसे प्रायः लोग कीर्तन अथवा संकीर्तन कहकर के भी संबोधित करते हैं, उससे भी सोचता है कि इससे मुझे अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, सुख विशेष की प्राप्ति हो जाएगी। और एक चतुर्थ प्रकार के व्यक्ति हैं जो ये विचार करते हैं कि यदि मैं कुछ दान करूं, मैं पुण्य करूं, मैं विद्वज्जनों को दक्षिणा प्रदान करूं, पंडितों को दक्षिणा प्रदान करूं, और उसी का रूप है कि समाज में जितने भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं, जिनकी कोई आवश्यकताएं हैं, यदि मैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में अपने द्रव्य का विनियोग कर देता हूं, तो मुझे इससे भी विशेष सुख की प्राप्ति हो सकती है। किंतु इस विशेष सुख की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम और भी है, और वह महत्वपूर्ण माध्यम है वह शब्द, उसके भावों को अपने जीवन में उतारना, जिसे हम प्रायः अपने धार्मिक कृत्यों में बहुत बार सुनते हैं। शब्द है स्वाहा। मनुष्य किसी भी उपासना पद्धति में जब किसी द्रव्य का त्याग करता है, तो उस समय जिस शब्द को बोल रहा होता है वह शब्द है स्वाहा। स्वाहा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति उठा करके अपने हाथ से किसी को द्रव्य प्रदान कर रहा है, किंतु उसके मन में ये भाव चल रहे होते हैं कि ये आ गया है और मांगने वाला है, तो कुछ ना कुछ इसे देना ही पड़ेगा। तो जहाँ उसके मन में ये भाव पैदा हुआ कि इसे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, और दिया उसने, किंतु वह स्वाहा नहीं हुआ है। स्वाहा का अभिप्राय है सु आहा, अर्थात सत्य कथन करना, प्रिय कथन करना। कई बार हम देखते हैं कि कोई याचक आया है, किसी संस्था से व्यक्ति पधारे हैं मांगने के लिए, कोई विद्यालय का निर्माण करना चाहता है, उसके लिए धन की कामना करता है। हम दे भी देते हैं, किंतु देते समय हमारी भावभंगिमा कुछ इस प्रकार की होती है कि जिसे यदि सामने वाला समझता है तो उसे वह रुचिकर नहीं लगती। तो ऐसा दान, ऐसा त्याग स्वाहा नहीं है। स्वाहा का अभिप्राय है सत्य, और स्वाहा का अभिप्राय है प्रिय। मैं जो भी कहूँ, सत्य बहुत कटु भी हो सकता है, इसलिए महाराज मनु ने कहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम

0: ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य तो बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात, सत्य ही बोलना चाहिए, किंतु सत्य के साथ शर्त है कि प्रियम ब्रूयात, जो हम बोल रहे हैं वह प्रिय भी हो। यदि हमारा वह सत्य प्रिय नहीं है तो वह सामने वाले का भी कल्याण नहीं कर सकता। सामने वाले के मन में जो भाव उत्पन्न होंगे उससे सौमनस्य नहीं हो सकता, सह अस्तित्व का भाव प्रबल नहीं होगा। इसलिए हम सत्य और प्रिय वचन का त्याग बोलते हुए ही द्रव्य का त्याग करें। दूसरी बात है स्व वाग आह, अर्थात जो हम कह रहे हैं वो हमारी हृदय की वाणी हो। केवल ऐसा ना हो कि कई बार जो हम कंठ से ऊपर शब्द बोल रहे होते हैं, हमारे हृदय में कोई विचार तरंगे दूसरी हैं और बाहर हम अभिव्यक्ति किसी और की कर रहे हैं। यदि ऐसे भाव के साथ भी हम कोई त्याग करते हैं, कोई सेवा का कार्य करते हैं, कोई समर्पण का कार्य करते हैं, अथवा हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और कर्तव्य का पालन करते हुए भी हमारे मन में उसके प्रति वह श्रद्धा नहीं है, आदर का भाव नहीं है, दायित्व का बोध नहीं है, हम उपेक्षा भाव के साथ कर रहे हैं उसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी स्वाहा नहीं है। स्वाहा का एक और भी अभिप्राय है, और स्वाहा का वह बड़ा महत्वपूर्ण अभिप्राय है कि जो हमारा अपना द्रव्य है, जो हमारा अपना पदार्थ है, जो हमारे अपने विचार हैं, उसको ही हम त्याग करें, उसको ही दूसरे को प्रदान करें। कई बार हम उपासना करते समय पुष्प तो कहीं अर्पित करना चाहते हैं, किंतु पुष्प किसी की वाटिका से उसकी अनुमति के बिना तोड़ कर ले आते हैं। व्यक्ति ने उस वाटिका को बनाया था सौंदर्य के लिए, और हमने अपनी उपासना के लिए उसके फूलों को तोड़ लिया, वहाँ से चुन लिया और ले जा कर के कहीं समर्पित कर दिया, तो वह समर्पण समर्पण नहीं है, वह स्वाहा नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे के द्रव्य का त्याग करके मैं यज्ञ करता हूँ, मैं कोई भी श्रेष्ठ काम करता हूँ, किंतु उसमें मेरा अपना योगदान नहीं है, उस द्रव्य की उपलब्धि में, उसकी प्राप्ति में भी मेरा कोई ना कोई योगदान हो। जिस पुष्प को मैं दे रहा हूँ, उस पुष्प को मैंने पैदा किया हो, उसको बनाया हो, जिस अर्थ का मैं त्याग कर रहा हूँ, उस अर्थ के अर्जन करने में, उस द्रव्य के कमाने में मेरा यदि पसीना नहीं बहा है, तो ऐसा जो द्रव्य है वह भी सचमुच में स्वाहा नहीं है, और वह द्रव्य न तो मेरे जीवन का कल्याण करने वाला हो सकता है, और न जिस व्यक्ति को मैं प्रदान कर रहा हूँ उसके जीवन का कल्याण करने वाला हो सकता है। दोनों के कल्याण के लिए अपेक्षित है कि मैं स्वयं परिश्रम से अर्जित द्रव्य का त्याग करूँ। और यदि हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो कि हम जो कुछ भी करेंगे सत्य बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, परिश्रम पूर्वक अर्जित द्रव्य को ही दूसरों की सहायता में देंगे, तो ऐसा व्यक्ति ही विशेष सुख को प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। हम सब भी उस सुख के भागी हों, इसी कामना के साथ।
1: श्रोताओं, अभी आपने मान्यवर डॉक्टर वेदपाल जी को सुना। वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध महात्मा है। बहुत कल्याणप्रद संदेश सुना, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आपने सुना, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा वैदिक वाणी।
3: Radio 24 hours a day.
4: इस समय 6:18 हुए हैं। पढ़ते हैं आप लोगों के लिए कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मेनिल और सैपुर के निवासियों को सूचित करता है कि रॉयल रोड मेनिल में बनागाली लेन, एपास रामजन, रविंद्रनाथ टैगोर एवेन्यू, जिंगू लेन, अली लेन, सोना लेन और

जू ब्रांच रोड के एक भाग में सिटी लेन, गुलजौ लेन, अमीराली लेन, कालीचरण लेन, पीतो लेन, धनी लेन एक और धनी लेन दो और आसपास के इलाकों में आज रविवार 9 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे। इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी काल्बासोर ओसेनाल के निवासियों को सूचित करता है कि मालाकोफ स्ट्रीट, ओसेनाल गवर्नमेंट स्ट्रीट, फिलिंग शेल और एमतिल इलाकों तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 9 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और अमिचे बोलो, गोकुला, बेलवी मोगल और मोलवाजिया के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि अमिचे बोलो, गोकुला, बेलवी मोगल और मोलवाजिया के पूरे इलाके में आज रविवार 9 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटे हुए बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतज़ाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। चलिए जरा सुनते हैं आज का विशेष कार्यक्रम श्रावण मास के अवसर पर आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की ओर से।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं समुहुढमस्य पां सुडे सुखाभिलाषा परिवार मोह नवं वयं कांतिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां।

श्रावण मास के उपलक्ष्य पर प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम अथर्ववेद के छठे मंडल का 18वां सूक्त की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। सूक्त का ऋषि अथर्वा है। देवता आत्मा ईर्षा विनाशनम तथा छंद अनुष्ठुभ हैं। इस सूक्त में मात्र 3 मंत्र हैं। आइए भावार्थ सहित इन मंत्रों को श्रवण करते हैं। ओम ईर्ष्यायाग्रातिं प्रथमां प्रथमस्य उपारामा अग्निं हृदयं शोकं तं ते निर्वापयामसि। ईर्ष्या अग्नि के समान है, हृदय में उत्पन्न होते ही उसे तुरंत बुझा देनी चाहिए। वह हृदय के आनंद को समाप्त करके उसे संतप्त करने वाली है। इसके वेग को शांत करना ही ठीक है। ओम यथा भूर्मृतमनामृत

जैसे यह भूमि मृत मन वाली है, अचेतन है, मरे हुए से भी अधिक मृत मन वाली है, और जैसे मरणासन पुरुष का मन होता है, इसी प्रकार ईर्ष्यालु का मन मृत हो जाता है। ओम अद्दो यत्ति हृदि श्रितं मनस्कं पतयिष्णुकं तदस्त ईर्ष्यां मुञ्चामि निरुष्माणं द्वौतोरिव। जब मनुष्य तंग दिल होता है तब ईर्ष्या का शिकार हो जाता है, यह उसके पतन का

का कारण बनती हैं। अतः ईर्ष्या को समाप्त करना ही ठीक है, मन में शांति बनी रहती है। इन तीन मंत्रों के भावार्थ सुनने के पश्चात हमें यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अथर्वेदीय सूक्त में ईर्ष्या से दूर होने के लिए उपदेश दिया गया है। पहले मंत्र में ईर्ष्या को आग के समान बताया गया है, जिस प्रकार एक छोटे से स्थान पर लगी आग फैल करके विराट रूप धारण कर लेता है और सब कुछ नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बढ़ती हुई ईर्ष्या भी अग्नि के समान सब कुछ भस्म कर लेता है। इस कारण वेद मंत्र में कहा गया, ईर्ष्याया प्रथमाम जागृम निर्वपयामसी। ईर्ष्या की पहली दहा की गति व वेग को तुरंत बुझा देनी चाहिए, इस भाव को पनपने ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हृदयम शोकम, किसी के प्रति जलन भाव रखना मन में शोक उत्पन्न कराता है। अतः ईर्ष्या से उत्पन्न हृदय के संताप को भी हटा देनी चाहिए। आगे दूसरे मंत्र में कहा गया है कि जो मनुष्य ईर्ष्या करता है उसका मन मर जाता है। मंत्र में दो उपमाएं ली गई हैं, पहला भूमि से और दूसरा मृत पुरुष से। जिस प्रकार भूमि में अचेतनता है उसी प्रकार ईर्ष्या करने वाला का हृदय हो जाता है। और दूसरी उपमा मृत पुरुष से लिया गया है। ईर्ष्या का वेग इतना तेज होता है कि वह खुद ईर्ष्या करने वाले को पहले मार देता है, भस्म कर देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का मन एक मृत पुरुष के मन की भांति हो जाती है, उसका हृदय पूर्ण रूप से जड़ हो जाता है। अंतिम मंत्र में कहा गया है कि जो मनुष्य दूसरों से जलता है उसका मन छोटा हो जाता है, उसमें उदारता समाप्त हो जाती है, उसका दिल तंग हो जाता है। छोटा या तंग हृदय वाला ही दूसरों से ईर्ष्या करता है। जिसका दिल विशाल हो, बड़ा हो, वह कभी भी किसी से जलेगा ही नहीं। अतः जो ईर्ष्या करता है निश्चित रूप से उसका पतन होता है, वह अपने जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान दूसरे लोगों के पतन करने में लगा रहता है। और जो दूसरों का बुरा चाहता है वह खुद कैसे सुखी रह सकता है। प्रायः दूसरों की प्रगति देखकर मन में उस प्रगति कर रहे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अतः मनुष्य मात्र को इस नकारात्मक भाव को अपने हृदय से निकाल देनी चाहिए। इस अथर्वेदीय सूक्त में ईर्ष्या के तीन मुख्य दुष्ट परिणाम दर्शाया गया है। पहला, मन में शोक और संताप का होना। ईर्ष्या मन को मार डालता है एवं हृदय को संकुचित कर देता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। अतः हम किसी के प्रति ईर्ष्या न करें। आर्य समाज के नियम में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अतः ईर्ष्या से बचने के लिए हम अपने कर्तव्य कर्म पर ज़्यादा ध्यान दें तथा जीवन में संतोष को अपनाएं। कहा भी गया है, संतोषम परमम सुखम, संसार में संतोष ही सबसे बड़ा सुख होता है। अतः परमात्मा अपने अमर वेद वाणी द्वारा मनुष्य मात्र को यही संदेश दे रहा है कि मनुष्य कभी भी किसी से ईर्ष्या भाव न रखें। जीवन में यदि हम सुख, शांति एवं समृद्धि और प्रगति चाहते हैं तो हमें अपने मन से दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव को त्याग देना चाहिए। ईर्ष्या का त्याग करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित रहते हुए अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपनी घर ही मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं।

0: रविवार 9 अगस्त 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 47 नई जाँच शुरू की और 14 लोगों को किया है गिरफ्तार। 400 ग्राम से अधिक हशीश रखे जाने पर दोषी पाए जाने की वजह से जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपए का जुर्माना भी। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जो साल 2015 से साल 2025 की अवधि को कवर करती है। और विदेश में मध्य पूर्व युद्ध के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को बताया जा रहा है नेटो शैली। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ और समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 47 नई जाँच शुरू की है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अवधि में कुल 780 शिकायतों की समीक्षा की गई। FCC ने मॉरिशस में ऑनलाइन धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। इनमें मुख्य रूप से शामिल है व्हाट्सएप स्कैम्स, फर्जी निवेश वेबसाइट्स और बैंक के डेटा की चोरी। जेनी येलप्पा की रिपोर्ट पर टीना बुदना का विवरण।
1: पहली अप्रैल से 30 जून तक संपत्ति की वसूली के मोर्चे पर अप्रैल में आयोजित पहली पब्लिक ऑक्शन में जब्त और कन्फिस्केटेड की गई 69 संपत्तियां बेची गई, जिससे 33 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम हासिल हुई। इनमें 48 कारें, 5 निर्माण उपकरण, 2 ट्रक, 7 मोटरसाइकिल और 7 नावें शामिल हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी के मामलों में 82.9 मिलियन रुपए की संपत्ति पर रोक लगाने के उपाय किए गए। FCC ने एक रिटायर्ड व्यक्ति का मामला भी सामने रखा जो व्हाट्सएप पर स्कैम का शिकार हुआ। एक व्यक्ति ने खुद को उसके बैंक का एम्प्लॉई बताकर उससे बैंक की जानकारी और वन टाइम पासवर्ड हासिल कर लिए। इसके बाद उसने उसे अपने पैसे एक कथित CQ अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा। इस तरह 20 लाख रुपए से अधिक की रकम विदेशों में मौजूद बैंक अकाउंट्स में भेज दी गई और बाद में अलग अलग खातों में बांट दी गई, जिससे समय रहते रकम वापस हासिल करना संभव नहीं हो सका। FCC ने मलागाजी बिजनेसमैन मामी गवातुमांगा से जुड़ी अपनी जांच का भी उल्लेख किया है, जिसे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम से जुड़ी अपनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन में से एक मानती है। अक्टूबर 2025 में मॉरिशस पहुंचने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग, इन्फ्लुएंस पेडलिंग की साजिश और अन्य कथित वित्तीय अपराधों को लेकर जांच शुरू की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करीब 7.3 बिलियन रुपए की संपत्ति पर क्रिमिनल अटैचमेंट ऑर्डर्स जारी किए ताकि जांच के दौरान इन सभी असेट्स को हटाने या छिपाने से रोका जा सके। वहीं इस अवधि के दौरान FCC की ओर से आयोजित 85 जागरूकता सत्रों में 12,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।
0: अदालती कार्रवाई की अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ असाइज

0: जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें बिक्री के उद्देश्य से 400 ग्राम से अधिक हशीश रखने का दोषी पाया गया है। अदालत ने यह फैसला शुक्रवार 7 अगस्त को सुनाया। शबनीज उजिया वाहिद अली की रिपोर्ट पर विवरण तीना बुदना का।
1: ये मामला 18 नवंबर 2024 का है। पुलिस ने रोशबा में रहने वाले जोसेफ जैक्सन लुई के घर की तलाशी ली थी। वो पशुपालक है। तलाशी के दौरान करीब 22 लाख रुपए की ड्रग बरामद हुई। ड्रग को एक बड़े प्लास्टिक बैग में छिपाकर रेफ्रिजरेटर में रखा गया था। घटना के समय जोसेफ जैक्सन लुई की उम्र 43 साल थी। उसने माना कि ड्रग्स उसी की थी। हालांकि उसने ये बताने से इनकार कर दिया कि ड्रग उसे कहाँ से मिली और वो उनका क्या करने वाला था। अपने रूलिंग में जज मेहदी मानरा खान ने अपराध को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की मात्रा और कीमत से पता चलता है कि इन्हें निजी इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए रखा गया था। आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। कोर्ट ने उसके गिल्टी प्ली, पारिवारिक स्थिति और अदालत में मांगी गई माफी को ध्यान में रखा। उसे शुरू में 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन गिल्टी प्ली के कारण उसकी सजा में एक तिहाई की कमी कर दी गई है।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि ऑनलाइन जारी एक और रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की है। इस संस्था ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो साल 2015 से साल 2025 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कारखानों के बंद होने से पहले से दिख रहे रुझान का पहला आधिकारिक आकलन प्रस्तुत किया गया। महामारी के दौर को छोड़कर भी वस्त्र उद्योग में रोजगार में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने इस अवधि के दौरान श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की है। शैली निर्बन की रिपोर्ट पर विवरण तीना बुदना का।
1: स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार निर्यात पर केंद्रित कंपनियों यानी ईओई में 2025 के दौरान रोजगार 10.2% घटा है। इन कंपनियों में टेक्सटाइल का बड़ा हिस्सा है और टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार 11.2% कम हुआ है। कोविड के वर्षों को छोड़ दे तो ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। इसके बावजूद इन कंपनियों के उत्पादन में सिर्फ 1.3% की कमी आई। इसका मतलब है कि ईओई में प्रति कर्मचारी उत्पादन क्षमता 9.9% बढ़ी, जबकि टेक्सटाइल में ये बढ़ोतरी 9.1% रही। कोविड के बाद की वापसी को छोड़ दे तो ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यानी जो फैक्ट्रियां अभी भी चल रही हैं, वे काफी कम कर्मचारियों के साथ लगभग उतना ही उत्पादन कर रही है। इस बढ़ोतरी की वजह ऑटोमेशन नहीं है। इन कंपनियों में मशीनों और दूसरी पूंजीगत संपत्तियों में भी कमी आई है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में आई गिरावट उससे कहीं ज्यादा रही। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है, जहां निर्यात पर केंद्रित कंपनियों ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से हटाया, वहीं पूरे निर्माण सेक्टर में जिससे स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करने वाली कंपनियां भी शामिल है, 2025 में रोजगार 0.6% बढ़ा। कई वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। इससे निर्माण सेक्टर की दो अलग तस्वीरें सामने आ रही है। निर्यात पर निर्भर टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार पर काफी दबाव है, जबकि स्थानीय बाजार के लिए काम करने वाला हिस्सा स्थिर है और कुछ कंपनियां नए लोगों को रोजगार भी दे रही है। लागत और प्रतिस्पर्धा के मामले में भी रिपोर्ट में अहम जानकारी दी गई है। निर्माण सेक्टर में मजदूरी की लागत डॉलर के हिसाब से 2025 में 7.7% बढ़ी, जो पिछले 10 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। वहीं निर्यात पर केंद्रित कंपनियों में मजदूरी की लागत 1.5% कम हुई। इसका मुख्य कारण कर्मचारियों की संख्या में की गई कटौती है।
0: हालांकि इस रिपोर्ट में शामिल अवधि साल 2025 पर समाप्त होती है।

0: इसमें वुलनिट्स, यूनिवर्सल फैब्रिक्स और क्लाइन टेक्सटाइल्स का वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मंदी की प्रक्रिया में जाना और नहीं मई 2026 से समाप्त हुई नौकरियां शामिल हैं। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। अर्थशास्त्री एरिक निंग का विश्लेषण, निर्यात क्षेत्र और कपड़ा उद्योग की चुनौतियां। जी हां, निर्यात उन्मुख उद्योगों में श्रमिक उत्पादकता में 9.9% की वृद्धि को लेकर अर्थशास्त्री एरिक निंग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस क्षेत्र में उत्पादन में 1.3% की गिरावट आई है जबकि रोजगार 10.2% घटा है। अर्थशास्त्री एरिक निंग के अनुसार जब नौकरियों व कर्मचारियों की संख्या घटती है तो उत्पादकता का आंकड़ा अपने आप बढ़ा हुआ दिखने लगता है। वस्त्र उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के भारी दबाव में है। बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में मॉरिशस में श्रम लागत बढ़ गई है। निर्माण सेक्टर में स्थिति अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है यानी कि उत्पादन में 1.4% की वृद्धि, रोजगार में 0.6% की वृद्धि, उत्पादकता में 0.8% की वृद्धि। ये एक सामान्य प्रगति है जबकि चिकित्सा उपकरण जैसे नए क्षेत्रों में कारोबार का विस्तार जारी है। हमारी सहयोगी शैली नियबन ने अर्थशास्त्री एरिक निंग से बात की, उनको सुनते हैं विवरण टीना बुदना का।
1: टेक्सटाइल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है लेकिन इसमें रोजगार के मौके कम हो रहे हैं। हर साल कुछ कंपनियां बंद हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि इसका ज्यादातर काम निर्यात पर निर्भर है। वहीं दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों में ऐसी कंपनियां भी है जो स्थानीय मंडी के लिए काम करती है, इसलिए स्थानीय स्तर पर कंपटीशन थोड़ा कम है और ये कंपनियां अपने कारोबार को जारी रख सकती है। रोजगार की संख्या यहाँ डिनोमिनेटर है। जब रोजगार की संख्या कम होती है तो रेशियो अपने आप बढ़ जाता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर कर्मचारी पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया है। कई बार प्रोडक्टिविटी सिर्फ इसलिए बढ़ती हुई दिखाई देती है क्योंकि रोजगार की संख्या कम हो गई है। आखिर लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? ये प्रोडक्शन को रोजगार की संख्या से डिवाइड करके निकाली जाती है। आगे चलकर किसी भी काम को कम खर्च में कर पाना बहुत जरूरी होगा क्योंकि हाल के दिनों में लगभग हर काम के लिए मजदूरों पर होने वाला खर्च काफी बढ़ गया है।
0: देश में मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर के एमएसएम ने कल पोर्टली में सनट्रस्ट में प्रेस को संबोधित किया। जोन जॉगो ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, इनमें फ्लैक में हाल ही में हुई पार्टी का जुटाव, राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल का पारित होना, नए विपक्ष नेता की नियुक्ति और वेरोनिक लुगोविन का इस्तीफा शामिल रहा। पूरी जानकारी कुणाल गोजी की इस रिपोर्ट में, विवरण विधिमा सिबोरन का।
2: जोली जोंगा ने विपक्ष के नेता के पद से अपने इस्तीफे पर बात की। जोली जोंगा का दावा है कि एमएसएम पेंशन योजना में संशोधन करेगा। उनके अनुसार मौजूदा प्रणाली मैनुअल वर्कर्स के प्रति अन्यायपूर्ण है। एमएसएम छोटे और मध्यम उद्योगों पर लगाए जाने वाले वैट की सीमा की भी समीक्षा करने का वादा करता है। एमएसएम ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में पूछताछ के दायरे में आई सांसद वेरोनिक लुगोविन के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन से जांच शुरू करने की मांग की है। एमएसएम सिंथेटिक ड्रग्स से संबंधित एक नई नीति की भी वकालत करता है। जोली जोंगा ने हाल ही में कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को बधाई दी है और टूर डी फ्रांस में किम्बर्ली लोकोपियनो के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की है।
0: विपक्ष के नेता के पद पर चेतन बाबूलाल की नियुक्ति को लेकर पॉल बेरांजे ने कहा कि संविधान के अनुसार इस पर फैसले लेने का अधिकार गणराज्य के राष्ट्रपति को है। एबन में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। पॉल बेरांजे ने साथ ही बताया कि विपक्ष के व्हिप

0: के पद के लिए जोआना बेरांजे का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। सिल्वाना परिमामन की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
1: पॉल बेरांजे ने चेतन बाबूलाल की विपक्ष नेता के पद पर नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी।
2: Nous faisons écrire au président de la République. Nous faisons écrire une lettre signée par nous trois pour éclaircir les choses et non pas pour demander quoi que ce soit. Nous, le président il exerce sa liberté totale sous la Constitution. Qui fait nous écrire? Parce que nous voulons bien mettre la Constitution dire si le président trouvait qu'il y a un nouveau parti qui a une majorité. Lui même pas obligé, lui capable sans le leader de l'opposition. Nous propose l'honorable Jean Béranger comme whip de l'opposition.
1: Paul Béranger ne Véronique Le Govindke Junior, ministre qui pad se istifé ko lekar patrakaron ke sawalon ka bhi jawab diya. Unhone kaha ki ve jaanch puri hone ka intezar karenge. Paul Béranger ka manna hai ki hal ke ghatnakramon खासकर पेंशन से जुड़े मामलों को देखते हुए शासन चलाने के तरीके में बदलाव जरूरी है। उन्होंने अन्य सुझावों के साथ फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट और एक इंडिपेंडेंट फिस्कल कमीशन बनाने का भी प्रस्ताव रखा है।
0: विदेश स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, मध्य पूर्व युद्ध के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को नेटो शैली का बताया जा रहा है, जिसमें एक देश पर हमला होने पर तीन देशों पर हमला माना जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि ये एक नया सुरक्षा गठबंधन आक्रामक ईरान को रोकने, अमेरिका पर घटती निर्भरता को पूरा करने और इसराइल को संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है। मई मध्य में ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला संगठन के कुछ कार्यकर्ता समुद्र के रास्ते सहायता लेकर गाजा में नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान इसराइली सैन्य बलों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। छूटने के बाद 24 में से 22 कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें हिरासत में बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अब आखिरी दौर पर पहुंच गई है, और लेकिन ईरान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सिर्फ शिपिंग रूट पर समझौते होने से जलमार्ग पूरी तरह से नहीं खुलेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान टैंकरों पर टोल वसूल रहा है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और दुनिया भर में महंगाई से हुए नुकसान का मुआवजा भी शामिल है। उधर बैंकॉक में दादा दादी की हत्या के बाद स्कूल में किशोर की ओर से ही की गई गोलीबारी के मामले में मरने वालों की संख्या शनिवार को 8 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 वर्षीय एक छात्रा की अस्पताल में ही मौत हो गई। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 14 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 7 की हालत शनिवार को गंभीर बताई जा रही है। घायल हुए लोगों में से अधिकांश 12 से 14 वर्ष की आयु के थे। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड और अस्थिर हवाओं के कारण हमारे स्थानीय मौसम प्रभावित हो रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह पूर्वीय ढलानों तथा ऊंचे इलाके पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी। आज सुबह ऊंचाई पर बारिश के चलते कोहरा भी छाया रहेगा, जबकि दिन के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर बरसात होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान

27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:35 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 5:55 पर।

0: कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग के मामलों में 47 नई जांच शुरू की और 14 लोगों को किया है गिरफ्तार। 400 ग्राम से अधिक हशीश रखने पर दोषी पाए जाने की वजह से जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपए का जुर्माना भी। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो साल 2015 से साल 2025 की अवधि को कवर करती है। और विदेश में मध्य पूर्व के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को बताया जा रहा है नेटो शैली। तो देश विदेश की नई खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादिर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

आइए शुभ समाचार सुनते हैं। वेजे रोड गुड लेंस में, वेजे रोड गुड लेंस में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराज तकुरी जिन्हें सब लोग रमेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर वेजे रोड गुड लेंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM लातू रोड रुश्तिया में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री गुराना तिमादू की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विमला तिमादू के घर लातू रोड गोष्ठिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM भीम झोरी स्ट्रीट त्यागोज में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेशमी जोरी सुकलोल पैदाशी नाम सुकलोल और जिन्हें सब लोग रेशमी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री विकास झोरी के घर भीम जोरी स्ट्रीट त्यागोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM सिउगुलाम लेन नुवेल फ्रांस में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मी डोलोरी जिन्हें सब लोग किशो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर सिउगुलाम लेन नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गामजिन लेन नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM एसएसओ रोड अपर वेल में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी फाजिला मुसफिया पैदाशी नाम बगाली और जिन्हें सब लोग फाजिला के नाम से भी जानते थे, वह इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 10 बजे उनके बेटे जनाब युतोजा मुसफिया के मकान एसएसओ रोड अपर वेल से निकालकर दफनाने के लिए प्लेंडे पापाई का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM सिबोरत लेन फ्लोरियाल में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रवीण सिबोरत जिन्हें सब लोग प्रवीण के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी पत्नी

श्रीमती प्रीति सिबरत के घर सिबरत लेन फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एलिब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। नंबर 16 प्रोविडेंस गली क्वार्टर मिलिटेयर में, नंबर 16 गली प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर में 69 साल की 69 years old की श्रीमती ध्रुवंती तपसी, श्रीमती ध्रुवंती तपसी पैदाशी नाम सुब्रन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके बेटे श्री हेमंत कुमार तपसी के घर नंबर 16 गली प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडू मास्का की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11:30 AM। नंबर 6 SSR गली सुदना कैथ्रोबोन में, नंबर 6 SSR गली सुदना कैथ्रोबोन में 80 साल के 80 years old के श्री कृष्णा अपिलियाप्पा, श्री कृष्णा अपिलियाप्पा की मृत्यु हो गई है, जिन्हें सब लोग बाला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती कमला इपिलापिया के घर नंबर 6 SSR गली सुदना कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। शाले रोड मोताई ब्लॉन्श में, शाले रोड मोताई ब्लॉन्श में 80 साल के 80 years old की श्री धनीलाल बाउहानी, श्री धनीलाल बाउहानी जिन्हें सब लोग ईश्वर के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीति बाउहानी के घर शाले रोड मोताई ब्लॉन्श से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉन्श की श्मशान भूमि ली जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे 2 PM। लोडेलेन फ्लिक ऑन फ्लैक में, लोडेलेन फ्लिक ऑन फ्लैक में 77 साल की 77 years old की श्रीमती शीला जोहाना चोइतन, श्रीमती शीला जोहाना चोइतन पैदाशी नाम सीगुलाम और जिन्हें सब लोग जोहनिया के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के 2 बजे उन्हीं के घर लुदाईन फ्लिक ऑन फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। अचना लेन लिस्कालिये में, उनहत्तर साल की 69 years old की श्रीमती निराला उचाना, पैदाशी नाम सनासी और जिन्हें सब लोग सरोज के नाम से भी जानते थे, सरोज और मैडम वासु के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के 2 बजे उनकी भाभी श्रीमती राधा अचना के घर अचना लीन लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। रेजिडेंस सेंट जोसेफ मोंटाई ब्लॉन्श में, इक्यासी साल की 81 years old की श्रीमती भानुमति पाइनी, पैदाशी नाम लेखराज और जिन्हें सब लोग मैडम पाइनी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के 2:30 बजे उनके बेटे श्री सुनील पाइनी के घर रेजिडेंस सेंट जोसेफ मोंटाई ब्लॉन्श से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडू मास्का की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। नंबर 3 बेसाक गली बोबासे में, 66 साल की 66 years old की श्रीमती गीता मणि नदरचंद, पैदाशी नाम लीलमोन और जिन्हें सब लोग गीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के 2 बजे उन्हीं के घर नंबर 3 बिसाक गली बुबासे से उठाकर

अंतिम संस्कार के लिए सैमौत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। और मगाजें गली विल्नो मेबर्ग में, मगाजें गली विल्नो मेबर्ग में 61 साल के श्री नवबल सिंह सियापत, श्री नवबल सिंह सियापत जिन्हें सब लोग राजेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर मगाजें गली विल्नो मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए डिटोंबू मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 10 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 7:22 हुए हैं।
2: स्पोर्ट्स न्यूज़
1: सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। रविवार की सुबह है, आप सबके लिए शुभ हो। किमले कुदेपिना को हार्दिक बधाई, शुभ शुभ और धन्यवाद भी। मॉरिशस का नाम दुनिया भर में ऊंचा करने के लिए महिला टूर दे फ्रांस के पूर्वांतिम चरण में कल के 8वें चरण में किम ने 4था स्थान प्राप्त किया। रेस की विजेता एवं येल्लो जर्सी डेमी वुलरिंग से वो केवल 38 सेकंड पीछे रेस पूरा कर पाई। ऐसे में किम जनरल क्लासिफिकेशन में भी एक पायदान ऊपर अब 9वें स्थान पर आ गई है जनरल रैंकिंग में। कल तक वो 10वें स्थान पर थी, यानी टॉप 10 में। गर्व से मॉरिशस की साइक्लिस्ट किमले कुदेपिना साइकिलिंग की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता टू डी फ्रांस में है। आज इसी टू डी फ्रांस का आखिरी चरण है। 99.2 किलोमीटर का माउंटेन स्टेज, इसलिए किमले कुदेपिना को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का बोलबाला है। एक ओर फ्रेंडली मैचों में दोस्त दोस्त न रहा और दूसरी ओर ट्रांसफर बाजार में प्यार प्यार न रहा। कल के फ्रेंडली मुलाकातों में मैनचेस्टर यूनाइटेड और पेरिस सेंट जर्मेन के बीच मैच ड्रॉ रहा 1-1। मैच कल रात 7 बजे आरंभ हुआ और 7:02 पर, यानी 2 मिनट बाद ही पेरिस सेंट जर्मेन ने पहली कील ठोंकी। एक पहला गोल स्कोर किया इब्राहिम एम्बाई ने, जो लिवरपूल का टारगेट है। खेल के दूसरे मिनट पर पेरिस 1-0, लेकिन 32वें मिनट पर ब्रायन एम्बेमो का इक्वलाइजर। मैच इसी स्कोर पर संपन्न हुआ। दोनों टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों को की परीक्षा ली, क्योंकि अभी पेरिस सेंट जर्मेन इसी बुधवार को यूरोपियन सुपर कप में एस्टन विला का सामना करेगा, यानी यूरोपियन चैंपियंस लीग विजेता और यूरोपा लीग विनर के बीच जो फाइनल होता है सुपर कप में, वो बुधवार रात 11 बजे खेला जाएगा। पेरिस सेंट जर्मेन वर्सेस एस्टन विला। सो कल मैच ड्रॉ रहा 1-1। यूनाइटेड की ओर से ब्रूनो फर्नांडेज एवं यूरी चेलमांस भी मैच सेकंड हाफ में मैदान पे उतरे और उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। इस मैच में मेसन माउथ फिर घायल हो गया 20 मिनट बाद ही, लेकिन कई नए खिलाड़ियों को भी चमकने का मौका मिला। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड 1, पेरिस सेंट जर्मेन 1। बाकी मैचों में कल टोटेनहम हॉटस्पर और गेटाफे ने भी मैच ड्रॉ किया 1-1। टोटेनहम के लिए कोनो गलागे का ये मात्र गोल रहा। फिर चेल्सी ने एसी मिलान को 3-0 से परास्त किया। चेल्सी के लिए वाओ पेड्रो का एक डबल, मोजेस काइसेडो ने तीसरा गोल स्कोर किया। और ऐसे में चेल्सी अब कल, बल्कि आज रात से कल सुबह तक मलेशिया में एक और मैच खेलने जा रहा। आखिरी मुलाकात

होगी मलेशिया में जोहोर टीम के विरुद्ध, जिसका कोच है क्साबी अलोंजो, चेल्सी के कोच क्साबी अलोंजो का पुराना साथी जो साथ में लिवरपूल में आया था साल 2004 में। लुइस गार्सिया वहां का मैनेजर है और इधर क्साबी अलोंजो, दोनों की मुलाकात होगी मलेशिया में आज रात से कल सुबह तक, चेल्सी का आखिरी फ्रेंडली मैच। यूवेंटुस की हार हुई कल रात, यूवेंटुस 1 इंटर मिलान 2, और आज के लिए भी कई महत्वपूर्ण फ्रेंडली मैच रखे गए हैं। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, आर्सेनल भी आज अपना मैच खेलने वाला है। फिर आज शाम 5:30 5:30 PM लिवरपूल वर्सेस आईएस मोनाको, ये मैच एनफील्ड में खेला जाएगा। नए कोच अंडोनी इराउला का पहला मैच होगा एनफील्ड में, और कई खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि अगले 21 अगस्त को प्रीमियर लीग शुरू हो रही है और 16 अगस्त को एफए कम्युनिटी शील्ड के साथ इसका पर्दा उठ रहा है, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। इसलिए सभी टीमें एकदम तैयारी में लगी हुई हैं। फिर टर्की की ओर बढ़ें तो आज ट्राबजोंस्पोर भी अपना फ्रेंडली मैच खेलने वाला है। बता दें कि मोहम्मद सलाह को कल टीम के सामने प्रस्तुत किया गया, 25,000 फुटबॉल फैंस के सामने कल मोहम्मद सलाह का स्वागत किया गया और वो एकदम खुश होकर रो पड़ा क्योंकि टर्की में भी उसके इतने सारे फैंस उसका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि अब वहां पर भी अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। मोहम्मद सलाह आज संभवतः नहीं खेल पाएगा लेकिन अगले मैच में उसकी एंट्री होगी। सो इतना सब कुछ फ्रेंडली मैचों को लेकर। ब्राइटन ने कल एएस रोमा को 3-0 से परास्त किया। फिर रियल मैड्रिड की भी जीत हुई 2-1 से फेरेनवारोस के विरुद्ध। ट्राबजोंस्पोर, बल्कि ये मैच वो खेल चुका है कल, ट्राबजोंस्पोर की हार हुई, गुडजेपे ने उसे 2-1 से हराया। गलातासराय 1 विलारियल 2। अब आज भी कई अन्य मैच खेले जाएंगे, जबकि इंग्लैंड के लीग कप में भी कल काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबले थे और इनमें वेस्टहम यूनाइटेड की जीत हुई 3-1 से पोर्टमूव के विरुद्ध। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मैचों में लीग कप का ये पहला राउंड है, कैम्ब्रिज यूनाइटेड 2-1, क्वींस पार्क रेंजर्स 1 मिलवॉल 1, शूट आउट में मिलवॉल की जीत हुई 2-0 से। फिर बांसले 1 विगन 1, बांसले जीत पाया 6-5 पेनाल्टी शूट आउट पर। ब्रैडफोर्ड की जीत हुई 2-0 से। ये सब रिजल्ट, ये सब नतीजे इंग्लिश लीग कप से। जबकि स्कॉटिश प्रीमियर लीग में कल जो दो मैच खेले गए उनमें डंडी ने एबरडीन को 2-0 से हराया, तो सिन मिरेन की जीत हुई 1-0 से सिन जॉनस्टोन के विरुद्ध। ट्रांसफर बाजार में भी बहुत कुछ हो रहा है। रोनाल्ड अराउहो आ गया है लिवरपूल में, आज वो अपना मेडिकल पूरा करेगा। सबको चौंकाते हुए एक सरप्राइज पैकेज कह सकते हैं लिवरपूल का डिफेंस संभालने के लिए। 27 ईयर ओल्ड यूरुग्वे का कप्तान एवं डिफेंडर रोनाल्ड अराउहो आ रहा है लिवरपूल में, और एक सीजन लोन पर £55 million पर ये सौदा तय हो पाया है। और खबरों के मुताबिक एक बाई आउट ऑप्शन भी है, अगले सीजन यदि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो लिवरपूल उसको हमेशा के लिए खरीद सकता है। सो देखते हैं कि उसकी जोड़ी क्या रंग लाती है वर्जिल वैन डाइक के साथ लिवरपूल में। जहां तक ब्रैडली बाकोला का सवाल है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उसका बोझ ट्रांसफ़र फी काफ़ी भारी लगने लगा है, 140 मिलियन यूरो से कम पेरिस सेंट जर्मेन नहीं लेगा और लिवरपूल केवल 110 से 120 तक ही आना चाहता है। और इस बीच इब्राहिम एम्बाए का ट्रांसफ़र भी टंगा हुआ है। सो अब लिवरपूल क्या करेगा ब्रैडली बाकोला को लेकर, जो आना चाहता है लेकिन पैसा बोलता है और लिवरपूल इतना देना नहीं चाहता। सो ये सब चल रहा है ट्रांसफ़र बाज़ार में। रोड्री जो है वो मैनचेस्टर सिटी से उसने खुद कह दिया है कि वो एफसी बार्सिलोना में जाना चाहता है और बार्सिलोना उसके लिए एक प्रथम £40 million का प्रस्ताव यूरो का प्रस्ताव भेज चुका था, लेकिन मैनचेस्टर सिटी उसके लिए कम से कम 60 मिलियन पाउंड लेगा। इस कारण बार्सिलोना को एक इम्प्रूव्ड विद एक बढ़ा हुआ प्रस्ताव भेजना होगा, लेकिन खबरों के मुताबिक रोड्री बार्सिलोना

0: में जाने वाला है। क्रिकेट में श्रीलंका ए और भारतीय टीम के बीच जो तीन दिवसीय टेस्ट मुकाबला है, आज उसका तीसरा दिन आरंभ होगा। कल भारतीय टीम ने अपनी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाए। उसके पास अभी भी 4 विकेट बचे हुए हैं, जबकि वो 7 रनों से अभी पिछड़ रही है। श्रीलंका ने 363 रन बनाए थे। और क्रिकेट की बात हुई तो बता दें कि मॉरिशस में भी आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा के सीजन 4 में कल कंटिनेंटल चीटाज की जीत हुई 7 रनों से वन हेल्फ जागुआ के विरुद्ध। अब आज इसी आईसीई सीजन 4 में आज सुबह 9 बजे एएमजी पैंथर्स का मुकाबला एपीपी लेपर्ड से होगा मापू के एसएसआर क्रिकेट ग्राउंड में। फिर बात करें फुटबॉल की तो कल बुनाकेई में नहीं बल्कि रेड स्टार बुनाकेई ने कल रेनबो ग्रांबे को 2-1 से हराया। ये रोशनोआ दुदला बीमा चैलेंज कप के अंतर्गत ये मैच खेला गया। इसी में आज शाम 3:30 बजे रोशनोआ के मैदान पे ही एक और मैच होगा स्पोर्टिंग बॉयज एससी वर्सेस एसोसिएशन रोशनोआ के बीच। और मॉरिशस के एक्स इंटरनेशनल खिलाड़ी गोल्डन स्टार्स के कोच अमीन दिलू को गोल्डन बूट्स और गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी शुक्रवार को उन्हें फुटबॉल में भारी योगदान देने के लिए और सबको एकत्र करने के लिए अमीन दिलू को ये सम्मान दिया गया। सुबह के 7:11:33 खबरें यहां पर समाप्त हुई। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
3: Dil ki bahar, subah ka nazrana, Radio Mauritius par.
4: सुबह के 7:13 हुए हैं। हमारा आपका साथ सुबह का नजराना कार्यक्रम में है। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं, साथ आपका बड़े एंटरटेनमेंट के साथ देंगे हम। हमारा आपका साथ है 9 बजे तक। तो चलिए हम सुबह का नजराना कार्यक्रम में आपको एक प्यारा सा ऐसा गाना सुनवाते हैं जिसे गुनगुना कर ही आप अपने इस सुबह को रंगी बना डालेंगे।

म्यूजिक पहचान में आ गई ही होगी। खिलाड़ियों के खिलाड़ी मूवी का ये गाना है और आवाज़ तो आप पहचान ही गए हैं, कुमार सानू और साधना सरगम की हैं।

0: MBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: इस समय 7:19 हुए हैं। कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से सुनिएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मोगा के निवासियों को सूचित करता है कि लोगावे मोसेल मोबागातेल लुक्लेजियो एवेन्यू

0: Old Ridgeway Road, Mosselman, Eureka, Montagne Horry, Ambe और Babula Lane इलाकों में आज रविवार 9 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। लालमाटी के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रॉयल रोड के सीडब्ल्यूएआर के आसपास के इलाकों में ओवरसीज रोड, जानकी प्रसाद लेन, फोआग लेन, सिटी एडेसे, मोसेलमा वीआरएस, एनएचडीसी, सिमेटियर दे बोबोआ और आसपास की गलियों में आज रविवार 9 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इधर बोबासंग के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि डॉक्टर रेड के एक भाग में एवेन्यू महादेव बिल्टू के एक भाग में एवेन्यू जुपेरे, एवेन्यू शातोनेव और आसपास के इलाकों में आज रविवार 9 अगस्त को ही सुबह 8:15 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे, जिस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी ओकुले के निवासियों को सूचित करता है कि रॉयल रोड के एक भाग में रामप्रसाद रामदीन स्ट्रीट और आसपास के इलाकों में कल सोमवार 10 अगस्त को सुबह 9 बजे से दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और बेलोम तथा सहमौते बेजिकाप के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मंगलवार 11 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय 7:22 हुए हैं।
1: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से सुनिए मंगल विचार।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, वयम श्याम पतयो रईणाम, अर्थात हे प्रभु, हम आपकी उपासना करने वाले धन के स्वामी बने। हर मनुष्य चाहता है कि उसके पास धन हो। धनवान बनने के लिए कोई मेहनत करता है तो कोई दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश करता है। दूसरे के धन पर अपना अधिकार करना एक बुराई है, जिससे छुटकारा पाने के लिए अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है। वह कौन है जो ऐसा संस्कार दे सके जिसे पाकर व्यक्ति किसी दूसरे के धन पर कब्जा न करे? आइए विचार करें। संस्कार तीन प्रकार के होते हैं। पहला, कर्मगत, जो संस्कार पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होते हैं। दूसरा, वंशानुगत, जो संस्कार माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि बड़े बुजुर्गों से प्राप्त होते हैं। और तीसरा, संसर्गगत, जो संस्कार संगति से प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों को बदलना कठिन है, परंतु माता पिता यदि प्रयास करें तो वे अपने बच्चे की हर बुराई को दूर कर सकते हैं। एक घर में माता पिता और उनके दो बेटे थे। माता पिता दोनों पुत्रों को स्कूल भेजते समय मिठाई खरीदने के

0: के लिए पैसे देते थे। बड़ा बेटा अगर कहीं पर अपने पैसे रख देता था तो छोटा बेटा चुपके से अपने बड़े भाई के पैसे को ले लेता था। माता पिता ने यह देखा तो उन्होंने छोटे बेटे को समझाया कि बिना दिए गए दूसरे के पैसे को ले लेना गलत है। यह बात छोटे बेटे की समझ में नहीं आ रही थी। जब भी उसकी दृष्टि बड़े भाई के पैसे पर पड़ती थी तब उसके मन में लोभ आ जाता था और वह पैसे उठा लेता था। उसकी इस हरकत पर माता पिता दृढ़ता से उसे समझाते रहे कि दूसरे के पैसे को हथियाना गलत है। यह समझाते समझाते कई साल बीत गए। छोटा बेटा बड़ा हुआ, वह बहुत बड़ा व्यापारी बना। व्यापार में ग्राहकों को लूटने के उसे कई अवसर मिलते थे, परंतु उसने कभी भी किसी ग्राहक के पैसे नहीं लूटे, बल्कि केवल अपनी मेहनत से वह धनवान बना। माता पिता ने उसे बचपन से ही जो संस्कार दिया उसके प्रभाव से दूसरे के पैसे हड़पने की बुराई से बेटा मुक्त हो गया। माता पिता के अलावा अच्छे संस्कार देने का दायित्व गुरु का होता है। श्रेष्ठ गुरु की संगति पाकर मनुष्य दूसरे का धन पाने का लोभ छोड़ देता है। एक देश का राजा पड़ोसी देश पर हमला करके उसका धन लूटने का प्रबंध कर रहा था। तभी उसका गुरु महल में पहुंचा। गुरु को देखकर राजा ने कहा, गुरुजी, मैं पड़ोसी देश पर आक्रमण करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं विजयी हो सकूँ। गुरु ने राजा को सोने का एक सिक्का देते हुए कहा, जब मैं आपके महल की ओर आ रहा था तब मुझे रास्ते पर सोने का यह सिक्का मिला, आप इसे रख लीजिए। राजा ने आश्चर्य से कहा, गुरुजी, मेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं इस सिक्के से क्या करूँगा? गुरु ने कहा, जो व्यक्ति दूसरे देश का धन लूटने का विचार कर रहा है, मेरी दृष्टि में वह दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। सोने का यह सिक्का मैं किसी गरीब को देना चाह रहा था, इसीलिए आपको दे रहा हूँ। राजा अपने गुरु का संदेश समझ गया। उस दिन से उसने कभी भी दूसरे देश का धन लूटने का विचार नहीं किया। श्रोताओं, सच्चे गुरु अपने शिष्य को दूसरे का धन हड़पने की वृत्ति से मुक्त करते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने उसे सिखाया था, अल्पम अपि परद्रव्यम न हर्तव्यम, दूसरे के धन को हड़पने की बिल्कुल चेष्टा न करो। संस्कृत के गुरुओं ने लिखा है, परद्रव्येषु लोष्टवत् सपंडितः, जो दूसरे की संपत्ति को मिट्टी के समान मानता है वह पंडित होता है। अपने माता पिता और गुरु से उत्तम संस्कार पाकर हम दूसरे के धन को हड़पने की वृत्ति छोड़ दें, दूसरे के पैसे पर कभी दृष्टि न डालें। यदि धनवान बनना चाहते हैं तो केवल अपनी ही मेहनत से धन के स्वामी बने। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस पर हमारा आपका साथ है और सुबह की ये बेला है, 7:30 बजे हैं। हमारा आपका ये साथ एंटरटेनमेंट का होगा, थोड़ी बहुत गपशप का होगा और ऐसे में आपकी सुबह बहुत मंगलकारी रहे, ये हमारी उम्मीद रहेगी। ऊपर वाले से प्रार्थना यही है कि आप लोगों के जीवन में हर पल खुशी रहे, हर पल संतोष रहे। साइकिल की घंटी की ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, बेशक अंदाज़ा हुआ होगा आपको कि हम पेश कर रहे हैं 2 आँखें 12 हाथ मूवी का वो रोमांटिक सा गाना जो अपने ज़माने का बहुत ही पॉपुलर गाना रहा है। चलिए सुनते हैं हम कीर्ति कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ें।

0: झलकियां
1: झलकियां एक झलक जरा देखें हम रेडियो के प्रोग्रामों की। चलिए जरा याद दिला दें आपको कि इस वक्त तो हम आपके लिए सुबह का नजराना पेश कर रहे हैं और 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। अभी से फिर आप लोगों के लिए आप ही लोगों का प्रोग्राम पैगाम आपके नाम हम पेश करेंगे और ये प्रोग्राम चलेगा 9 बजे तक। 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे आज का मंगलाचरण कार्यक्रम और विशेष तौर पर आधारित रहेगा श्रावण मास के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम। आज आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की ओर से ये प्रोग्राम सुनिएगा, पेश करेंगे विकास। 10 बजे होंगे संक्षिप्त समाचार, उसके बाद उर्दू प्रोग्राम आप निसार से सुनिएगा। इसके बाद 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद तमिल कार्यक्रम सुंदरम की प्रस्तुति में होगा। राजेंद्र की प्रस्तुति में तेलुगु प्रोग्राम 12 बजे सुनिएगा आप और 1 बजे मराठी प्रोग्राम शिरीष लेकर आएंगे। ऐसे में इस प्रोग्राम के बाद 2 बजे चाइनीज प्रोग्राम जिनकी प्रस्तुति में होगा रत्ना लेकर आएंगे। आज का गुजराती कार्यक्रम 3:30 बजे और 4 बजे आप और हम कार्यक्रम सुन पाएंगे आप पूजा की प्रस्तुति में, जिसके फौरन बाद पूजा ही पेश करेंगी आपके लिए आज का तोहर पसीन कार्यक्रम।

तो हर पसंद कार्यक्रम के बाद आप 6 बजे सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन, 6:30 बजे चाइनीज प्रोग्राम होंग होंग की प्रस्तुति में होगा और 7 बजे आज का तमिल प्रोग्राम युवा हासन पेश करेंगे। वंदना तेलुगु कार्यक्रम पेश करेंगी 7:30 बजे और 7:50 पर गीत गंगा प्रोग्राम मराठी भाषा में शिरीष की प्रस्तुति में। ₹8:10 पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम भक्ति गीतों का प्रोग्राम डॉक्टर अलका दनपत जी पेश करेंगी और समीर पेश करेंगे आज का उर्दू कार्यक्रम महफिल शब रात्रि के 8:40 पर और 9 से 11 बजे तक आप सुनिएगा आज का भोजपुरी तड़का प्रोग्राम उषा की प्रस्तुति में। भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के बाद 11 से रात्रि के 12 बजे तक पुराने गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल आज सुनिएगा ये प्रोग्राम वेदिता की प्रस्तुति में। तो पल पल की खबर दी हमने आपको और हर पल को आप जरूर रेडियो मोशस के साथ बिताइएगा। आप लोगों के नाम ये प्रोग्राम रहे झलकियां में। फिलहाल तो चलिए हम जरा बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर। प्लान मूवी का ये गाना है, प्लान किया है कि हर पल को आप प्यार से जी लीजिए, बहुत मज़े से जी लीजिए, हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा कभी, सब्र से काम लेकर देखे सफ़र कठिन सही, आपकी आपका धैर्य रंग ज़रूर लाएगा कभी, जो पल आज है वो पल में चला जाएगा, इसीलिए हर पल को यादगार बना लीजिए। 7:41 रेडियो मॉरिशस आपकी सेवा में।

0: जी लीजिए, हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर सिर्फ यादें आती हैं। वक्त नहीं, वक्त की बात की तो बताएं आपको 7:46 हुए हैं।
1: NBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियां।
2: हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब साले आईने को सच बोलने की बीमारी लग जाती है।
3: को आपकी कहानी के आइडियाज कहाँ से आते हैं? आपके जासूसी तजुर्बों से?
4: राजस्थान ग्रामीण विकास नहर परियोजना के विरोध से जुड़ी समाज सेविका मनोरमा शुक्ला का कल रात एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया।
1: रविवार 9 अगस्त को NBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म मनोरमा 6 Feet Under 2007 की ये मूवी अभय देओल और गुलपनाग पर फिल्माई गई। मनोरमा 6 Feet Under

और चलिए जरा पिया बसंती गाना सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, एंजॉय करते हैं। पिया बसंती वो प्रसिद्ध गाना है जो 2000 में बहुत ही मशहूर हुआ है, उस्ताद सुल्तान अली खां की आवाज़ में। सुनिएगा और अपनी आवाज़ मिला लीजिएगा साथ में।

चलिए जरा एक कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी पढ़ते हैं आपके लिए। कहानी का शीर्षक है गंदे कपड़े। एक नया जोड़ा यानी कि एक नया कपल एक नए घर में रहने गया। अगली सुबह जब वे नाश्ता कर रहे थे तो औरत ने अपनी पड़ोसन को बाहर रस्सी पर कपड़े लटकाते हुए देखा। वह बोली, ये कपड़े साफ नहीं है, उसे ठीक से कपड़े धोना नहीं आता, शायद उसे एक बेहतर डिटर्जेंट की जरूरत है। उसका पति देखता रहा और चुप रहा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब भी उसकी पड़ोसन अपने कपड़े सुखाने के लिए बाहर लटकाती, वह औरत यही बात कहती। एक महीने बाद एक दिन वह औरत यह देखकर हैरान रह गई कि आज रस्सी पर बहुत साफ सुथरे कपड़े लटके हैं। उसने अपने पति से कहा, वाह देखो, आखिरकार उसने ठीक से कपड़े धोना सीख ही लिया। न जाने पहले इसे किसने कपड़े धोना सिखाया था। पति ने जवाब दिया, कपड़े उसके मैले नहीं थे बल्कि हमारी खिड़की के शीशे मैले थे। मैंने आज सुबह जल्दी उठकर हमारी खिड़कियां साफ की, तब जाकर तुम्हें यह सही नजारा देखने को मिला है। तो आई बात समझ में दोस्तों? जीवन में भी ऐसा ही होता है। दूसरों को देखते समय हम जो देखते हैं वह उस खिड़की की साफ सफाई पर निर्भर करता है जिसके जरिए हम देख रहे हैं। इसीलिए दूसरों पर जल्दी फैसला या न्याय ना करें, खासकर तब जब आपका नजरिया, हमारा नजरिया गुस्से, ईर्ष्या, नकारात्मकता या अधूरी इच्छाओं से धुंधलाई हुई हो। किसी व्यक्ति के बारे में राय बनाना यह नहीं बताता कि वे कौन है, बल्कि यह बताता है कि हम कौन हैं। बस आया है ये गाना आपके जहन में, शायद ये है बेताब मूवी का वो मशहूर सा गाना जिसे गुनगुना गुनगुना कर आप बहुत इंजॉय करते थे एक ज़माने में। लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की आवाज़ों का ये गाना सुनिए और 8 बजने पर आप सुनिएगा आज के भोजपुरी समाचार, जिसे लेकर आ रहे हैं अभी

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घरी मिला लजा ई बखत फजर के 8 बजल बा। सब कोई के नमस्ते और आदा। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा 30 जुलाई

0: के ऑनलाइन जारी एगो रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ई बतैलन कि अप्रैल से जून के बीच उ धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग के मामला में 2.7 करोड़ नवा जांच शुरू करलन और 14 जना के गिरफ्तार करलन। ई बखत में कुल 780 शिकायत के समीक्षा करल गल। FCC के बगल से मॉरिशस में साइबर धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज करल गल। कोर्ट ऑफ असाइजेस के बगल से जोसेफ जैक्सन लुई के 8 बरिस के कैद और 50,000 रुपया के जुर्माना के सजा सुनावल गल। 400 ग्राम से जस्ती हशीश रखे के दोषी पावल गल। अदालत ई फैसला गल सुक 7 अगस्त के सुनैलन। ऑनलाइन जारी एगो दूसर रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के है जे हमने के देश के अर्थव्यवस्था के प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिटिवनेस पर अपन सालाना रिपोर्ट प्रकाशित करलन जे साल 2015 से 2025 के बखत के कव करेला। ई रिपोर्ट में कारखाना के बंद होवे से अघिए दिखल गल झुकाव के पहल का आधिकारिक आकलन पेश करल गल। महामारी के दौर के छोड़ की लुगा के उद्योग में रोजगार में बड़का गिरावट आल बाती। दूसर देश में मध्य पूर्व युद्ध के बीच सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान एगो ऐतिहासिक सुरक्षा समझौता पर ही हस्ताक्षर करलन। इस समझौता के नेटो शैली नियम बतावल जाता। एकर मतलब यह कि एगो देश पर हमला होवे पर 3 गो देश पर हमला मानल जाए। विश्लेषक लोगन के अनुसार ई नवा सुरक्षा गठबंधन आक्रामक ईरान के रोके के, अमेरिका पर घटल निर्भरता के पूरा करे के और इजराइल के संदेश देवे के उद्देश्य से करल गल। तेकरवे संगे हमनी के भोजपुरी समाचार समा भल। ध्यान देवे खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Our morning ki khabar suna ja. SSO Road Upper Vale में, SSO Upper Vale में 3 करोड़ 4 बरिस के 64 के मिसिस बीबी फाजिला मुसुफिया, मिसिस बीबी फाजिला मुसुफिया पैदाइश नाम बगाली और जिनकरा सब लोग फाजिला के नाम से जस्सी जाना थलन जा गुजर गल हवन। ओकर जनाजा आज दिन के 10 बजे उनकर बेटा जनाब उत्सरोज मुसुफिया के मकान SSO रोड अपावेल से निकाल के दफनाए खातिर प्लेंडी पपाई का कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM सिबोरत लेन फ्लोरियाल में 3 करोड़ 8 बरिस के 68 के श्री प्रवीण सिबोरत जिनका सब लोग प्रवीण के नाम से जसी जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दिन की 10 बजे उनकर पत्नी श्रीमती प्रीति सिबोरत के घरे सिबोरल तेन फ्लोरियाल से उठा के कार्यक्रम खातिर आले भ्रियों की श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM नंबर 16 गली प्रोविडेंस काउंटी मिलिटेयर में 3 करोड़ 9 बरिस के 69 के श्रीमती ध्रुवंती तपसी पैदाइशी नाम सुभान की मृत्यु हो गल बते। ओकर माटी आज दिन के ग्यारह बज के आधा उनकर बेटा श्री हेमंत कुमार तपसी के घरे नंबर 16 गली प्रोविडेंस काउंटी मिलिटेयर से उठा के कार्यक्रम खातिर मेजिन कोंडू मास्क किश्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM नंबर 6 SSO गली सुदना कैथोबोन में 4 करोड़ 20 बरिस के उम्र में 80 के श्री कृष्णा इपिलियापिया जिनकरा सब लोग बाला के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनका मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दोपहर के दो बजे उनकर पत्नी श्रीमती कमला इपिलियापिया के घरे नंबर 6 SSO एवेन्यू सुदना कैथोबोन से उठा के क्रियाक्रम खातिर

এক গান্ধী পালমা কিশ্মশান ভূমিলে যাওয়াল যায় ক্রিমেশন টুডে অ্যাট 2 PM শালিয়ে রোদ মোতায় ব্লঞ্চ মে শালিয়ে রোদ মোতায় ব্লঞ্চ মে চার কোড়ি বরিসকে উমির মে ক্যাথোভেজন কে শ্রী ধনীলাল বাওয়ানি শ্রী ধনীলাল বাওয়ানি जिनकरा सब लोग ईश्वर के नाम से जैसी जानत हलन जा उनकर मृत्यु हो गल बाटे। उनकर माटी आज दोपहर की दो बजे उनकर पत्नी श्रीमती सुनीति बाउनानी के घरे शायद रोद मोताय ब्लॉन्च से उठा के क्रियाक्रम खातिर हौजुवे के श्मशान भूमि ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM लोडेर रो ग्लेन अफ्रीकन फ्लैक में लोडेर लेन अफ्रीकन फ्लैक में 3 crore 17 lakh 77 lakh के श्रीमती शेला जोहाना चोइतन पैदाइशी नाम सिगुलाम और जिनकरा सब लोग जोहाइना के नाम से जस्सी जानत हलन जा ओकर मृत्यु हो गल बाते। ओकर माटी आज दोपहर के दो बजे उनकर घरवे से लोदे लेन अफ्रीकन फ्लैग से उठा के क्रियाक्रम खातिर बोम्बू की श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टूडे एट 2 PM उचाना लेन लेस्कालिये में 3 crore 9 lakh के 69 lakh के श्रीमती निराला उचाना पैदाइशी नाम सनासी और जिनकरा सरोज और मैडम वासु के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दोपहर की दो बजे उनकर भाभी श्रीमती राधा उचाना के घरे उचाना लेन लेस्कालिये से उठा के क्रियाक्रम खातिर पैलमायों की श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे 2 PM रेजिडेंस सेंट जोसेफ मोताय ब्लॉन्च में 4 crore 1 lakh के 81 lakh के श्रीमती भानुमती पाइनी पैदाइशी नाम लेकरास और जिनकरा सब लोग मैडम पाइनी के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दोपहर के दो बज के आधा उनकर बेटा श्री सुनील पाइनी के घरे रेजिडेंस सेंट जोसेफ मोताय ब्लॉन्च से उठा के क्रियाक्रम खातिर मेजिन कोंडू मास्क की श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM बेसाक गली नंबर तीन बोबासे में 3 crore 6 lakh के 66 lakh के श्रीमती गीता मणि नदरचंद पैदाइशी नाम लिलमोंड और जिनकरा सब लोग गीता के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माती आज दोपहर के दो बजे उनकर घरवे से माने नंबर 3 बेसा गली बुबासे से उठा के क्रियाक्रम खातिर सैमौते की श्मशान भूमि ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM त जितना जो परिवार दुख में हवन जाए दुख के ई बखत में MBC के बगल से सब कोई की हमनी सहानुभूति प्रकट करत है।

आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम आज का पैगाम आपके नाम। और पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। जहां भी होंगे खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, ये दुआ हमारे दिल में है कि पैगाम हमारी तरफ से आपके लिए। पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में आप हमें फ़ोन कीजिएगा 4028085 पर, चाहे हमें मैसेज भेजिएगा 5251705 पर आप अपने अपनों को मैसेजेस ज़रूर भेजिएगा। आप इन दोनों में से कोई भी जरिया अपना सकते हैं अपने अपनों को मैसेजेस भेजने के लिए, अपने अपनों को बहुत सारी दुआएं देने के लिए। जहां भी होंगे आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा इवेंट है आपके जीवन में, शायद आपके अपनों के बीच कोई खुशी का मौका हो, खुशियों की दुआएं देना चाहते हैं आप उन्हें, और पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में आप उनको कुछ प्यारे प्यारे दिल से निकले हुए शब्द भी बोलना चाहते हो। तो चलिए, आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है अपने अपनों को खुशियों की दुआएँ देने के लिए और उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए।

तो आज की सुबह बड़ी निराली है। हमारा साथ देने वाले बहुत सारे ऐसे हमारे श्रोता है जो बड़े प्यार से हमारा स्वागत कर रहे हैं अपने घरों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी श्रोताओं को। इनमें शामिल हैं लक्ष्मण सिगोबिन जी वाकवा से, जो शिव मंदिर की तरफ के सभी भक्तों की तरफ से हमारे सभी श्रोताओं को मंगल कामनाएँ दे रहे हैं, हमारी पूरी टीम को मंगल कामनाएँ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण सिगोबिन जी। और उधर हमारे साथ है माला सुमाहू जी। माला सुमाहू जी का कहना है कि ज़िंदगी गुजरे हंसते हंसते, प्यार और खुशियां मिले रस्ते रस्ते, हो मुबारक नया सवेरा, ये आपको ये सवेरा दे आपको खुशियां हमेशा हमेशा। इधर सूरज शर्मा सजादा जी भी हमारा साथ दे रहे हैं त्रियोले से अपने बेटे निशाल के साथ मिलकर। और मोदालबिया की अनीता जी का कहना है कि आज किशन गोगा की सालगिरह है, और किशन जी रहते हैं और ये तो हैप्पी बर्थडे टू यू किशन, आपको मंगल कामनाएं आपकी पत्नी अंजनी की तरफ से मिली है, आपके बच्चों की तरफ से प्रीतम विशाल और दीपा की तरफ से, कविता अनुष्का और रिश्ता की तरफ से, ईतू परिवार की तरफ से, लाजी परिवार, गोगा परिवार की तरफ से और नागेश्वर परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू केशान जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से।

और पैगाम आपके नाम प्रोग्राम में पैगामों का ये जो गुलदस्ता बना हुआ है, ये गुलदस्ता हम एक एक फूल आप तक पहुंचाएंगे इस गुलदस्ते का। और फ्राइडे 7 अगस्त को माँ राजिका लौतन गोपी जी ने अपना जन्मदिन मनाया और उन्होंने 92nd बर्थडे मनाया। मौदारबिया के पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं।

0: और अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों का एक सप्ताह बाकी है बच्चों के लिए और वे एंजॉय करें अपना ये हफ्ता, अपनी ये छुट्टी, यही उम्मीद की है हमारी श्रोता वीना जी ने। रिव्या जोंपा की वीना जी बच्चों को बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही हैं और उन्हें ये काउंसलिंग दे रही है कि अपने इस छुट्टी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही जोश के साथ मनाएं और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ भी मनाएं। अंश, मेधा और मिष्टी, इन तीनों बच्चों को उन्होंने बहुत सारी मंगल कामनाएं दी हैं छुट्टियों के, और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम सभी बच्चों को, सभी छात्रों को छुट्टियों की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप छुट्टियां बहुत ज़ोर शोर से मनाइएगा, एक ही सप्ताह बचा हुआ है, हर पल को आप बहुत प्यार से जी लीजिएगा। वैसे तो हर संडे अगर मंडे हो जाता तो कितना मज़ा देता। आपके मन में यही दुआ होती है कि अगर हर मंडे अगर संडे हो जाता तो कितना अच्छा होता, हर बार अगर मंडे आता है तो काश ये मंडे संडे ही होता, ये सोचते हो आप। तो अभी कुछ दिनों तक आपके हर मंडे को संडे बनाया है आपकी छुट्टियों ने, सो हर इस कल जो मंडे होगा वो आखिरी संडे कहलाएगा आपका। अगले हफ्ते से तो आपकी खुशियाँ, आपकी छुट्टियाँ समाप्त होने वाली है, खुशियाँ आपकी बहुत जोर शोर से होनी चाहिए।
1: मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी।

हमारा आपका साथ, पैगाम आपके नाम शो में, और पैगाम आपके नाम शो आप लोगों के नाम है। बस दुआएं यही रहती हैं हमारे मन में कि आपके जीवन में जो भी पल आए हर पल खुशियों से भरा रहे और हर पल में आपके दिल को संतोष हुआ करे। सुनीता जी दागुच्छिया से हमारे सभी श्रोताओं को श्रावण मास की मंगल कामनाएं दे रही है। सुख शांति और स्वास्थ्य मिले उनको, यही प्रार्थना है भगवान से सुनीता जी की। उधर सुदेवी जी भी वाकवा से श्रावण मास की मंगल कामनाएं दे रही हैं और उन सभी लोगों को जन्मदिन की मंगल कामनाएं दे रही है जिनका आज जन्मदिन है, और हमारे सभी श्रोताओं को हैप्पी संडे विश कर रही हैं। आज बहन अमृता का जन्मदिन है, शुभकामनाएं हैं पूरे परिवार की तरफ से, और भगवान से मांग कर रहे हैं पूरे परिवार के सदस्य कि उनके यहाँ जो बेटे की शादी होने वाली है वह निर्विघ्नता से पूर्ण हो और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, बहू बेटे की के जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आए कि उनके जीवन को वे अपना सफल जीवन माने, और पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएं। हर पार हर पल हर घड़ी आप लोगों को बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारा आशीर्वाद मिलता रहे और अपनों का प्रेम मिलता रहे, यही दुआ है। और वैसे ये शादी का ये माहौल है तो दुल्हन को बहुत प्यार से ले जाने की तैयारी भी चल रही है उनके परिवार में।

दुल्हन के लिए जाने की तैयारी बड़ी जोर शोर से कीजिएगा। दुल्हन का आना लक्ष्मी का आना होता है और लक्ष्मी जो घर में आती है बरकत ही बरकत होती है। इस बार हम रवि जी को हैप्पी बर्थडे कहेंगे। रवि जी जो रहते हैं वाकुआ, उनको मंगल कामनाएं उनकी माता जी सलोनी की तरफ से, उनके पापा विजय जी की तरफ से और दादी माँ की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू रवि जी, आपको ज़िंदगी में सारी खुशियां मिले ऐसी दुआ आपके पूरे परिवार की है और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम देते हैं।

तो अनीता जी फ्री कॉम्फ्लेक्स से हमारा साथ निभा रही हैं, बुआशाही से राजन लक्ष्मण जी हमारा साथ निभा रहे हैं, और साथ निभा रहे हैं आकाश चेतन मनसुख जी बॉम्बू से। पूरे मनसुख परिवार के साथ मिलकर उन्होंने एक गाना सुनना चाहा है। कोई बात नहीं, हम आपके लिए आपकी पसंद का गाना सुनवाएंगे। इनफैक्ट अपने बचपन को याद कर रहे हैं, और बचपन को याद करना भी एक बहुत ही अच्छा मौसम होता है, एक बहुत ही अच्छा पल होता है। सो अपने बचपन को याद करते हुए और मनसुख परिवार के नाम ये यादें करते हुए उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भाग लिया है। और इधर हमारे साथ हैं नारायणी जी। नारायणी जी का कहना है कि लॉन्ग माउंटेन की रहने वाली हैं वे, और उनकी नाती आनिया का जन्मदिन है आज, और वे घनघोरत रहती हैं। आनिया जी घनघोरत रहती हैं, उनको बहुत सारी मंगल कामनाएं सभी जोखन परिवार की तरफ से, लोकनाथ परिवार की तरफ से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।

सूचनाएं दे रही हैं और सुरागिनी रघु जी बता रही हैं कि आज मेलोन अपासामी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन की मंगल कामनाएं उन्होंने अपने दिल की गहराई से उन्हें दी है और उनको जन्मदिन की मंगल कामनाएं, मेलोन जी को शुभकामनाएं उनकी पत्नी सरोजा जी की तरफ से, बेटे मागेन की तरफ से, बड़े भाई बॉलेन की तरफ से, भाभी अनसुया की तरफ से और बुआशेखी के सीनियर सिटीजन्स के सभी मेंबर्स की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं, हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं और ऐसे में आपके जीवन में खुशियां आए, आपके जीवन में संतोष आए, ऐसी दुआएं कर रहे हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।

और इधर श्यामा जी विलमय से बता रही हैं कि उनकी बेटी श्वेता मंगर का बर्थडे है। श्वेता मंगर जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके पति और उनके बेटे पति उनके बेटे उनके पति मनोज और उनके पति यानीश और बेटी परी, बहन रेशमा, नीतू, जीजा जी अनिल और अनुष्का, यश, वृष्णि, निधि, मिला परिवार और मंगल परिवार सब मिलकर उन्हें मंगल कामनाएं दे रहे हैं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे श्वेता जी, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से।

और मामा आरती ने फोन किया है त्रियोले से। कल उनकी बेटी आनंदी का है बर्थडे और उन्हें मंगल कामनाएं मामा आरती की तरफ से, पापा सुरेंद्र जी की तरफ से, बहनें रीमा और शर्मिला की तरफ से, और आनंदी जी तो हैं अध्यापिका तो उनके छात्रों की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। और आपके भाई आश्ले भूले नहीं हैं आपको जन्मदिन की मंगल कामनाएं देने के लिए। दिल की गहराई से मंगल कामनाएं भैया आश्ले की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आनंदी जी।

खुशियाँ मनाई जा रही है, वहाँ श्रावण मास की पवित्रता भी मनाई जा रही है। तारा जी कनाडा के अपने नाती पोतों को बहुत सारी मंगल कामनाएं श्रावण मास की दे रही हैं, और आदर्श श्रेया नवजोत अपनी बेटी आरती उनके पति संजय को श्रावण मास की मंगल कामनाएं दे रही हैं और बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं तारा जी।

सालगिरह की मंगल कामनाएं हम विवेक जी को भी दे रहे हैं जो पोर्टोपीमो के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी आराधना की तरफ से और उनकी बेटी अंशिनी की तरफ से। और मंगल कामनाओं का ये गुलदस्ता देते हुए बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं इस कार्यक्रम को। ये कार्यक्रम पैगाम आपके नाम आप लोगों के लिए रहा। आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए और दोस्तों के लिए जो मंगल कामनाएं भेजी, उन मंगल कामनाओं से आपके अपनों का भला ज़रूर होगा, उनके प्रति पॉजिटिविटी ज़रूर बढ़ेगी। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं हम ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के बाद यानी कि पैगाम आपके नाम प्रोग्राम के बाद 9 बजे आप सुन पाएंगे आज के संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद आप सुनिएगा आज का मंगल आचरण कार्यक्रम जिसे पेश करेंगे विकास। तो हमारी आपके अगली मुलाकात अगली बार होगी, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ दिन, शुभ संडे, नमस्कार। श्रावण मास की मंगल कामनाओं के साथ।

0: check exactly 9 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभी उदय। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 47 नई जांच शुरू की है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अवधि में कुल 780 शिकायतों की समीक्षा की गई। FCC ने मॉरिशस में साइबर धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं व्हाट्सएप स्कैम्स, फर्जी निवेश वेबसाइट्स और बैंक के डेटा की चोरी। निर्यात उन्मुख उद्योगों में श्रमिक उत्पादकता में 9.9% की वृद्धि को लेकर अर्थशास्त्री एरिक निंग ने सावधानी बरतने की सलाह दी। इस क्षेत्र में

0: उत्पादन में 1.3% की गिरावट आई, जबकि रोजगार में 10.2% घटा है। अर्थशास्त्री एगनिंग के अनुसार जब नौकरियां और कर्मचारियों की संख्या घटती है तो उत्पादकता का आंकड़ा अपने आप बढ़ा हुआ दिखने लगता है। वस्त्र उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के भारी दबाव में है। बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में मॉरिशस में श्रम लागत बढ़ गई है। अदालती कार्रवाई की बात करें तो कोर्ट ऑफ असाइजेस जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें बिक्री के उद्देश्य से 400 ग्राम से अधिक हशीश रखने का दोषी पाया गया। अदालत ने यह फैसला शुक्रवार 7 अगस्त को सुनाया। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पश्चिमी कनाडा में 20,000 से ज्यादा लोगों को रातों रात अपने घर छोड़ने का आदेश दिया गया। तेजी से फैलती जंगल की आग ब्रिटिश कोलंबिया की ओका नागन झील के किनारे बसे कस्बों की ओर बढ़ी और रास्ते में आने वाले घरों को नष्ट कर दिया। समरलैंड में रहने वाले लगभग 12,000 लोगों और पास के पिचलैन व उसके आसपास के इलाके में रहने वाले करीब 8,000 लोगों को वहां से निकलने का आदेश दिया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। एसएसओ रोड अपरवेल में 64 साल की 64 years old की मिसिस बीबी फजीला मुसुफिया, पैदाशी नाम बगाली और जिन्हें सब लोग फाजिला के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 10 बजे उनके बेटे जनाब उत्तोय मुसुफिया के मकान एसएसओ रोड अपरवेल से निकालकर दफनाने के लिए प्लेंडी पापाई का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM सिबोरत लेन फ्लोरियाल में 68 साल के 68 years old के श्री प्रविंद सिबोरत जिन्हें सब लोग प्रविंद के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रीति सिबोरत के घर सिबोरत लेन फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एलिब्रियों की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: नमस्कार और स्वागत आप सभी का रेडियो मॉरिशस पर। रविवार का दिन और आप जानते हैं कि इस वक्त होता है कार्यक्रम मंगलाचरण। आज मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारणी सभा की प्रस्तुति में ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि श्रावण मास चल रहा है, तो उसी के संदर्भ में हम कुछ विषय लेकर आए हैं, चर्चा होगी। और आज हमारे जो मेहमान हैं इस कार्यक्रम में, वो भारत से आए आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु जी हैं। नमस्कार आपको।
1: सादर नमस्ते जी।
0: तो इनसे हम जरूर वार्ता करेंगे, लेकिन उससे पहले मंत्र पाठ, भावार्थ सहित वेद पाठ, आइए सुनते हैं डॉक्टर आचार्य सुनील जी से। और साथ दे रहे हैं आचार्य सूरज प्रकाश खेदू शास्त्री जी।

0: यत्सस्वर्तावाजीरिडे यरा विश्वतदेन इमहे तुराणाम्।
1: सत्कार और तिरस्कार देश काल और परिस्थिति के अनुसार निर्भर हैं। जो मनुष्य अपने अभद्र और क्रोधित कराने वाले शब्दों से हम लोगों को नीचा दिखावें, ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोगों से दूर रहें अथवा ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखें, क्योंकि उनके व्यवहार में कुनीति, अहंकार, लोभ, क्रोध, काम, पाप व अपराध झलकते हैं। परंतु श्रेष्ठ व्यवहार करने वाले जनों को अपने समीप रखना चाहिए, क्योंकि उनके व्यवहार में परोपकार व पुण्य की

भावना झलकते हैं। जो पापी जन धार्मिक जनों के अनादर करने वाले होवें उनसे दूर रहना चाहिए, और जो नम्रता आदि से युक्त धार्मिक होवें उनको समीप बसावें, जिससे सबका कल्याण होवें तथा श्रेष्ठ यश प्रकट होवें।

0: सभी पासों व बंधनों से हम छुटकारा प्राप्त करें, सभी ऐशनाओं से दूर होवें, क्योंकि ऐशना रूपी बंधन से आत्मा पतित होकर दुख पाती है। मनुष्य विवेकहीनता से भोग विलास में निमग्न रहकर खोखला हो जाता है और सच्चा सुख भोगने की क्षमता खो बैठता है। जो जितना अधिक आत्मबल का धनी होगा, वह उतना ही जल्दी इन मोह माया के बंधनों को काट फेंकने में समर्थ होगा।
1: ओम यत्र ब्रह्मच क्षत्रञ्च समौञ्चौ चरतः सः तं लोकं पुण्यं यज्येषो यत्र देवाः सहाग्निना।
0: जहाँ उत्तम ज्ञान तथा सत्य विद्या द्वारा सत्कर्मों को जागृत रखना आवश्यक है, वहाँ असत्य और अज्ञान रूपी शत्रु का संहार करना भी आवश्यक है। लोक में उचित अनुचित एवं पुण्य कर्मों को जानना चाहिए। सत्य ज्ञान, पुण्य कर्म और ईश्वर उपासना के संयोग से ही आध्यात्मिक जीवन बनता है। ज्ञान के वाहक श्रेष्ठ विद्वान ऋषि मुनि और समाज तथा राष्ट्र के रक्षक क्षत्रिय वर्ग का तेज जहाँ साथ साथ रहेगा, वह समाज सदैव फलता फूलता रहेगा।

सर्वव्यापक निराकार परमात्मा जो जड़ और चेतन तत्वों में विद्यमान रहता है, जिनका नाम विष्णु है और सबका पालन कर रहा है, वह हमारे कर्मों को भली भांति जानता है। धार्मिक बुद्धिमान पुरुषार्थी योगी महात्मा विद्वान सूर्य के प्रकाश में फैले हुए सर्वव्यापक विष्णु के परम पद को शुद्ध ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा में देखते हैं। जैसे पवित्र आँखों से देखने योग्य मूर्तिमान पदार्थों को देखा जाता है, वैसे ही योगी महात्मा लोग पवित्र भक्ति, पवित्र ज्ञान एवं योग साधना द्वारा अपनी पवित्र आत्मा द्वारा परमात्मा के आनंद स्वरूप को देखते हैं, आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति करते हैं। जब ज्ञान और भक्ति की आँखें खुल जाती हैं, तभी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है।

ईश्वर ने जगत को तीन हिस्सों में बांटा है। पहला है पृथ्वी रूप जगत, ये देखने वाला जगत है। मिट्टी, वृक्ष, पौधे, औषधियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, सोना चांदी आदि खनिज पदार्थ, ये सब इस संसार में विद्यमान है। दूसरा है अंतरिक्ष व आकाश रूपी जगत, जो बीच वाला हिस्सा है। हवा, बादल, बिजली, अदृश्य परमाणु इनमें वास करते हैं। तीसरा है प्रकाशमय सूर्य आदि जगत, जहाँ सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र सभी प्रकार की ऊर्जा वास करते हैं। संपूर्ण जगत को बनाने, धारण करने और पालन करने वाले ईश्वर एकमात्र परमेश्वर हैं।

0: सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, वह कण कण में वास कर रहा है। संसार में जो पदार्थ दिखाई देते हैं अथवा जो पदार्थ दिखाई नहीं भी देते हैं, गोचर या अगोचर, जड़ हो या चेतन, सब परमात्मा की व्यवस्था एवं नियमों से बंधे हुए हैं। ईश्वर ने जगत की रचना कर सबको जीने का अधिकार दिया है, अतः त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए लोभ की वृत्ति से दूर रहें। दूसरे की वस्तु को देखकर उसे पाने की लालसा न करें। संसार में पाए जाने वाले धन वैभव आखिर में किसका है और किसका हुआ है? वे धन न किसी का है और न किसी का हुआ है, सारा धन मात्र परमात्मा का है।
1: ओम शांति शांति शांति।
2: मंत्र पाठ के बाद आइए अब मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचानी सभा द्वारा ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन भारत से आए आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार एक बार फिर से।
3: नमस्ते जी।
2: हम जब बात करते हैं श्रावण मास की और बात करते हैं वेदों के महत्व की, तो श्रावण मास में ये जो महत्व है और बढ़ जाता है
3: जी।
2: तो हम श्रावणी पर्व और वेद के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बात करें तो बहुत बढ़िया होगा, उत्तम होगा।
3: बहुत उत्तम चर्चा आपने प्रारंभ की कि वेद और श्रावणी का संबंध क्या है।
2: हाँ जी।
3: देखिए, हमारी संस्कृति में ये जो श्रावण मास है इसे एक विशेष महत्व दिया जाता है और विशेष मास माना जाता है। अब श्रावण मास को जब आप देखने के लिए चलेंगे तो ये श्रावण मास श्रवण शब्द से मिलकर के बना है। श्रवण का अर्थ सामान्यतः सुनना होता है, तो ये सुनने का मास है, अर्थात हमें अधिक से अधिक चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो। और एक बात और विशेष याद रखिएगा कि मनुष्य दो चीज़ों से अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, एक स्वाध्याय से और एक प्रवचन से। स्वाध्याय होता है वेदों का अध्ययन, हम स्टडी कैसे करें, पुस्तकों का अध्ययन करना और ग्रंथों का अध्ययन करना, इससे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। और दूसरा जो विशेष होता है प्रवचन, और प्रवचन अर्थात व्याख्यान, उपदेश, और उनका श्रवण किया जाता है। तो श्रवण करने से व्यक्ति का ज्ञान बहुत अधिक बढ़ता है, तो उसी में ये श्रवण मास जो है इसी से श्रावण मास बना। और श्रावण मास में अधिक से अधिक सुनने का कार्य होता है। अब हम सुने तो सुने क्या, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक परंपरा चलाई कि हम श्रावण मास में वेदों का अध्ययन करें और उनका श्रवण करें, तो अधिक से अधिक हम वेदों का श्रवण कर सकें, इसलिए श्रावण मास को चुना गया। जैसे भारत में जब आप जाएंगे तो भारत में ये जो श्रावण मास की वेदों की सुनने की परंपरा है ये चार मासों तक चलती है, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं। अब चातुर्मास किस लिए बनाया गया, क्योंकि भारत देश में जब आप जाकर के देखेंगे तो इन चार मासों में वर्षा ऋतु मानी जाती है, और पूरे जो वर्ष भर की ऋतुएं होती हैं उनमें हमारे जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे, विद्वान, वेदों को जानने मानने वाले जाता, वो सब जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, ऐसी जगह पर अपना स्वाध्याय, चिंतन और साधना किया करते थे। लेकिन जो ये चार मास होते थे वर्षा ऋतु के, इसमें वहाँ रहना संभव है नहीं, क्योंकि पानी के कारण जीव जंतु भी आते हैं, सांप आदि भी आते हैं। तो वही ऋषि मुनि वेद के जाता नगरों की ओर, शहरों की ओर बढ़ते थे, और चार मासों तक वो शहरों में, नगरों में रहा करते थे, अर्थात सामान्य पारिवारिक लोगों के बीच में रहा करते थे। तो उन चार मासों में उनका उपयोग क्या किया जाए, तो उनका उपयोग सुनने के लिए किया जाता था कि जी हम इन मासों में इनसे अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, तो वो वेदों का स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन, वेदों का श्रवण सब लोगों को कराया करते थे। और वही परंपरा आज हमारे मॉरिशस देश में चलाई जाती है कि ये जो एक मास है जिसे हम श्रावण मास कहते हैं, इसमें हम अधिक से अधिक वेदों को सुनने का प्रयास करें। और कहीं ना कहीं हमारी चर्चा भी वेदों के श्रवण के लिए ही है कि इस मास में हम वेदों का अधिक से अधिक श्रवण कर सकें। और ये बहुत अच्छी चर्चा है कि वेद का और श्रावण मास का क्या संबंध है। तो हम पूरे वर्ष भर वेदों का स्वाध्याय, श्रवण करते हैं, लेकिन जो ये मास होता है इस मास में हमें और अधिक चिंता

0: चिंतन करना होगा।
1: जैसे कि हम अपने जन्मदिन मनाते हैं कि जी वर्ष में मेरा एक बार जन्मदिन आता है। अब वो जन्मदिन किस लिए मनाया जाता है? एक तो उसका उद्देश्य होता है कि जी हम इतने वर्ष के हो गए हैं, अब ये वर्ष हमारा पूर्ण हुआ। दूसरा होता है कि जी हमने पूरे वर्ष भर में क्या किया और आगे आने वाले पूरे वर्ष भर हम क्या करेंगे। तो बस जिस प्रकार से वो जन्मदिन चिंतन करने का विषय होता है, ऐसे ही ये जो श्रावण मास है, ये हमारे वेदों पर चिंतन करने का विषय है कि हमने पूरे वर्ष भर वेदों का क्या चिंतन किया और आगे आने वाले पूरे वर्ष भर में हम कितना चिंतन करेंगे। जैसे हमारे गुरुकुलों में बच्चों को एक उद्देश्य दिया जाता है कि जी आप आगे आने वाले पूरे वर्ष में इतना स्वाध्याय करेंगे या इतने ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे हम भी अपने मन में एक संकल्प बनाएं कि हम इतने पूरे वर्ष में हमने ये किया, अब आगे आने वाले वर्ष में मैं वेदों का इतना स्वाध्याय करूँगा, प्रतिदिन इतने ग्रंथों को पढ़ूंगा। और एक बात और विशेष है, वेदों को हम क्यों पढ़ें, इस श्रावण मास में वेद का ही अध्ययन क्यों करें? तो वेद एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर प्रकार का ज्ञान लिखा हुआ है। जैसे महर्षि मनु ने लिखा, यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वभीतो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः, कि मनुष्य के द्वारा किए जा रहे सारे कर्म या किसी भी प्रकार के धर्म, हर प्रकार का ज्ञान अगर आपको कहीं देखना है तो वो वेदों में देखना होगा। सर्वज्ञानमयो हि सः, ये प्रत्येक ज्ञान का एक मूल स्रोत है। तो हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे ऋषि मनीषियों ने एक श्लोक लिखा कि न विप्र पादो दक कर्दमानी, देखिए ये जो श्लोक है ये हमारे देश में कितने अच्छे प्रकार से फलीभूत होता है। वो श्लोक में कहते हैं न विप्र पादो दक कर्दमानी, कि जहाँ पर विप्रों का सम्मान नहीं होता, विप्र अर्थात ब्राह्मण, विद्वान, वेद के जानने मानने वाले, जहाँ विप्रों का सम्मान नहीं होता, न वेद शास्त्रार्थ ध्वनि गर्जितानी, जहाँ पर वेद की ध्वनियाँ गर्जित नहीं होती है, वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, और स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जहाँ पर स्वाहा का स्वधाकार अर्थात यज्ञादि कर्म हवन आदि नहीं होते हैं। अंत में वो लिखते हैं शमशान तुल्यानि गृहानि तानि, कि वो घर शमशान के तुल्य है जहाँ पर ये तीन चीज़ें नहीं होती हो। अब कौन सी चीज़ें बताई, कि जहाँ पर विद्वानों का सम्मान नहीं होता हो, जहाँ पर वेद की ध्वनियों का गुंजायमान नहीं होता हो, और जहाँ पर स्वाहा का स्वधाकार अर्थात यज्ञादि कर्म नहीं होते हो। अच्छा, इन्होंने केवल घर के लिए ये बात कही कि शमशान तुल्यानि गृहानि तानि, वो घर शमशान के तुल्य है। अब मैं विचार करूँ कि हमारा घर ही केवल घर नहीं होता है, हम पूरे समाज को भी अपना मान करके चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो पूरे राष्ट्र को अपना मानते हैं। तो ये मॉरिशस देश हमारा पूरा राष्ट्र हुआ, तो ये मॉरिशस पूरा हमारा घर ही है। अब हम विचार करें कि क्या हमारा देश शमशान के तुल्य तो नहीं है? तो ये श्लोक यहाँ पर फलीभूत होता है कि हमारा देश शमशान के तुल्य नहीं है, हमारा देश तो स्वर्गमय बनता चला जा रहा है। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पर श्रावण मास में वेदों के विद्वानों को बुलाया जाता है और उनका बड़ा अच्छा सम्मान होता है। जैसे मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पर लगभग 1.5 मास के लिए आया हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के लोगों में सम्मान के प्रति इतनी भावना है कि वो हर प्रकार से आचार्य जी क्या चाहिए, आचार्य जी क्या खाएंगे, आचार्य जी क्या पिएंगे, आचार्य जी कहाँ घूमने चलेंगे, हर प्रकार का सम्मान विद्वानों को यहाँ दिया जाता है। तो इस बात में तो सिद्ध होता है कि हमारा ये देश स्वर्ग की ओर बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात कही वेदों की ध्वनियाँ, न वेद शास्त्रा ध्वनि गर्जितानी, कि इस देश में वेद की ध्वनियाँ गुंजायमान हो रही या नहीं हो रही है। तो जैसे अभी चर्चा आप ही कर रहे थे प्रारंभ में कि हम वेद के मंत्रों का श्रवण करेंगे आचार्य सुनील जी और आचार्य सूरज जी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं वेदों के मंत्रों का श्रवण भी यहाँ हो रहा है। तो उस उद्देश्य से भी हमारा ये देश शमशान के तुल्य नहीं है, स्वर्ग के समान बनता चला जा रहा है। और अंत में कहा स्वाहा सुधाकार, कि जहाँ पर स्वाहा का सुधाकार यज्ञ आदि कर्म नहीं होते हो। तो आप यदि मॉरिशस सारे रविवेद प्रचारणी का प्रचार देखेंगे, इस सभा का, तो जहाँ पर भी ये सभा प्रचार के लिए जाती है, विद्वानों को लेकर के जाती है, तो वहाँ पर केवल वेदों का स्वाध्याय या वेदों का प्रवचन नहीं होता है, सर्वप्रथम वहाँ पर यज्ञ कर्म होता है जिसे संसार का

0: श्रेष्ठतम कर्म कहते हैं, हवन के द्वारा प्रक्रिया चालू होती है। तो हवन में स्वाहा का सुधाकार होता है, तो स्वाहा का सुधाकार भी हो रहा है। तो हमारा ये देश बहुत उत्तम रूप से वेदों का प्रचार और स्वर्गमयी कार्य करता चला जा रहा है। तो जहाँ पर वेदों का सम्मान होता हो, विद्वानों का सम्मान होता हो, तो श्रावण मास में हम इसके लिए विशेष कार्य करते हैं। तो ये हमारा मास वेदों से जुड़ा हुआ मास है। तो मैं सब लोगों को यही संदेश दूंगा कि श्रावण और वेद एक ही शब्द है, क्योंकि वेद का एक नाम है श्रुति। जैसे अभी आपने जब नाम लिया था, मेरा नाम आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु, तो ये जो श्रुत बंधु शब्द है ना, इसमें दो शब्द है, श्रुत और बंधु। श्रुत का अर्थ होता है सुनने वाला। अब श्रुति हमारे वेदों का नाम है। श्रुति इसलिए नाम है कि जब आदि काल में परमात्मा ने वेदों का ज्ञान अग्नि वायु आदित्य अंगिरा की अंतरात्मा में दिया, तो हम मानते हैं कि उस समय पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, या लेखन आदि का कार्य भी, प्रिंटिंग का कार्य नहीं होगा, तो वो वेद ज्ञान की परंपरा हम तक कैसे पहुंची? तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे उन ऋषि मुनियों ने उनके शिष्यों को सुनाया, श्रवण कराया, फिर उनके शिष्यों ने उनके आगे आने वाले शिष्यों को श्रवण कराया। ऐसे सुनने सुनने श्रवण की परंपरा से ये वेद ज्ञान हम तक पहुँचे। और कहीं ना कहीं जब पहली बार प्रिंटिंग हुई होगी तो वो सुने हुए ही ज्ञान से प्रिंटिंग हुई। तो इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है कि ये सुन सुन करके हमारे बीच में आए हुए हैं। तो वही श्रुत का अर्थ हुआ श्रुति, श्रुति का अर्थ वेद होता है, और बंधु का अर्थ होता है मित्र। तो मित्र का कार्य क्या होता है? रक्षा करना। तो जो वेदों की रक्षा करता हो वही श्रुत बंधु है। और श्रुति, श्रुति का अर्थ श्रवण हुआ, तो श्रुति एक वेद है। तो इससे जुड़ करके श्रवण और वेद एक ही है, तो श्रावण मास और वेद एक ही हुआ। तो बहुत गहरा संबंध है श्रावण मास का और वेदों का। तो हम सब लोगों को इस श्रावण मास में वेदों के अध्ययन के लिए एक विशेष भूमिका निभानी चाहिए।
1: जी हाँ, आपने सही कहा। और कितने सरल तरीके से आपने समझाया कि वेदों का और श्रावणी पर्व का क्या विशेष बंधन है, एक महत्व है। और हमारे भी कुछ सुकर्म रहे होंगे कि आज श्रुत बंधु हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। अच्छा, अगर हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ आएँ, तो आर्य समाज वेदों का ही प्रचार क्यों करता है, अगर आपसे पूछे तो?
0: हाँ, देखिए, आर्य समाज ही वेदों का प्रचार नहीं करता है। सब लोग अपने अपने स्तर से वेदों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि आर्य समाज वेदों को लेकर के आगे बढ़ता है। तो हाँ, मैं कहूँगा स्पष्ट रूप में कि हाँ, आर्य समाज वेदों को लेकर के आगे बढ़ता है। वो किस लिए बढ़ता है? क्योंकि आपको भी ये बात स्पष्ट होगी कि हमारे इस दुनिया के, हमारे धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, और सबसे मूल ग्रंथ वेद है, जहाँ से सब ज्ञान निकला हुआ है। हर प्रकार का ज्ञान वेदों से निकला हुआ है। तो आर्य समाज इसीलिए वेदों के प्रचार के लिए आगे बढ़ता है कि उसमें हर प्रकार का ज्ञान है। जैसे आर्य समाज के नियमों की ओर हम बढ़ें, तो आर्य समाज में ऋषिवर देवदयानंद ने लिखा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और हर प्रकार का सब सत्य, एक तो सत्य शब्द कह रहे हैं कि हर प्रकार की विद्या तो है ही सही, लेकिन उसमें सत्य विद्याएं भरी हुई है। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना प्रत्येक आर्यों का, प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का परम धर्म है। तो जहाँ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसलिए आर्य समाज वेदों के प्रचार के लिए विशेष भूमिका निभाता है। और देखिए, वेदों का प्रचार मुख्यतः किंचित चीज़ों से ही होता है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति वेदों के प्रचार के लिए नहीं लगा हुआ है। हमारे ब्राह्मण पंडित लोग हैं जो वेदों के प्रचार करने में लगे हुए हैं। मैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ कि जो पंडित लोग वेदों के प्रचार के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा, आर्य समाज भी अपने स्तर पर वेद की भूमिका निभा रहा है। और तीसरा, हमारे जो गुरुकुल है, आश्रम है, जहाँ पर वेदों की शिक्षाएं होती है, तो ये वेदों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वेद ही हमारे मूल है, वेद में ही हर प्रकार का ज्ञान है, इसलिए आर्य समाज वेदों को लेकर के आगे बढ़ता है। और ये आर्य समाज का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। कुछ लोग कभी कभी भ्रम रूप में आकर के कह देते हैं कि जी, वेद में तो कर्मकांड लिखा हुआ है, उसमें सत्य विद्याएं नहीं हैं, या वेद में और कोई सी अनर्गल बातें लिखी हुई है। लेकिन मैं कहूँ, आर्य समाज वेदों को जानने मानने वाला है,

0: और वेद पर बहुत बड़ा अध्ययन करने वाला है। तो वेद सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो हमें जानना होगा कि आजकल हमें भी वेदों को साथ में लेकर के बढ़ना होगा, क्योंकि वेद ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस दुनिया से बहुत उत्तम और आगे ले जा सकती है। जैसे मैं कहूँ तो वेद जो शब्द है, ये शब्द संस्कृत की चार धातुओं से मिलकर के बनता है। चारों धातुओं के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो पहली धातु आती है विद जाने, अर्थात जिससे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे वेद कहते हैं। दूसरा क्या है, विद्री लाभ है, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद में उसको उससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है, उसी ज्ञान से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो वेदों से हमें लाभ भी प्राप्त होता है। विद विचारणे, अर्थात जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उस पर अधिक से अधिक विचार हमें करना है, तो वेदों से हमें अच्छे विचार भी प्राप्त होते हैं। और अंत में कहा विद सत्तायाम, जो ज्ञान आपके पास में है वो एक सत्ता के रूप में प्राप्त हुआ है, तो उसकी सत्ता चहुं ओर फैलाने का प्रयास करना। तो आर्य समाज इन चीज़ों को जानता है कि वेद ही सब प्रकार की विद्याओं का ग्रंथ है, वेद ही सत्य है, वेद ही विज्ञान है, वेद ही धर्म है, इसलिए आर्य समाज वेदों को लेकर के आगे बढ़ता है। जैसे आज मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि धर्म की परिभाषा आप क्या जानते हैं? हमारे हिंदुत्व में धर्म को एक विशेष महत्व दिया जाता है, सनातन में हमारे धर्म को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। सब लोग कहते हैं कि जी धर्म करो, धर्म करो, धर्म पूर्वक कर्म करो, धर्म पूर्वक जीवन जियो। तो जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं कि धर्म किसे कहेंगे एक सामान्य अर्थ में, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि जी किसी का उपकार करना धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना धर्म है,
1: मानवता धर्म है,
0: मानवता एक धर्म है, और भी कई सारे अर्थ हम ले सकते हैं कि पूजा पाठ करना एक धर्म है, या ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना एक धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, भूखे को भोजन खिलाना धर्म है, झूठ नहीं बोलना धर्म है, सत्य पर आचरण करना धर्म है, कई प्रकार के धर्म हो सकते हैं। लेकिन आज विकास जी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो एक प्रश्न है कि धर्म क्या है या धर्म किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आप समझिए और इस चर्चा के माध्यम से जो भी श्रोता सुन रहे हैं मैं उनको भी कहूँगा कि धर्म की परिभाषा हमें मूल अर्थ में समझना होगा। वैसे तो हम समझते हैं कि ये अच्छे अच्छे कार्य करना धर्म है। देखिए मैं कहूँ कि धर्म की मूल परिभाषा है वेद की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। हम वेदों पर विशेष चर्चा कर रहे हैं, तो धर्म की मूल परिभाषा हुई वेद की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूँ कि अच्छे कार्य करना, मानवता के लिए कार्य करना वेद में आता है या नहीं आता है? आता है। प्यासे को पानी पिलाना वेद कहता है, भूखे को भोजन कराना वेद कहता है, सबकी रक्षा करना वेद कहता है, सबसे मित्रता का भाव रखना वेद कहता है, हर प्रकार की अच्छी चीज़ें वेद में आती हैं। तो हम धर्म की परिभाषा समझेंगे कि वेद की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। जैसे सामान्य लोग कहते हैं कि जी पूजा पाठ करना धर्म है या ईश्वर की भक्ति करना धर्म है, तो वेद तो ये भी कह रहा है कि ईश्वर की भक्ति करो, आप पूजा पाठ करो, तो वेद ये भी बात कहता है, तो इसलिए वेद की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। अब दूसरा, हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठें तो हमें पता लगता है वेद किसने लिखे या वेद का ज्ञान किसने दिया, ईश्वर ने दिया। अब ईश्वर का ज्ञान वेद है, तो वेद क्या हुआ, ईश्वर की आज्ञा, कि ईश्वर की आज्ञा वेद है। तो हम धर्म की परिभाषा को एक अर्थ में ले सकते हैं कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। तो वेद ईश्वर की आज्ञा है, तो आर्य समाज इस बात को समझता है और प्रत्येक व्यक्ति को समझाने का प्रयास करता है कि वेद ईश्वर की आज्ञा है, उसके अनुसार हमें चलना है। तो इसीलिए वेद को आर्य समाज लेकर के अपने साथ चलता है। और आपका जो प्रश्न था कि आर्य समाज वेदों को ही लेकर के क्यों चलता है, तो वेद ईश्वर की आज्ञा है और वो एक अपरंपार ज्ञान है, नित्य ज्ञान है, तो उसके प्रचार के लिए आर्य समाज वेदों को साथ में लेकर के चलता है।
1: बहुत बढ़िया। हम जब बात करते हैं ये श्रावणी मास, और देखिए आपने कहा सुनना, श्रवण करना, लेकिन उसको समझना, यानी कि आप वेदों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वही असली बात है कि हमारे जो ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, वो चारों तरफ जाकर वेदों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन समझना। अब अगर हम वेदों की बात करें तो संस्कृत भाषा में अगर अभी कोई समझना चाहता है, उनको

0: सुनने के बाद उनको ज़िंदगी में लाना चाहता है, तो कैसे शुरुआत करें जिन्होंने नहीं किया अभी तक, क्या कहेंगे?
1: हाँ देखिए, पहले तो आपके प्रश्न से एक प्रश्न और खड़ा होता है कि वेद संस्कृत में ही क्यों लिखे। जैसे मॉरिशस के लोगों के लिए भगवान क्रियोली में, फ्रेंच में या भोजपुरी में जान दे देता, भारत वालों के लिए हिंदी में दे देता, इंग्लैंड वालों के लिए अंग्रेजी में दे देता, ऐसे अलग अलग भी दे सकता था।
0: लेकिन उस वक्त की जो भाषा थी वो संस्कृत थी।
1: उत्तर आप समझ रहे हैं कि उस समय संस्कृत ही भाषा थी और संस्कृत भाषा वेदवाणी मानी जाती है, देववाणी मानी जाती है, अर्थात ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये वाणी है। तो ये हमें संस्कृत में प्राप्त हुए। फिर हम लोगों ने अपनी अलग अलग भाषाएं बना करके अलग अलग लैंग्वेज में हम अपने अपनी चर्चाएं करने लगे। परंतु आपका प्रश्न है कि आज के समय में उस संस्कृत वाले वेदों को हम कैसे अध्ययन करें। तो मैं कहूँगा कि आजकल तो सबकी परिभाषाएं हो चुकी है, अलग अलग पुस्तकें भी छप गई हैं। जैसे आप देखेंगे तो आपको यहाँ की भाषा में भी वेदों का अध्ययन करने को मिल सकता है। तो आजकल तो अनेक भाषाओं में इसका परिवर्तन हो चुका है, लेकिन उससे भी विशेष है कि हिंदी आजकल सभी लोग जानते हैं। तो हिंदी में वेदों का अनेक विद्वानों ने भाष्य किया, तो उन भाष्यों को हम पढ़ें। और उसमें विशेष भाष्य ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का है। आप विचार करिए, ऋषिवर देव दयानंद एक इतने उदार मना मनुष्य थे, इतनी उदारता उनके जीवन में थी कि कहाँ वेद की संस्कृत इतनी कठिन कि जिसको पढ़ने के लिए अनेकों वर्षों तक अध्ययन, त्याग, तपस्या करनी पड़ती है, तब उस वेद की संस्कृत को हम समझ पाते हैं। और ऋषिवर देव दयानंद को देखो कि उन्होंने उस संस्कृत का हिंदी और संस्कृत में भाष्य किया। मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दे रहा हूँ कि यदि हमें आज के समय में उस वेद की भाषा को सरल अर्थों में समझना है तो हमें ऋषिवर देव दयानंद के भाष्य को पढ़ना होगा। जैसे मैं कहूँ कि आपको संस्कृत का ज्ञान उतना अधिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऋषिवर देव दयानंद ने संस्कृत को भी इतना सरल लिखा कि आप भी उसे समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक वेद मंत्र की व्याख्या करके बताऊं, ऋषिवर देव दयानंद ने यजुर्वेद के 19वें अध्याय के 50वें मंत्र की व्याख्या की, और वहाँ पर वो लिखते हैं कि ईश्वर की उपासना हम क्यों करें। तो वहाँ एक पंक्ति वो देते हैं भाष्य करते हुए और लिखते हैं, संधि वेलायाम। देखिए, आप हिंदी समझते हैं, मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, तो आप इसका अर्थ कर सकते हैं, संधि वेलायाम। संधि वेला आप समझते हैं जो सायंकाल का और प्रातःकाल का समय होता है। संधि वेलायाम शयन आलस्य आदिकम विहाय, शयन सोना, सोने आदि के आलस्य को छोड़कर। संधि वेलायाम शयन आदि आलस्यम विहाय ईश्वरस्य ध्यानम, ईश्वर का ध्यान, ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति ते अतुलाम श्रियं प्राप्नुवन्ति। कि जो व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठ करके शयन आदि आलस्य को छोड़कर ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनको अतुलनीय धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इतने सरल अर्थों में कितने अच्छे प्रकार से ऋषिवर समझाते हैं। ऐसे ही प्रत्येक वेद मंत्र की व्याख्या ऋषिवर देव दयानंद ने बहुत सरल अर्थों में की, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी उस बात को समझ सके। तो हमें इसके लिए ध्यान देना होगा कि यदि हमें आज के समय में वेदों का अध्ययन करना है तो ऋषिवर देव दयानंद जैसे सरल भाष्यों को पढ़ करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया। अभी भी सच आपने कहा कि हम ज़रूर अपने ब्राह्मणों को सुने, विद्वानों को सुने, लेकिन खुद भी पढ़ने की, सीखने की थोड़ी सी चेष्टा अगर करेंगे तो हो सकता है।
1: हाँ, देखिए इसमें एक विशेष बात है। आज जो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कमियां दिखाई देगी इस संसार में या समाज में, कुछ भ्रामक चीज़ें या अंधकार अज्ञानतावश जो चीज़ें दिखाई देंगी, वो हम लोगों के कारण ही है। हम लोग क्या समझ जाते हैं कि जी, जो ब्राह्मणों ने, जो पंडितों ने, जो विद्वानों ने या जो कोई बड़े व्यक्ति ने कह दिया उसे हमें मान लेना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्र इसमें क्या तर्क देते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि चार चीज़ें होती है, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। व्यक्ति को इन चार चीज़ों पर चलना चाहिए कि श्रवण सुनना, मनन उस पर चिंतन करना, निदिध्यासन कि ये बात सही है या नहीं है, साक्षात्कार फिर उसको अपने जीवन में अपनाना।
0: बहुत
1: लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं वर्ल्ड में फेमस व्यक्ति हूँ, और मैंने कह दिया, विकास जी यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हो तो आपको सफ़ेद कपड़े पहनने होंगे, तो आप पहन लोगे क्योंकि आपके मेरे प्रति श्रद्धा है, तो आपने क्या किया, श्रवण किया, सुना और सीधा उसको अपने जीवन में धारण कर लिया। लेकिन

0: हमारे शास्त्र कह रहे हैं कोई भी बात आप सुनो, जैसे मैं भी कुछ चर्चाएं आपसे कर रहा हूँ वेदों को लेकर के, आर्य समाज को लेकर के, तो जो श्रोता सुन रहे हैं मैं उनको संदेश दूंगा कि सीधा सीधा इसको अपने जीवन में मत धारण कर लेना, उस पर क्या करना, मनन करना, कि जो हम सुन रहे हैं उस पर चिंतन करें कि हाँ ये सही है या नहीं है, उस पर निधिध्यासन करना, उस पर प्रमाण खोजना कि जो आचार्य जी ने जो बात कही कि हमारे वेद सभी ज्ञान के श्रोता हैं, हर प्रकार का ज्ञान उसमें है, तो क्या वाकई में है या नहीं है इसमें ज्ञान, उस पर प्रमाण देखना, फिर यदि सिद्ध हो जाए कि हाँ जी हाँ ये सही बात है, फिर उसको अपने जीवन में धारण करना। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, चार चीज़ों को हमें समझना होगा।
1: ये बहुत बढ़िया आपने बात की, और मेरे ख्याल से जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं इस विचार से आगे चलेंगे कि सुनना, ये देखना कि आज के इस जीवन में सही है, और एक बार कोशिश करेंगे इसके बारे में अध्ययन करने की, ढूंढने की, रिसर्च करने की, तो आप अपने आप ही और जानने की चेष्टा करते जाएंगे, आप ऐसे ही आगे और बहुत सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। भारत से आए आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु जी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, और मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारनी सभा द्वारा उनके सहयोग के साथ ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे लेकर जरूर जाएंगे, लेकिन अभी चलते हैं एक भजन की तरफ।

0: तो इस भजन के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में वापस लौट कर आते हैं मंगलाचरण मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के सहयोग से, और अपने मेहमान की तरफ एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु जी से। आचार्य जी, वेदों की बात कर रहे हैं तो हमारे श्रोता उसके महत्व के बारे में जरूर जानते हैं, लेकिन अगर विस्तार से थोड़ी बात करें तो।
1: हाँ
0: हाँ जी,
1: देखिए आज हम सब लोग हिंदू भाई हैं, सनातन भाई हैं, आर्य भाई हैं, तो हमारे जीवन में वेदों का महत्व पता होना चाहिए। जैसे दूसरे धर्म या दूसरे समुदाय के लोगों से पूछोगे तो तुरंत अपने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बता देंगे, तो कभी कोई हमसे पूछ ले कि जी आपके वेदों में क्या हैं, तो हम गर्दन नीचे करके संकोचवश न रह जाए कि जी क्या है हमें पता नहीं है। तो हमारी चर्चा के माध्यम से हमारे श्रोता लोग ये समझ पाएंगे कि वेदों की महत्ता क्या है या वेदों में क्या है,
0: और बहुत ज़रूरी है जानना। मेरे ख्याल से छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जो भी, अगर जाने इनमें है क्या, खाली सुने नहीं। अब कहते ना कि आपको पता है ये भगवान की वाणी है, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, तो क्यों ना इसके बारे में और समझें।
1: अवश्य। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हमें इतना याद रखना चाहिए कि वेद परमात्मा की वाणी है, और वेदों को चार भागों में विभाजित किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसमें हम देखें कि चारों वेदों में क्या है, तो हम तुरंत उत्तर दें, मंत्र है। चारों वेदों में मंत्र है। कितने मंत्र हैं? तो 20,379 मंत्र माने जाते हैं। तो यदि पूरी संख्या हमें याद ना हो तो हम इतना कह सकते हैं कि जी लगभग 20,000 मंत्र हमारे वेदों में है, लिखे हुए हैं। अब उन 20,000 मंत्रों में क्या है? देखिए, सर्वप्रथम यह समझे कि वेद तो एक ही है, लेकिन उसको चार भागों में विभाजित किया गया। अब ये चार भाग विभाजित किस लिए किए गए? जैसे कोई चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, अब मैं उसमें सब प्रकार की चर्चाएं मिक्स करके बता दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको अलग अलग पार्टीशन करके बताऊँ कि जी मैं पहले आपको ज्ञान के बारे में बता दूँ, फिर गृहस्थ के बारे में बता दूँ, फिर समाज के बारे में, फिर राष्ट्र के बारे में, तो अच्छा समझ आएगा। तो बस उन्हीं कारणों से हमारे वेदों के चार विभाग हैं कि चार विषय अलग अलग कर दिए गए। तो सर्वप्रथम आता है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन ग्रंथ। और जब ऋग्वेद को हम उठा करके देखेंगे तो ऋग्वेद में तृण से लेकर के एक तिनके से लेकर के ईश्वर पर्यंत के पदार्थों का ज्ञान है, अर्थात किसी भी प्रकार का ज्ञान हमें चाहिए तो हमें ऋग्वेद को उठा करके देखना होगा। तो सर्वप्रथम पहले वेद में ज्ञान भरा हुआ है, और वो ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें पदार्थों का या किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उनकी सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकते। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, जैसे हम यही कमरा देख लें, इस रूम में हम रुके हुए हैं, अभी इस रूम में सारी सुविधाएं हैं। विकास जी, आपको खाने की वस्तु चाहिए, खाने की वस्तु मिलेगी, पीने की चाहिए, पीने की मिलेगी, एसी, कूलर, फ्रिज, जो चाहिए आपको मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी कमी है कि इस कमरे की लाइट बंद कर दी गई है, इसमें बिजली नहीं है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपसे प्रश्न करूँ, क्या आप उन सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ पता ही नहीं लग रहा है कहाँ क्या है चीज़ें। तो बस ऐसे ही परमात्मा ने हमारे इस संपूर्ण संसार में हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार का सुख हमारे लिए दिया है। तो आवश्यकता है केवल

ज्ञान की, अंधेरा है इस संसार में, वो ज्ञान, वो जो सुविधाएं वो छिपी हुई है। लेकिन यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि कौन सी वस्तु कहाँ है, वो अज्ञान हट करके प्रकाश आ जाए, तो आप उन सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। तो वो ज्ञान आपको ऋग्वेद से प्राप्त होगा, और जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप संसार की प्रत्येक सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। तो ज्ञान का हमारे लिए, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ज्ञान हमें चाहिए। जैसे हमारे भारत देश में एक विद्वान हुए दक्षिण में, त्रिवल्लुवर स्वामी उनको कहते थे। उनकी एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है और आपके यहाँ भी कभी आपने सुनी होगी कि हम गरीब और अनपढ़ अज्ञानी माता पिता के घर पर जन्म लेते हैं तो हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि हम गरीब और अनपढ़ अज्ञानी होकर के मर जाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप हम कर रहे हैं। तो हमें अज्ञानी होकर के कभी नहीं मरना है, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके मरना है। तो वो ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? ऋग्वेद से प्राप्त होगा। तो ऋग्वेद में हर प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। समय कम है, हम संक्षिप्त में आगे बढ़ते हैं। दूसरा वेद माना जाता है यजुर्वेद, और जब यजुर्वेद को आप उठा करके देखेंगे, इसमें कर्म करने का सिद्धांत है कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर्म अर्थात प्रत्येक प्रकार के कार्य जिसमें हम परिश्रम कर रहे हैं या थोड़ा बल लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कार्य। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अभी हमने उदाहरण लिया था एक कमरे का, उस कमरे में लाइट बंद है, सभी सुविधाएं हैं, लेकिन उसका ज्ञान आपको नहीं था कि इसकी बिजली कहाँ से चालू होगी। अब आपको ज्ञान हो गया है कि जी आप खड़े होकर के यहाँ आइए और ये बटन दबाइए, आपके कमरे में बिजली आ जाएगी। अब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, परंतु यदि आप उठ करके वहाँ जाने का कर्म नहीं कर सकते, आपके जीवन में आलस्य है, तो क्या उन सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते? क्योंकि ज्ञान तो होना आवश्यक है, ज्ञान पूर्वक कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है। तो वो जो कर्म करने की भावना है ना, वो यजुर्वेद देता है। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम या कुर्वण्ये वेह कर्माणि जीवशेषतम समा, कि हम 100 वर्षों तक कैसे कैसे कर्मों को, क्या कर्मों को करते हुए जिए। तो ये कर्म करने की भावना यजुर्वेद हमें प्रदान करता है। तो हमें कर्म करना चाहिए, और इसकी भावना यदि हमें कहीं से प्राप्त होगी तो वो यजुर्वेद से प्राप्त होगी। अब दो वेद हो गए हमारे, पहला वेद ज्ञान का विषय था, दूसरा वेद कर्म का विषय है, अर्थात कर्म करने की भावना इसमें दी जाएगी। तीसरा वेद आता है सामवेद। मनुष्य के जीवन में ज्ञान है, मनुष्य के जीवन में अच्छे कर्म भी है, लेकिन यदि मनुष्य के जीवन में ईश्वर नहीं है ना, तो आनंद आपके जीवन में नहीं हो सकता। हमारे ऋषि मुनि या विद्वानों के अनुसार एक प्रमाण आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि जी इस दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं या इस दुनिया में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसमें 3 चीज़ों का मेल होता है। जैसे 100% होता है, 100% में से 30% होता है हमारा प्रारब्ध, पिछले जन्म के हमारे कर्मों के कारण ये घटना हमारे जीवन में घटी, तो उसमें केवल कितना 30% रहेगा। फिर 30% रहता है हमारे इस जन्म का पुरुषार्थ, कि हम इस समय उस कर्म को, उस घटना के लिए क्या काम किए, हमारी क्या कमी रही या क्या अच्छाई रही। तो 30 और 30 60 हुआ, बचा 40%। अब ये जो 40% होता है ना, ये ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो आपके जीवन में अच्छे प्रारब्ध है, आप इस समय भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में ईश्वर का आनंद, ईश्वर की कृपा नहीं है, तो आपके जीवन में आनंद नहीं हो सकता। तो ईश्वर की कृपा होना भी हमारे जीवन में आवश्यक है, और ईश्वर की कृपा कब होगी? जब हमारे जीवन में ईश्वर की भक्ति करने का तरीका होगा। और ये जो ईश्वर की उपासना करने का, ईश्वर की ध्यान, ईश्वर का ध्यान करने का तरीका है, ये तीसरा वेद हमें प्रदान करता है, जिसे हम लोग सामवेद कहते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा ईश्वर की उपासना क्यों करें, कहाँ करें, किस लिए करें, कौन से प्रभु की उपासना करें, कैसे करें, ये हर प्रकार का ज्ञान आपको तीसरे वेद में मिलेगा, जिसे हम लोग सामवेद कहते हैं। तो उसे भी समझने की आवश्यकता है कि हम कहाँ कैसे क्या करें। जैसे वेद मंत्र कहता है उपहवे किरणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो जायता, कि नदियों के किनारे, पहाड़ों की कंदराओं के बीच में एकांत स्थान पर हम ईश्वर का ध्यान करें। तो ये हर प्रकार की बातें जो है ना, ये आपको सामवेद से प्राप्त होगी। तो हमें ईश्वर का आनंद तभी प्राप्त होता है, जैसे महर्षि व्यास ने भी कहा, महर्षि पतंजलि ने भी कहा, कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से ही ईश्वर का आनंद प्राप्त होता है। तो शुद्ध ज्ञान हमें

ऋग्वेद से प्राप्त हुआ, शुद्ध कर्म की भावना हमें यजुर्वेद से प्राप्त हुई, और शुद्ध उपासना की भावना आपको सामवेद देगा। तो सामवेद को पढ़ना भी आवश्यक है। अब हमारे तीन वेद हुए, चौथे वेद की ओर हम बढ़ें। चौथा वेद माना जाता है अथर्ववेद, और अथर्ववेद विज्ञान का विषय है। विज्ञान अर्थात विशेष प्रकार का ज्ञान। तो हमारे जीवन में तीन चीज़ों से काम चल सकता था, ज्ञान कर्म उपासना से काम चल सकता था,

0: प्रश्न करूं कि 400 वर्ष पहले जैसे एक शेर गुफा में रहा करता था, तो आज भी शेर वैसी ही गुफा में रहना पसंद करता है? 400-500 वर्ष पहले जो पक्षी चिड़िया आदि थे वो ऐसा ही घोंसला बनाया करते थे, और आज भी वैसा ही बनाते हैं? कोई 5-स्टार होटल तो बनाते नहीं है, वैसे में ही रहना पसंद करते
1: लेकिन
0: हैं।
1: इंसान
0: लेकिन इंसान की ओर हम आए तो आपसे पूछूं, 400-500 वर्ष पहले आपके पूर्वज जैसे वस्त्र पहना करते थे, आज वैसे वस्त्र पहनना पसंद करेंगे? नहीं। 400-500 वर्ष पहले लोग जैसे घरों में रहा करते थे, आज वैसे घरों में हम रहना पसंद करते हैं? नहीं। हमें नई नई चीज़ें चाहिए। नव नव अनुरागी प्रिय सा सर्वलोका, मनुष्य को नई नई चीज़ें चाहिए। और ये नई नई चीज़ें कब प्राप्त होगी? जब विज्ञान हमारे पास में होगा, जब हमारे पास में नई नई तकनीकें होंगी, नए नए आविष्कार करने का ज्ञान होगा। तो ये जो नए आविष्कार का ज्ञान है ना, ये हमें अथर्ववेद से प्राप्त होगा। तो मनुष्य के जीवन में चारों वेदों की विशेष महत्ता होती है, और चारों वेदों से हमें अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम सबको वेदों के साथ जुड़ करके उनकी आज्ञा के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।
1: बहुत बहुत बढ़िया। मैं जानता हूँ कि आप भी वक्त के साथ ही चल रहे हैं, और इतना वक्त है नहीं, लेकिन बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। अब सीखने की बात करें तो श्रावण मास में हम बच्चों को सनातन संस्कृति से और कैसे जोड़ें?
0: हाँ, देखिए समय तो कम है, परंतु फिर भी छोटे अर्थों में मैं उत्तर देने का प्रयास करूं कि आज के बालकों में वेदों का ज्ञान या हमारी संस्कृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि आज का युग जो आ रहा है ना, ये अल्फा युग या जेन जी युग जो बोले हैं, इसमें ऐसी परिस्थिति बन रही है कि बच्चों से पूछें कि जी कोई फिल्म का गाना सुनाओ, तुरंत वो कई सारे गाने आपको सुना देंगे। लेकिन वहीं पूछें कि जी आप हमारे शास्त्रों के, वेदों के मंत्र सुनाओ, तो वो नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि आज वो उससे दूर है। और दूर कौन कर रहा है? हम लोग उन्हें दूर कर रहे हैं। हमें आवश्यक है कि अपने बच्चों को, अपने विचार उनको दें, हमारी संस्कृति से उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। तो आपका प्रश्न है कि हमारे बच्चे संस्कृति से कैसे जुड़े, तो इसके मैं दो अलग अलग प्रकार से उत्तर देता हूँ कि एक तो हमारे बच्चों के अंदर उनकी संगति अच्छी होनी चाहिए, कि वो कैसी संगति में रह रहे हैं। यदि अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, और यदि बुरी संगति में वो रहेंगे तो उनको बुरा ज्ञान प्राप्त होगा। तो यदि बच्चों को हमें अपनी संस्कृति से जोड़ना है, तो हमें उन्हें अच्छे लोगों के संग में रखना होगा, और उन्हें पुरुषार्थ करने की भावना प्रदान करनी होगी। क्योंकि हम यदि बच्चों को ये नहीं समझाएंगे कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है और इससे ही हमारे जीवन का असली आनंद प्राप्त होगा, तो वो नहीं जुड़ेंगे। वो जुड़ेंगे, और यदि ये नहीं बताएंगे तो वो नहीं जुड़ेंगे। बस वैसे ही यदि हम उनको अच्छे लोगों के संग में रखेंगे, जैसे संस्कृति को जानने मानने वाले लोग हैं उनके साथ रखेंगे, तो उन्हें अच्छी चीज़ें प्राप्त। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे आप एक परफ्यूम की दुकान में जाइए, और परफ्यूम की दुकान में जाएंगे, कोई परफ्यूम आप मत खरीदना, लेकिन वहाँ देख करके, घूम करके आप आ जाओ, बाहर आओगे तो आपके शरीर से परफ्यूम की सुगंध आएगी। वो क्यों? जैसे हम जैसी संगति में रहेंगे, वैसा वैसा असर हमारे जीवन में होता है। तो यदि आप अपने बच्चों को बुरे लोगों के संग में रख भी रहे हैं, और यदि उनसे कुछ धारण नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी उनका असर कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के जीवन में प्रभाव पड़ जाता है। तो हम उन्हें अच्छे लोगों के संग में रखें और अच्छा ज्ञान देने का प्रयास करें, तो हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से भी जुड़ेंगे, हमारे सनातन से भी जुड़ेंगे, और इसकी रक्षा के लिए आगे कार्य करते चले जाएंगे। तो अंत में मैं केवल इतना ही संदेश दूंगा कि हम अपने बच्चों को जहाँ अपनी भौतिक संपत्ति का मालिक बनाते हैं, हम धन दौलत ऐश्वर्य प्रॉपर्टी जो भी है उसका मालिक अपने बच्चों को बनाते हैं, बनाओ, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु वहीं अपने बच्चों को अपनी वैचारिक संपत्ति का मालिक बनाना।
1: बहुत बढ़िया।
0: माता पिता के पास में जो विचार वेदों के, सनातन संस्कृति के हैं, हमारे इस धर्म के हैं, उसका मालिक भी अपने बच्चों को बनाना, तो हमारे सनातन की रक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगी, वेदों की रक्षा होगी, और इस श्रावण मास में हम बहुत उत्तम कार्य कर सकेंगे।
1: बहुत बहुत बढ़िया। ये जो स्वर हमारे कानों में पड़े उससे हम धन्य हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ज़रूरी है कि इसका जो प्रचार है, प्रसार है, जो संस्कृति है, जो वेद हैं, सब कुछ हम घर से शुरुआत करें। आज अगर आप घर में अगर करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, बच्चों को शामिल कीजिए। इतना सब कुछ है सीखने के लिए, और ये जो संपत्ति है ये सबके लिए रखें, सीखना समझना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु जी, भारत से आए और आपने जैसे कहा कि मॉरिशस में भी आपको वही प्यार देखने को मिलता है और संस्कृति जीवित है, क्यों ना इसको ऐसे ही हम साथ लेकर आगे बढ़ते रहें। वहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मॉरिशस।

आर्य रविवेद प्रशानी सभा का, जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम चला। तो हमारी फिर से मुलाकात होगी, और आपके विचारों के लिए, आपकी इस वार्ता के लिए, सभी ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल आचरण कार्यक्रम रहा रेडियो मॉरिशस पर, पुनः मिलेंगे। नमस्कार।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभी उदय। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। ऑनलाइन जारी एक और रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की है। इस संस्था ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो साल 2015 से साल 2025 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कारखानों के बंद होने से पहले से देख रहे रुझान का पहला आधिकारिक आकलन प्रस्तुत किया गया है। महामारी के दौर को छोड़ करके भी वस्त्र उद्योग में रोजगार में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने इस अवधि के दौरान श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की है। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर एमएसएम ने कल पोटलुई में सेंट्रस्ट में प्रेस को संबोधित किया। जोन जोगो ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, इनमें फ्लक में हाल ही में हुई पार्टी का जुटाव, राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल का पारित होना, नए विपक्षी नेता की नियुक्ति और वेरोनिक लुगोविन का इस्तीफा शामिल रहा। विपक्ष के नेता के पद पर चेतन बाबूलाल की नियुक्ति को लेकर पुल बिरांजे ने कहा कि संविधान के अनुसार इस पर फैसला लेने का अधिकार गणराज्य के राष्ट्रपति को है। एबेन में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। पुल बिरांजे ने साथ ही बताया कि विपक्ष के विप के पद के लिए जोआना बिरांजे का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह बताया कि उसने अपने हवाई और समुद्री क्षेत्र के पास चीनी सेना के 4 विमान, 6 युद्धपोत और 9 आधिकारिक जहाजों की मौजूदगी का पता लगाया है, जिनमें से 2 विमानों ने मध्य रेखा पार कर ताइवान की वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुसपैठ की है। इसी से ठीक एक दिन पहले शनिवार को भी 14 चीनी विमानों और 14 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई थी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 16 प्रोविडेंस गली कार्टी मिलिटेर में, नंबर 16 प्रोविडेंस गली कार्टी मिलिटेर में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ध्रुवंती तपसी, जिन्हें पैदाशी नाम सुभन की मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके बेटे श्री हेमंत कुमार तपसी के घर नंबर 16 प्रोविडेंस गली कचमिलिते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडू मास्का की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 11:30 AM प्लेन दे जेसिनी सेंट्रल फ्लैक में, प्लेन दे जेसिनी सेंट्रल फ्लैक में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड की जनाब कमलुद्दीन बदाई, जिन्हें सब लोग रफिक के नाम से भी जानते थे, वंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के मकान प्लेन दे जेसिनी सेंट्रल फ्लैक से निकालकर दफनाने के लिए रिश्मा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों से आला हमारा रज़ा है, हज़ारों से यक्ता हमारा रज़ा है। अजम ही नहीं बल्कि सारे अरब में हुआ जिसका शोहरा हमारा रज़ा है। मोहतरम मोहतशम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। फ़िलहाल हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं। जब इल्म सजदे इश्क में ढल जाए, जब कलम से मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आने लगे, जब अल्फाज की जबी पर अदब का नूर जगमगाने लगे, तो तारीख एक ही नाम पर नाज करती है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह। आज अल्हम्दुलिल्लाह माह सफ़रुल मुज़फ़र की 25 तारीख है और इसी दिन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ था। सामईन, हर साल की तरह इमसाल भी मोहब्बत, अकीदत और निस्बत रज़ा का ये हसीन कारवां जो बज़्म रज़ा के नाम से मंसूब हैं आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आपका मेज़बान निसार अख्तर दिल की अता गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता है।

0: मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, एक मुफक्किर थे, एक मुहक्किक थे, एक मुसन्निफ थे और एक बाकमाल नादगो शायर भी। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम इमाम इश्क़ो मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, सिराजुल उलमा शेखुल फजला इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेली रहमतुल्लाही के फ़न शायरी पर गुफ्तगु फरमाएंगे। और सामईन, इस ख़ास बज़्म रज़ा में आज भी वो नातें गूंजेंगी जिन्हें मॉरिशस के मुख्तलिफ़ गोशों से ताल्लुक़ रखने वाले नातख़ां हज़रात अपनी अकीदत भरी आवाज़ में पेश करेंगे। सामईन, उम्मीद है आप आखिर तक इस अंजुमन का हिस्सा बनेंगे। आइए इस बज़्म सुखन का बाकायदा आगाज़ एक किरत से करते हैं और इफ्तिखार तिलावत हासिल कर रहे हैं जनाब हसन दुनाई, जो फ़िलहाल गौबे के दारुल उलूम मिनहाजु सुन्ना में ज़ेरे तालीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने 8 साल की उम्र में गौबे के मदरसा इखरा अल जिलान से अपनी इल्मी सफ़र का आगाज़ किया। तो आइए सामईन, बागौर अदब समात फरमाइए।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadaqallahul Azim.
1: सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। सामईन कराम, इसमें कोई शक नहीं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अली अपने वक्त के बहुत बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप रहमतुल्लाह अली की पूरी ज़िंदगी इश्क रसूल में गुजरी। आप गुफ्तगू फरमाते तो अल्फाज की सूरत में इश्क रसूल जाहिर होता, आप कलम उठाते तो तहरीर की सूरत में इश्क रसूल को फ़रोग देते हुए नज़र आते। गोया आप रहमतुल्लाह अली की ज़िंदगी का हर एक लम्हा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि

सामईन कराम अपना शरीफ की सादत हासिल करेंगे एक ऐसे नौजवान जिनकी परवरिश ही मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू में हुई। कागोलिन से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अनस मोहन को सिर्फ 4 साल की उम्र से नाथखानी का शर्फ नसीब हुआ। इब्तदा में वो अपने वालिद की हमरा महाफिल में शरीक होते और उन्हीं की पैरवी करते हुए नात पढ़ने की कोशिश किया करते थे, गोया उनके अब्बू ही उनके उस्ताद थे। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी मेहनत को इज्जत बख्शी और पिछले साल उन्होंने नाथखानी मुकाबला अकीदत के फूल में पहली पोजीशन हासिल करके अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। आइए जनाब अनस मोहन की मुतर्रन्नुम आवाज़ में कलाम आला हजरत मुलायजा फरमाएं।

सामईन कराम, आला हज़रत रहमतुल्लाह अली एक बाकमाल ज़बरदस्त शायर थे। जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो आशिक अपने कल्बी जज्बात का इजहार और महबूब की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के लिए बसा औकात अशार का सहारा लेता है, क्योंकि अपने दिली जज्बात शायरी के ज़रिए बहुत अच्छे अंदाज में बयां किए जा सकते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अली ने भी इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार के लिए नातिया शायरी का रास्ता अख्तियार किया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अली ने उर्दू, अरबी और फारसी जबानों में नातें तहरीर फरमाईं। आप रहमतुल्लाह अली का नातिया कलाम बनाम हदायक बख्शिश इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालामाल नातिया शायरी का एक अजीम नमूना है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अली की लिखी हुई नातें आलम इस्लाम के बच्चे बच्चे की जबान पर हैं।

सामईन, अब हम मॉरिशस के एक ऐसे बुजुर्ग बावकार और साहिब ज़ौक नाथां जनाब अब्दुल रहमान पहाला का नजराना अकीदत पेश करेंगे, जिनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हो चुका है। आपने 12 साल की उम्र में अपने वालिद के हमरा मुख्तलिफ महाफिल में नातखानी का आगाज़ किया, फिर अपने पीर व मुर्शिद मौलाना इब्राहिम खुश्तर रहमतुल्लाह अलैह से नातखानी की आदाब, उसलूब और ज़ौक़ की तरबियत हासिल हुई। आपने नातिया मुकाबला अकीदत के फूल में भी शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी पोजीशन अपने नाम की। जनाब अब्दुल रहमान पहाला का यकीन है कि अगर हम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को सही मानों में समझें तो वो आपके दिल को ज़रूर छू लेगा। तो आइए सामईन, उनकी ज़बानी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम मुलायज़ा फरमाएं।

मोहतशम सामईन, एक मरतबा किसी रियासत के नवाब की तारीफ में शायरों ने कसीदे लिखे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह भी माहिर एक्सपर्ट और अजीम शोरा में से थे, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह से भी कुछ लोगों ने गुजारिश की कि नवाब साहब की तारीफ में कोई कसीदा लिख दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने नवाब साहब की तारीफ में कोई कसीदा न लिखा। इस गुजारिश के जवाब में आकाए दो जहां दिलबर जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये नात शरीफ कही, जिसका मतला इस तरह शुरू होता है, यानी पहला शेर इस तरह शुरू होता है, वो कमाल हुस्न हुजूर हैं के गुमान नक्श जहाँ नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर हैं के गुमान नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर हैं, यही शम्म है के धुआं नहीं।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, बज़्मे रज़ा के ख़ास प्रोग्राम में अब समात फरमाइए कॉर्डोमास्क पावे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब शाहिदुल्ला दस्त मुहम्मद की ज़बानी कलाम आला हज़रत। इनके बारे में आपको बता दें कि आपके घर का माहौल भी मोहब्बत नात से मामूर हैं, जहां भाई, भतीजे और दिगर अहले खाना नात खानी की सआदत हासिल करते हैं। गोया उनके ख़ानदान में

मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशबू एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल अल्लाह तबारक वताला ने उन्हें अपने घर की हाजिरी की सआदत से भी नवाजा। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ उमरे के लिए गए थे, ये अरमान कब से आपके दिल में था। अब आपके दिल की ये ख्वाहिश है कि बार बार मक्के मदीने की जियारत करें। अल्लाह तबारक वताला आपकी ये दुआ कबूल फरमाए, आमीन। आइए सामईन जनाब शाहिदुल्ला दस्त मोहम्मद की ज़बानी ये कलाम मुलायजा फरमाएं।

मोहतरम सामईन, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेली रहमतुल्लाही के कई अशार कुरान पाक के तफसीरी मानी और अहादीस मुबारका की तरफ इशारा करते हैं। गोया कुरान और हदीस में जो हमारे प्यारे आका सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयां हुई है, वो आला हज़रत रहमतुल्लाही के कई अशार से पता चलती हैं। आपका कलाम कुरान और हदीस का आईना दार हैं।

सामईन कराम, चांद का जिक्र शेरो शायरी में जगह जगह मिलता है। महबूब की खूबसूरती और महबूब की रंगत को चांद से तशबी देना उर्दू शायरी में बहुत आम है, मगर जिस तरह आला हजरत रहमतुल्लाह ने चांद को नाते महबूब के लिए इस्तेमाल किया, वो अपनी मिसाल आप हैं। एक आसमानों का चांद है और एक मदीने का चांद है। आसमानों का चांद रोशनी बिखेरता है और मदीने का चांद नूर की खैरात बांटता है। आसमानों का चांद जो रोशनी देता है वो एक दोपहर के लिए होती है, जबकि मदीने का चांद अगर नूर की झलक भी अता फरमा दे तो दुनिया व आखिरत दोनों रोशन हो जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास को आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।

सामईन कराम, यकीनन आला हजरत रहमतुल्लाह सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बल्कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के सिपा सालार थे। सारी ज़िंदगी इश्क रसूल को फ़रोग़ देते रहे, सारी ज़िंदगी उम्मत को इश्क रसूल का दर्स देते रहे। आप रहमतुल्लाह अली का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दर्जाए कमाल पर था कि आज 100 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अली के कलाम के पढ़े हुए अशार कलाम जहाँ पढ़े जाएँ, सुनने वाले अपने दिलों में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरप को मज़ीद बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। उनके दिल झूम उठते हैं और बिला इख्तियार ज़बान से सुभान अल्लाह सुभान

सामईन, अब हम मॉरिशस के एक ऐसे नातखां की आवाज़ पेश करने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी का हर दौर नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर रहा। आप हैं जनाब मोहम्मद फिरोज़ कानुआ, आप प्लेनवेत के रहने वाले हैं। इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज 5 साल की उम्र से नात शरीफ पढ़ने का शौक़ नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें मुतादिद मसाजिद में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का शर्फ अता फरमाया। सन 2007 में आप नातखानी मुकाबला अकीदत के फूल के फाइनलिस्ट भी रहे। आपकी आवाज़ बैनुल अक्वामी रेडियो यानी इंटरनेशनल रेडियो के ज़रिए भी सामईन तक पहुँची। आपकी आरज़ू है कि आखिरी सांस तक नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें। आइए सामईन, जनाब फिरोज़ कानुआ की ज़बानी ये कलाम मुलायजा फरमाएं।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, सीरजुल उलमा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेली रहमतुल्लाही का कलाम सुनकर गोया दिल की धड़कनें भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हो जाती हैं। सुनने वाला ख़ुद को इश्क़ मोहब्बत के एक ऐसे हिसार में पाता है।

ये नौजवान नात खां उस लाल मोहम्मद ख़ानदान के चश्मो चराग हैं जो मॉरिशस के फ़न कव्वाली की पहचान हैं। उनके उस्ताद उनके अपने दादा जान जनाब इदरीस लाल मोहम्मद हैं, जो ख़ुद तारुफ के मोहताज नहीं, मगर अफसोस कि हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। जनाब अली अकबर लाल मोहम्मद ने सन 2017 में नातखानी मुकाबला अकीदत के फूल में हिस्सा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल भी आए थे। आइए उनकी खुशगुलू आवाज़ में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का ये मारूफ कलाम गोश गुजार फरमाते हैं।

मौज़ा सामईन, इसी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज का ख़ास प्रोग्राम बज़्म रज़ा खुशबुएं बिखेर कर अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। ये एक ऐसी महफिल थी जहां लफ्ज़ों ने अकीदत का लिबास पहना, आवाज़ों ने मोहब्बत के फूल खिलाए और दिलों ने एक अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैराज अकीदत पेश की। ये नाम है इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की नातों का ये गुलशन हमेशा महकता रहे और हम ताक़यामत उनके अशार पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, आमीन। सामईन, बज़्म रज़ा प्रोग्राम को अपनी खूबसूरत आवाज़ों से सजाने वाले हमारे आज के नातख़ा हज़रात का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने मेरी दावत कबूल की और इस महफिल में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपकी ज़बानों को हमेशा ज़िक्र नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, आपकी तवज्जो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

आइए आखिर में आला हजरत रहमतुल्लाह अली का लिखा हुआ एक खूबसूरत और मशहूर सलाम आपकी नज़र करते हैं और इसे पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे एक बुज़ुर्ग नात खां जनाब रफ़ीक दस्त मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मॉरिशस से वाले पड़े दे सरिया के काले 11 मणि आगे रदे।

0: Yeah.
1: Number five.
0: பெயர் மனிதன் தெய்வ மகளம்.

0: Number one. Number one.
1: Album Talli Pogra.

听众朋友，这是毛利求是广播电台886频道，今天又到了华语歌曲欣赏节目时间，下面请大家一起来欣赏几首优美的歌曲。

听众朋友，一首优美的歌曲之后呢，接下来让我们继续来收听青春无悔。好，下面大家一起来收听。

听众朋友，一首优美动听的评剧之后了，接下来让我们一起来收听《彩云追月》。好，下面大家一起来收听。

听众朋友，接下来让我们继续来收听好歌送给您的节目。现在为您送上的是《天使的翅膀》。好，下面让大家一起来收听。

好，听众朋友，一首优美动听的《天使的翅膀》之后，接下来为大家送上的是《我很好》。好，下面大家一起来收听。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

नमस्कार आदाब और गुड आफ्टरनून श्रोतागण, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश हैं। हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। सवा चार बज चुके हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है वो है सहायता। कभी कभी जीवन में इंसान को पैसे की नहीं, सिर्फ एक हाथ चाहिए, हाथ बढ़ाने वाला। मुश्किल समय में सहायता करने वाला, एक छोटी सी सहायता किसी का बड़ा बोझ हल्का कर सकती है। एक छोटा सा हौसला किसी को फिर से खड़े होने की वजह दे सकता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैं किसी का क्या सहायता कर सकता हूँ, लेकिन सहायता के लिए हमेशा पैसा जरूरी नहीं होता। कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा देना, कभी किसी परेशान इंसान की बात ध्यान से सुन लेना, उसको समझना, कभी किसी को सही रास्ता बता लेना, और कभी कभी बस इतना कह देना, फिकर मत कीजिए, मैं हूं ना। कहते हैं जो सहायता करना चाहता है वो सहायता करेगा, और जो नहीं करना चाहता वो बहाने बनाता है। पर जब कोई इंसान आपसे सहायता मांगता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ये पैसे का ही हो। कभी कोई चाहता है कि मुझे भी कोई सुने, मुझे भी कोई समझे, मेरे दुख को थोड़ा सा ही बांट ले। 4028085 पर आपका क्या विचार है, आइए इस पर हम बात करते हैं, सहायता पर।

0: आइए लाइन पर हमारे पहले कॉलर हमेशा की तरह हरीश जी, उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार हरीश जी।
1: हमेशा की तरह नमस्कार पूजा।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बहुत खुशी के साथ हम आते हैं आपके प्रोग्राम सुनने के लिए,
0: धन्यवाद,
1: भाग लेने के लिए, कुछ विचार बांटने के लिए
0: जी।
1: तो ये जो सब्जेक्ट आपने रखी है पूजा जी,
0: जी
1: मैं ये कहूँगा कि मैं मेरे जवानी से आज तक ये जो वर्ड है, जो शब्द है सहायता, मेरे जीवन में बहुत बार आया है। सहायता पहली बात मैं ही कहूँगा कि जब अनफॉर्चुनेटली हम लोअर सिक्स में थे तो मेरे पिताजी गुजर गए, तो उस वक्त 1967 में
0: जी।
1: उस वक्त स्कूल फीस भरना था, एग्जामिनेशन फीस भरना था, लेकिन

0: जो प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल जो जो कॉलेज प्रिंसिपल था, क्योंकि तो हमारे जो कॉलेज जाते थे वहाँ पर शशि देवी वो जाता, तो
1: जी
0: उसी ने हमको ऐसे कॉलेज दिलाया, मौका दिया एच एस सी कंटिन्यू करने के लिए दूसरे कॉलेज में। लेकिन वो हमको हर महीना सहायता देता था, हर महीना हमारे स्कूल फीस बढ़ते थे। पूजा जी,
1: जी
0: मेरे पिताजी के गुजरने के बाद भी वो कंटिन्यू किया, हम आपको सहायता करने, हमारे पर्सनली स्कूल फीस भरे और हमको अपने घर पर बुलाकर ट्यूशन फ्री में दिया, जब तक हम एच एस सी नहीं कंप्लीट करते। तो एच एस सी के बाद ये सब खत्म हुआ, लेकिन मैं अब अपने ओर से मैं ये सोच लिया था कि अगर मैं काम करूंगा, मैं काम में रहूंगा, तो मैं भी किसी प्रॉब्लम में स्टूडेंट जो होगा तो मैं भी उसको सहायता करूंगा।
1: अवश्य
0: और
1: जो भी आपने
0: ये
1: सीखा
0: हुआ
1: है।
0: हमारे जिंदगी में पूजा जी,
1: जी
0: ये हुआ मेरे जिंदगी में। एक शिष्य आया हमारे घर में ट्यूशन लेने, स्कूल फीस भरने के लिए उतना पैसा नहीं थे, तो मैंने उसको मदद किया। वो इवन ग्रेजुएशन अपने अपने स्टडीज के लिए भारत गया, वहां से वापस आया, लेकिन हम उसका सहायता करते रहे जब तक कि वो काम नहीं करते। हाँ, तो आज भी मैं कहता हूँ, जब भी हमके मौका मिलता है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो प्रॉब्लम में है, तो मैं फाइनेंशियली उसको सहायता करता हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं भूलता कि हमारा प्रिंसिपल क्या किया। आज जो भी हूँ उसको मैं सौभाग्य मानता हूँ कि उसको नहीं भूल पाता, कि जो ये छोटा सहायता नहीं था, बहुत बड़ा सहायता था।
1: बहुत
0: पूजा
1: बड़ा
0: जी,
1: सहायता, बहुत
0: आज
1: बहुत
0: तक हम लोग
1: धन्यवाद
0: मिले,
1: आपका
0: थैंक यू
1: इस
0: वेरी मच।
1: विचार के लिए हरीश जी। और भी लोग हैं, चलिए उनको भी मैं अवसर देती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं लाइन पर, और मैं मांग करूँगी सभी को 3-3 मिनट में देना चाहूँगी, और सभी बात कर सकते हैं ताकि मैं सभी को अवसर दे पाऊँ। चलिए लाइन पर शोभा जी, उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते शोभा जी,
2: नमस्ते पूजा जी, आप
1: कैसी
2: कैसे
1: हैं
2: हैं?
1: आप?
2: बहना
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: मैं भी ठीक हूँ।
1: बताइए।
2: बड़ी बढ़िया प्रोग्राम रखा है सभी से
1: धन्यवाद
2: चुन चुन के लाते हो ना
1: जी।
2: जी हाँ, मैं एक बात करती हूँ, आप भी इस दुनिया में कहाँ है लोग
1: नहीं
2: सहायता
1: बताओ,
2: करे?
1: नहीं
2: वो
1: बताओ।
2: कहते हैं टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं मिलती है, मेरे ही घर में इतने काम धाम है, तो मैं क्यों दूसरों को सहायता करूंगा? ठीक है कि नहीं जो
1: जी
2: मैं बढ़ रही हूँ?
1: जी
2: लेकिन जो कैसे भाई हरीश ने कहा, वो कितनी टाइम से कितनी दिनों से वो सहायता सहायता करते हैं, उसकी फैमिली उसकी कैसे है, वो प्रोफेसर उसकी सहायता किया, लेकिन अभी के लोग कहाँ है करने के लिए? अभी तो जहाँ मजदूर महिला चले जाते हैं मिट्टी में, तो वो कैसे लिंडा गिला करते हैं सहायता के बात नहीं करते हैं।
1: नहीं
2: लेकिन मैं
1: करते।
2: एक बात करती हूँ, मैं भी नौकरी करती हूँ, लेकिन मैं बहुत सहायता बहुत एड कर लिया किया है। वो महिला को कपड़े नहीं थे तो मैं दे देती थी, जो मैं अपने खाना मेरे माँ पका के देते थे मुझे सवेरे, तो मैं उसको दे देती थी, लेकिन मैं वो खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उसकी फैमिली नहीं आते हैं दिखने के लिए। तो मेरे मेरे जितना कुछ है, जब मैं कोर्ट ले जाती हूँ वो महिला के, तो मैं उसके मेकअप दे देती हूँ, मेरे मेकअप थोड़ा सा पाउडर, वो खुश हो जाते हैं। ये है सहायता,
1: ये
2: जो
1: सही।
2: जो आदमी खुश हो जाते हैं जब तुम सहायता कर देते हो, उसके दिल खुशी हो जाते हैं,
1: उसके एक
2: तो खुश
1: मुस्कुराहट के लिए आप
2: जी
1: कुछ
2: हाँ,
1: कर देते
2: तो
1: हो।
2: तुम जिंदगी भर सुखे सुख आतुर तोहर घर में, हम भोजपुरी में बताएं, तोहर घर में हरदम जब एक आदमी के एदे कर देला हाई हाथ देला,
1: बरकत
2: तो
1: रही।
2: बरकत आ फूले फले तोहर घर में, कईयो प्रॉब्लम नहीं, और अंजरो में रह आ धन दौलत से भर ले रह। जब से हम काजा हम सीखले हैं अपन बात जना लोग संगे, तो हम इसने सीखले हैं हब्बी ले हम सहायता करते रहेगा, नहीं बोला जाके पैसा दे के ना,
1: नहीं
2: नहीं एगो एगो प्रॉब्लम में एगो एगो अकील दे दा है चीजवा ऐसे करा है चीजवा ऐसे करा
1: जानत नहीं चाहेला करे के जानत नहीं कोई आगे बढ़ता तो ओकरा आगे बढ़े के

0: तनी सुन मदद कर लिया, तनी सुन सहायता कर दिया, नहीं तो जानत नहीं कि ये आगे बढ़ जाए हमारे संगे, नहीं मदद कर आजकल ये चलन बात है।
1: सुन ना तो अभी तू पूजा काम करा था ना, तो अभी को गाड़ी अभी तो शो हुआ थी दलाल बा प्रमोशन गाड़ी के ना, तो तू एगो गाड़ी किने ला ना, तो अब हमारे यहाँ गाड़ी नहीं बात, हम लोग बहुत दिख पूजा कैसे गाड़ी किन ले ला, तो थले हमारे को
0: जरूरत के मारे गाड़ी वाला टूट जाए।
1: पूजा हम बोला थे तू एगो जोड़ी गाड़ी किन लिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, और आपको कहेंगे शुभ संध्या। लाइन पर और भी श्रोता है, आइए उनको भी हम अवसर देते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्ते।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते भाई दिला जी, कैसे हैं आप?
2: सब चल रहा है।
0: बताइए आपका क्या कहना है।
2: राकुजिन के जो जो जो जो चिमनी है हाँ। उसमें धुआं बड़ा जोर से चल रहा है। हाँ चाहे को बहुत बढ़िया एगो पोखाम बा, और वह एगो जन सीजे बा बहुत बढ़िया है। हब्बी के लेपो रोटी कपड़ा और मकान है, ये सब ले ऐसे अच्छी बहुत एसेंशियल है, बहुत एसेंशियल है सब आदमी लोग के सब कोई के। पैसा से मो ढेर पैसा नहीं अच्छा, ये मागुई में तोरा ले जाए, प्रेसिपिस में ले जाए, ढेर बेकार के पौसे अच्छी हो एकर से, तब चाहे ना बहुत सावधान रहे के पैसवा से जे भगवान देलक अच्छे बाग में ऐसे करत पैसा में से मैं बहुत सावधान से चाला ओकरा सेवी करेगी, और एगो गरीब के आदमी के चाला बहुत अच्छी करे के एदे करे के। हम तो हमारे इतना बरिश हो गल आप पब्लिसिटी नहीं करते, मैं जन्म है छोटा है चीज जन है अच्छा पर बहुत हम बोला चाहे हम बहुत मोरिस भर में आदमी के हम अच्छी कर ले रही, हम एदे कर ले रही छोटा से ढेर बड़ा बड़ा अच्छे छोटा से ढेर सब कोई के अच्छी कर ले, सब कोम लोग के आदमी के है, सब कोम लोग के एदे कर ले हाई हाई अच्छी मैं कुमार फूड्स में हाई लुगा में, और जब एगो औजिकापे एगो हमने पूछ कहा जल एगो औजिकापे मला ढेर था ओकरा सुते करेला हम वाला पुलिस ते रहला तो ओकरा सुते करके ओकरा पार कर देला हम हाई कर ले हाई, और हबी के आदमी सोशन के पूछो धरला मदद नहीं करेला हबी बहुत घमंडी बा ना एगो वन सैंक पूछो ले धले गो आदमी सकेला ऊपर अभी बहुत कमती होता है सब
0: कमती होता
2: हाँ। मतलब हाँ बहुत कमती होता ना ये धला आदमी धले बहुत अच्छी हो गल बा धला कैसे बोल बा गौनवो धले हो गल बा का पैसा बा जिला बा तो धला वो गरीब लोग के नहीं मानता ना एगो गरीब जाए ओकर घर तक एक बेर पानी नहीं दी ना एगो एगो एगो रोटी तक करियो नहीं दे ओकर लगे नहीं मिली किसके लकड़ा अच्छी करे ओकरा ओकरा मालट्रीट करके बोले हमर घरे का आड़वे ओ सोचा था कि ओ धनवान भाई गरीब बच्चा सावे जगो डिफरेंट भाई एगो मोन जे डिफरेंट था ओकर लिए है से मैं हमर लिए नहीं हम ने पूछ कोनो आदमी रहेला हम ओकरा बराबर ओकरा ट्रीट करीला हम बराबर ट्रीट करीला
0: हमरा बोला चाचा खाइए खातिर हम कोई के घरे नहीं जाइला
2: परिवार लोग हम ढेर आटासे नहीं आदमी से ना एगो डेरे एक दिन सके एनमी हो जाएगी एगो कॉन्वर्सेशन में एजुकेशन में एजुकेशन में चाहना एडे करे के मदद करे के ये हमारे को छोटा से हम एगो मांग करत है कि जितना जनता लोग सुनता एगो थोड़ा अच्छी निकाल के एगो थोड़ा सुन ये ठीक मजे एगो लेता हूँ निकाल के जहाँ ले सकब तब मदद करब बस फिर जब हमने जब सब कोई एगो नेशन से लेवा से दिन मित्रु बानो से कोई नहीं से कि बारे करी तब वहां जेब भगवान सब तोरा अथी करी तो हम तोरा इतना दिह इतना महिला पाराजी में सगरो विदा कर ले सब कुछ दिल खाए पिए के सब रोटी कपड़ा और मंगा तो तू कौन सी कर लेवे कितना आदमी के कितना गरीब के तू अथी कर लेवे तू मदद कर लेवे चाला कापो दे के ना और वही सब ले बड़ा आदमी है तो एगो अथी है बहुत रेमियसे कर सब सोटा लोग के हई सोता टू हवा हई एगो बड़ा शोभा देवे ला ना हई पोगाम वाके
0: धन्यवाद
2: समझ ला तो अरे जे अच्छी करते रहिए पोगाम अच्छी करते रहिए जनता लोग अच्छी रही तो बहुत धन्यवाद और एगो वीकेंड बाद निमन तकारी खाके पी के अच्छी करिए अब इजे करिए कसीर मोगिसे एगो

0: आस बहुत अच्छी हुकूमत है ना, कमासुत आदमी है ना,
1: हाँ
0: बहुत कमासुत है। हम देखले ढेर कोई के काम धाम करे लंच सब तो एगो व्हीकल बा तो हवे सब बच्चे लोग के खिदमत अच्छी करे थे हम,
1: बहुत बहुत
0: और
1: धन्यवाद
0: प्रोग्राम तब बहुत अच्छी बात जकास बा।
1: धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अंगिराज जी को हम स्वागत करते हैं। नमस्ते अंगिराज जी, दादाजी कैसे हैं आप? नमस्ते
0: नमस्ते बेटी,
1: नमस्ते, प्रणाम।
0: बीमार रहल अभी तनी अच्छा बानी।
1: बोला तो हर कौन सी बात है विचार बोले के ई सहायता पर।
0: जानला सहिता पर जब तू बोलत हुआ
1: हाँ
0: तो खाली सहिता करे के नहीं, ई बा कि कबो जो आदमी तोहरा सहिता कर ले बा ओके भूले के नहीं।
1: नहीं हाँ ई सच्ची बात बात
0: जानला, देर कोई भूल जाला
1: भूल जाला
0: कि हमरा सहिता कर ले बारे। देखा हमर घर रहे के नहीं रहल, मुश्किल में रहनी, तूफान ना रहल, पर जब पड़ोसिया लोग जितना भाई लोग सब मदद कर लन जा और निकल के खड़ा हो गई नी तो परिवारिक नहीं जान ला हमर पड़ोसिया लोग कितना मदद कर ले बाबला ना, पर जब हम मदद करेंगे निकल तो शायद हमारे परिवार ही मरी का कर दो का कर जात हो। नहीं भूले के नहीं, मदद करे के और जो थोड़ा कोई कर ले बा भूले के भी नहीं,
1: नहीं चाहना बोले कि हाँ
0: जहाँ तक सकबा मदद कर दे कुछ हाथ से गोड़ से नहीं सकला तो अकल से, अकल की मदद बहुत भारी मदद है। दुख में जाकर के उनका वो सहिता कर, यही कहे के बाद ढेर लंबा नहीं कहते बेटी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: करे होला के भूले के नहीं,
1: नहीं चाहे ना भूले के, ये सच्चे बात बोल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, प्रणाम और शुभ संध्या आपको। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो हेलो पूजा जी,
1: नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
2: हाँ अच्छा है, तू कैसे हो?
1: अच्छा है, बोला सुना।
2: हाँ संगीता है।
1: हाँ आपका स्वागत है।
2: हाँ हाँ बोला था, अच्छा प्रोग्राम रख रहे हो, अच्छा लगे ला दिमाग को आवे ला ता तनी संत बतियाई के तौर से।
1: हाँ वो अच्छा लगे ला हम जा आई के तो लोग से बात करे के और हम लोग सीखे के बहुत कुछ मिल जाला। और हम एक हफ्ते जब घरे रहिला तो सोच विचार के ई ऐसन विषय लेकर आईला जो ई समस्यावा हुआ था हमनी के गिर गिर हुआ था। हाँ बोला,
2: अच्छा लग रहा था मेरे स्ट्रेस उस्ट्रेस तनी फील हो जाला, तनी सुना के खुशी में रही ला सब बतिया ले ला सा। हाँ सहायता के बोले ला, चाहे ला देख सहायता चाहे ला खाली पैसा हुए ना जाने ला सब कोई की चाहे ला प्यार से निमन से बतिया ही पा। अब एगो आदमी के कुछ मन बा खाए के जाके ओके पका के दे दे बा मलाद बा कुछ चीज मिठाई एगो कुछ चीज खुशी हो जाए हवे तो बस बा
1: बस बा
2: वो तो हवे दे देला खुशी हो गल और सब कोई संगे चाहेला बांट के रह के सबके निमन से रह के प्यार से। अब कैसे बोलवा तोहर हाँ हमने हाँ एक बोली बुक में बोला नहीं रहो तो सब एक दिन जानत नहीं करे कि कबो कोई के से मैं भगवान जाने ला जहाँ निमन काम करवा भगवान तोरा डुबले तिबले भर देवेला दे देवेला ढेर।
1: अरे गो बात बात है संगीता जी, जब एक हाथ से करत तो दूसरा हाथ नहीं चाहना जाने के कुछ कर ले हो
2: नहीं चाहला नहीं स्प्रे करे वो अपने भगवान देवेला।
1: हाँ
2: मई मौके कर ले देखा अपन मने चलावेला तनी सुन इतना से ढेर हो जाला ढेर बरकत होवेला सच्चे के झूठ नहीं बोला था बरकत होला तू ही नहीं जन्म किनी से भगवान दे देले बटी चाहेला जाने ला तो दिल सफा रहे के पहला
1: दिल सफा रहे
2: भाई दिलवा सफा रही था सब कुछ खुलल बा सब चीज भर जाला भगवान देवेला ऐसे चाहेला जिए के और सब कुछ से लड़का भैया सब निमन लड़का लोग सब निमन निकले ला निमन है तनिए सन पैसवा में पूजा जी बरकत हो जाला।
1: हाँ ये सच्चे है
2: तनी तनी पैसा में बरकत हो जाला सच्चे के। हाँ फिर महावीर बताई भगवान देखा ला एक वो दिफो कर भाई वो कुछ तो देखिए बुझा ला भगवान वो सब जाने ला जैसे लिखा जाला जो चीज हमने अच्छा काम

0: हम नहीं करीला सता भगवान उ लिख देवेला सच्ची के तो उ सब ता जोन करब सता हिए परी चाहेला
1: मिले
0: करे
1: के
0: के
1: हाँ
0: मिले के हिए परी अच्छा काम करब सता
1: हाँ
0: आगे दिन मिलबे करी आ नहीं अच्छा काम करब सता हिए परी मिली कुछ करब
1: हाँ जोन
0: हाँ
1: तो प्लॉट बात है ये मिली ना।
0: हाँ ये मिली
1: आजकल की
0: हाँ
1: तो है ये लोग बोला हम काहे मदद करब, हम काहे सहायता करब, हम चल
0: नहीं
1: अपन दिखे के तब जाके दूसर के दिखब ना।
0: नहीं
1: एक करके के जाइबा घरे मदद मांगे की सहायता मांगे तो वो तोरा
0: नहीं
1: सनी देओल बना दे, तारीख पे
0: हाँ
1: तारीख, तारीख पे तारीख, और
0: तारीख
1: तारीखवा नहीं
0: तारीख
1: आवेला
0: तारीख
1: तारीखवा नहीं आवेला। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता
0: हाँ
1: जी,
0: हाँ लोग
1: और
0: दूसर कोई के लोग आजिया दिवस तब
1: हाँ
0: बतियाई के
1: बहुत
0: आने
1: बहुत
0: पूजा दी नमस्कार
1: नमस्ते
0: नमस्ते शुभ
1: नमस्ते
0: संध्या
1: नमस्ते, शुभ संध्या आपको भी। आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी सुनते हैं। हेलो
2: हेलो नमस्ते पूजा जी। ठीक
1: नमस्ते विजय जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक बातों कैसे ठीक हो ना।
1: मैं भी ठीक, आप सुनाइए आप सहायता पर क्या बोलना चाहते हैं?
2: हाँ सही बहुत अच्छा माँ मेरा बहुत जितना जनता सुना था जितना परिवार जितना जना बतिया सबके बोले प्रणाम। अच्छा अच्छा विचार देना सा हर जो हमरा बुझा था हम अपन विचार देव थी
1: बोला।
2: मैं सहायता करल तो बहुत अच्छा काम हटे ही ये तो हमने चाची के गेहूँ लेकिन वापस चाह ली कि अभी तभी घर बनावत इस तरह नहीं सकी तो गुवर्नमेंट की सहायता करेला पर छत डाले के ओकर दाल कुल करे के पैसा अभी गुवर्नमेंट ने के देवत हटे सही से तो खुदे नहीं सकते तो गुवर्नमेंट ने के देखत हटे हई गो बनौते हटे आर हमने के लिपुक हमने के गाँव बहुत छोटा मोटा गाड़ी और लिपुक में इतना ले बेज बेज ली से मिला के नहीं रहल अपन अपन घर बनाए के हम ये देख थी सर संगा चालो के ये देख सर पैसा हम आपके देव सर हम लिपुक के बोते एगो बैंक सकता हूँ बनाने के बाद बोते हैं परी जाके लकड़ी तब लकड़ी घर पर जाके लकड़ी आने की हमने के मोटाई से लोग दे के सहायता करेंगे तबान के देव सर सहायता कर सर काल हमार लग रही थे यदि करी कैसे अभी तो बड़ा बड़ा अति बाटे होल मिला था लातांत के हो सब चीज मिल जाला थे मैं अगारे हमने सोचते रहल सबके दलाई जब बम्बू आन के लातांत काट लातांत बनाएगी हाउ जान को मदद रहल तो अभी तो नहीं तो होल ले बोते पैसा के तभी अगारी की प्रॉब्लम रहल आदमी के प्रॉब्लम में रही सर उतना फिनांस नहीं रहल तो अगारी जब सब बम्बू करके आना सर लातांत बनाब सर ओकर जगह ओकर लगे ओकर शादी रही गाँव में कोई लगे तो सब हमी मदद कर पकाए के ओकर सब करे के तो है वो सहायता ऐसा ऐसा सहायता अगारी रहा ऐसा ऐसा भरोते रहल बहुत और अभी ले हम बोलते अभी एगो फामी में एगो प्रॉब्लम रही अभी जैसा प्रॉब्लम हो रही फामी में तो फामिया भी मदद कर हम एगो सदगी रही थी फामी मदद कैला ये भी कैला बस कि जब देखो सहायता नहीं करब मदद नहीं करब तो दल जो इंसान नहीं हुआ आर एगो बात कृष्णा कैसे बोले बाटे गीता में चल अपन काम कर ले जाएगी अपन फल की इच्छा नहीं करेगी तो तोरा अपने मिली
1: हाँ
2: बोलोते देब ईदी करब कोनो के तो बहुत मिली आर पैसा से आर अति से नहीं है एगो एगो इंसान एगो कमाद मलाद एगो फामी मलाद प्रॉब्लम में जाके देख लेला वहाँ जाके देखा तो उसे बतियात हुआ ओकरा बोला तो तू अच्छा हो जेबा तो है एगो जान बड़का सहायता करते ओकरा तू सब चीज पैसों से नहीं होला पैसा तो चाहे ला जिंदगी में मिस शर्मा अपन बोली अपन विचार ओकरा बतिया देला ओकरा जाके देख लेला तब बहुत मदद है आर हर कोई यातान का तब बचाई की था सहायता पर बहुत चीज बात बचाई के मैं हमार कौन से ये जितना जनान के सुना था थी जितना प्रोग्राम तो करेगा हम सब इलाज हमें सीखे कुछ प्रोग्राम से कुछ ना कुछ चाहे निकाले हमने के पास कि नहीं सब एक टेलीफोन लेके बतिया आपसे तो कुछ कुछ हमने के मिली नहीं मैं चाहना जितना जन हमके बड़ा बड़ा हमने के जितना दोस्तों सब भाई बहन बड़ा नहीं मन में विचार देवे चाह हमके ले के लिसो लेके कौन जी को से और भर सक सकब अपन जीवन में तो उनका परिवार रही का दोस्त रही का कोई रही सबके चला मदद करके सहायता करके तब जाके जिंदगी में आगे चलबा और भगवान का दे और आपके बोते हैं धन्यवाद के आपके परिवार का धन्यवाद बोते हैं वैसे प्रोग्राम ने कही जीवन में
1: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, शुभ
2: धन्यवाद
1: संध्या आपको।
2: आप
1: तो ये सच है कि जब हम मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो हम इसके बदले, हम मनुष्य हैं, मनुष्य जो है वो उसके बदले कुछ चाहता है, कहते हैं ना। कि सभी मतलबी हैं यहाँ पर, अपने मतलब के लिए जीते हैं। अगर आपने 1 रुपये दिया है तो मनुष्य सोचता है उसके बदले में 2 रुपये चाहिए। इसीलिए वो अपने मतलब के लिए किसी की सहायता करता है। जब तक उसको उससे कुछ फायदा नहीं मिले तब तक कोई भी आपका सहायता नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी कर लिया तो उसका दिल बड़ा है और भगवान

0: उसको देता है। हम अपने में ही देखते हैं, हमारे परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि वो सहायता करेंगे, पर जब समय आता है वो सहायता नहीं करता, क्योंकि वो अपने बारे में सोचता है पहले। पर हमारे पूर्वज, हमारे जो बर्जना है, हमें ये सिखाया है कि वो जीना ही क्या जीना जो अपने लिए जीना है, जो दूसरों के लिए जीते हैं उसी को हम जीना कहते हैं। मेरे दादाजी तो हमेशा यही गीत गाते थे कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। चलिए, और भी श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम अवसर देते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, विशेषर जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी, सब ठीक है ना?
0: सब ठीक, सब ठीक। बताइए, अच्छा, आपका क्या कहना है?
1: हाँ, मैं तो ये कहूँगा, माफ करना, मैं बचपन से अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को सहायता देते आया हूँ, अपने मित्रों को भी सहायता दिया हूँ, मंदिर बनाने में सहायता दिया हूँ। जब गांव में को मंदिर नहीं था, उस समय से मैं सहायता देता आ रहा हूँ। दूसरा मंदिर बना, उसमें भी सहायता देता आया हूँ। आज मैं सीनियर सिटीजन का प्रधान हूँ। हमारे कमिटी में लगभग 520 व्यक्ति है अभी। अभी सभी लोग बूढ़े बूढ़ी है, वहाँ जमाज के है। आज भी मैं उन लोगों को सहायता करता आ रहा हूँ। फ्री में 4 बस दिया, जाओ पिकनिक करो, मैं तो नहीं जाता हूँ। और सभी को जो जो बीमार पड़ जाते हैं, सबको हम जाकर अपने कमिटी से, मैं प्रधान।
0: शायद लाइन कट गई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे सर जी, आप फिर से फोन कर सकते हैं। आइए, लाइन पर और भी श्रोता हैं, उनको भी हम अवसर देते हैं। हेलो हेलो हेलो, राधा जी,
2: हेलो।
0: नमस्ते।
2: हाँ पूजा जी, नमस्ते। नमस्कार, ठीक है ना?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: जी मैं अच्छी हूँ।
0: चलिए बताइए,
2: मैं सहायता पर आपको मैं कुछ बोलूंगी।
0: जी,
2: सहायता मदद एक ही बात है, जैसे कबीरदास जी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जितना हमें मिलता है, हम जहाँ तक हो सके हम किसी की सहायता करें, लेकिन हर किसी के पास तो पैसा होता नहीं है कि वो पैसों से किसी की सहायता करें। हम वस्तु से भी उसकी सहायता कर सकते हैं, मतलब कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ नहीं है, पुस्तक से, वस्ते से, कुछ से भी। और दूसरी बात ये है, सहायता करके बोलना भी नहीं चाहिए कि मैंने ऐसा किया वैसा, क्योंकि दान देकर बोलना नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, बड़े लोगों ने कहा है कि दुआओं का और बददुआओं का दोनों का असर पड़ता है, और इसको मैंने महसूस भी किया है। दुआएं मुझे मिली है, मैंने दुआएं लोगों को दी भी है, और ये सच्ची बात है कि ये बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपने किसी की मदद कर दी अनजाने ही में, सही आपने उसका दिल खुश हो गया, और जो मुंह से वो उसने जो शब्द निकाले हैं, तो पता नहीं। देखिए, मैं एक महिला आती थी, मैं जहाँ काम करती थी, हमेशा वो कुछ बीमार से रहती थी, और जब वो आती थी तो कहती थी कि मुझे एक जगह दे दो अंदर बैठने के लिए, जब तक वो ऑफिस खुले, तो मैं मैडम से कहकर उसको भीतर बिठा देती थी। वो महिला मुझे इतनी दुआएं, जाते आते वो इतनी दुआएं देती थी, इतनी देखिए मेरी ही आंखों में आंसू आ जाते थे। आज वो रही नहीं, लेकिन वो बात रह गई है मेरे पास कि सच में दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है, और किसी की सहायता करना अनजाने ही, पता नहीं किस तरीके से, या शब्दों से या विचारों से, जैसे अभी अंगिरा कसा ने कहा, किसी भी तरह से हम, यदि हम किसी की हम मदद कर सकते हैं तो हम जरूर करें, क्योंकि ये खाली नहीं जाता। ये मान लीजिए एक ये ईश्वर प्रदत्त वरदान हमें मिला है, भगवान ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम किसी की मदद करें। यदि किसी ने हमारे सामने हाथ फैला दिया, आपका वो जो भी आप दान उसको करेंगे, पता नहीं उस छोटी सी दान से उस व्यक्ति का कौन सा काम निकल जाए, ये हमको पता नहीं। इसलिए मदद करना चाहिए, जाने अनजाने में हम हमेशा ऐसा करें कि हम किसी की दुआ लें, बद्दुआ ना लें। यदि नहीं कर सकते हैं तो हम नहीं करें, लेकिन यदि कर सकते हैं तो कैसी भी तरह, किसी भी तरह हम उसकी मदद जरूर करें। आपका जो प्रोग्राम है, आपने बहुत अच्छा चुना है, बहुत अच्छा विषय रखा है।

0: धन्यवाद धन्यवाद
1: बहुत
0: आपका,
1: धन्यवाद और शुभ संध्या, शुभ रात्रि
0: शुभ संध्या आपको भी। आइए, एक और
1: जी।
0: श्रोता है लाइन पर, उनको भी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो,
1: हेलो प्रिया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार बीना जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ मैं ठीक हूँ, साफ सुनाई दे रहा है अभी फोन?
0: थोड़ी सी आवाज बैकग्राउंड में आ रही है। अच्छा,
1: मुझे सुना
0: बोलिए, कोई बात
1: सुनाई
0: नहीं,
1: दे?
0: बोलिए
1: हाँ तो मैं जल्दी जल्दी अपने विचार रख रही हूँ
0: जी।
1: कि देखिए, सहायता कई प्रकार से हम कर सकते हैं, शरीर से, पैसे से, विचार से, अपनी वाणी से, किसी भी प्रकार से हम किसी की सहायता कर सकते हैं। इसी बात भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम किसी की मदद सहायता कर सकें, और सहायता जब हम करते हैं किसी की भी, और किसी ने हमारी सहायता की हो तो उसके प्रति हमें सदा कृतज्ञ होना चाहिए। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, एक समय आता है कि आदमी अपने को वो भूल जाता है, भूलना नहीं चाहिए कि इस व्यक्ति ने मुझे किस समय में किस तरह से सहायता की है। क्योंकि सच्चे मनुष्य का यही लक्षण है, जब भगवान ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है तो हमें उस सहायता के लिए भगवान से, क्योंकि भगवान ने हमें चुना है ना उस सहायता के लिए, ऐसा सोचना चाहिए कि हम किसी के अगर किसी प्रकार से मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं किसी रूप में, धन से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे वाणी से, कोई भटक रहा है, किसी को रास्ता सूझ नहीं रहा है, आप उसको दो दो चार चार द्वारा भी सहयोग, सहयोग का अनेक रूप है पूजा जी। मैं यही कहती हूँ कि सभी को वो करना चाहिए, क्योंकि संसार में कहा, एक गाने में भी आता है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तुझे दिल जमाने के लिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के जीने के लिए यही सच्चे मनुष्य का लक्षण होता है।
0: लक्षण आता है।
1: लेकिन अगर कोई हमारी भी सहायता करता है, हम मुसीबत में होते हैं, हम दुख में होते हैं, कभी हमें नहीं सूझता है कि हम क्या करें, लेकिन अगर कोई सामने से आकर मदद के हाथ बढ़ाता है, मदद करता है, किसी भी मदद सिर्फ पैसे से ही नहीं होता है पूजा जी, किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, किसी का सहयोग कर सकते हैं, तो उसके प्रति हमें सदा आभारी रहना चाहिए। किसी भी अवस्था में हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक वक्त में इसने हमें किसी भी रूप में हमारी सहायता की थी।
0: ये
1: मैं
0: तो
1: तो अभी
0: है।
1: डर डर कर फोन कर रही थी, क्योंकि फोन का कोई भरोसा नहीं है, ये भी थोड़ा
0: नहीं,
1: पागल देता है।
0: कोई
1: तो
0: बात नहीं, पर ये
1: समझते
0: बहुत
1: हैं,
0: बहुत
1: चलो
0: अच्छा आपने
1: भगवान,
0: कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत धन्यवाद, और
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार, और शुभ संध्या आपको,
0: शुभ संध्या आपको भी।
1: नमस्कार।
0: आइए, एक और श्रोता है लाइन पर, बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी को अवसर देना चाहूँगी, तो चलिए, समय की कमी तो है पर फिर भी मैं सभी को अवसर दूंगी। आइए, लाइन पर रूपा जी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते जी, कैसे
0: नमस्ते,
1: हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: अच्छा, बताइए, आपका क्या कहना है?
1: मेरा कहना है, हम किसी को मदद करेंगे तो हमें भगवान सब कुछ देता है, कोई भी रास्ता पार करेगा हम उसे पार कर देंगे, या कोई बोझ उठा रहा है नए सब उठाने को, हम उसे उठा देते हैं, उसे मदद कर देते हैं, या किसी चीज कमी है उसका, तो अगर कहीं किसी के घर वो काम नहीं कर रही, नहीं सक कर रही, कपड़ा नहीं धो सकते हैं, हम उसे कपड़ा धो देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ऐसे मदद करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए ना, करके हमें बोलना नहीं चाहिए, फिर भी
0: जी।
1: हम बोल रहे हैं, यही कहना है मेरा,
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: यही
0: रूपा जी,
1: संदेश है। हाँ
0: बहुत
1: लीजिए,
0: बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद आपका,
1: धन्यवाद,
0: और शुभ संध्या आपको।
1: बहुत।
0: चलिए, लाइन पर धनी जी हैं, उनको भी हम अवसर देते हैं। हेलो,
1: हाय
0: नमस्ते
1: पूजा
0: धनी जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पूजा
0: अच्छा, बताइए, आपका क्या
1: जी,
0: जी?
1: लोग कहते हैं कि ऊपर वाला वो सिर्फ ऊपर नहीं रहता है, वो जहां जहां आप सोचे वहां भगवान है। तो मान लिया जाए कोई मुश्किल में है और वो आपके पास आया है, तो ऐसा होता है कि भगवान आप ही को ये मौका दे रहा है उसकी सहायता करने के लिए। भगवान देखता है तो जिसको सहायता मिल जाता है तो उसका दिल खुश हो जाता है। तो यही यही एक दुआ है इसमें।

0: आपको दुआ मिलता है
1: जी,
0: हर कोई जो सहायता करता है
1: जी।
0: तो मैं कहता हूँ आपको ये मौका इस आपके प्रोग्राम से मैं मौका मुझे मौका मिला है आपको बताने के लिए। मैं मुश्किल में था इस सप्ताह में, मैं हॉस्पिटल गया था और बस से सवारी कर रहा था
1: जी।
0: मेरा उतरते समय बस में से जब मैं आ रहा हूँ घर पर तो मेरा एक बटुआ खो गया, गिर गया, मुझे पता नहीं था। और मैं घर भी आया तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर भी किसी ने फोन किया मुझे, तुम कुछ खो गए हो? तो मैंने बोला कि मुझे पता नहीं है। तो मेरा बटुआ खो गया था, गिर गया था। तो जो बस चालक है उन लोगों ने ले लिया, अपने पास रख लिया। तो उसमें मेरा आईडी था, मित्रो, और बैंक का कार्ड था, और बैंक का कार्ड था, सब कुछ उसी में, लेकिन पैसा नहीं था। तो उन लोगों ने तब फोन किया और मुझे दे दिया, उसमें मेरा तस्वीर था और नाम था। ये हमारे गांव ही के एक ड्राइवर था। तो यही बात है कि जब किसी को सहायता मिल जाता है तो उसका दिल खुश हो जाता है,
1: खुश हो जाता है।
0: और भगवान भी आपके पास भेज देता है किसी को, तो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यही बात है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमेशा सहायता करना चाहिए, जो कुछ हो सके, जो कुछ आप कर सकते हैं करना चाहिए। यही बात है।
1: हमें तो ये अपने आप को मतलब खुशनसीब समझना चाहिए कि हम देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
1: जो है धनी जी, एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम अवसर देते हैं। कमला जी नमस्ते, और आपका स्वागत है हम और आप कार्यक्रम में।
2: हाँ नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते।
2: सुनत है अभी घर, अभी घर में आई, मैं बाहर थी। हमने जाने ना हमने के लौंदवा में एगो एंसमेन के पूजा हुई, बड़ा पूजा, जोरी पूजा। हम गए ली रोज पूजा, खुद अच्छा लगल सुने के, सब स्वागत सब अच्छी तरह से हो। काल नहीं परसों एगो है अच्छी हो कृष्ण जन्माष्टमी के, ओकर एगो पूजा हो, एगो एगो बच्चा के ओके लेके ऐसे पानी में सच्चे के ओके कमाजा एगो है अथी लेटू हो लातौत में कृष्ण जन्माष्टमी के ओकर झूला सब। तब है हवे जन है मैडम सेवा रह ओकरे लड़का रह, तब आज आज पूजा में उसकी मंगलसूत कहीं पर गिर गई सोने की।
1: अच्छा।
2: सब ऐसा सब बोला गया कि कहीं किसी को मिला है तो वो वापस लौटा दी। तब मैं घर आई तो तब पता चला कि सच में वो मंगलसूत वो उसे मिल गई। तो इधर भगवान के काम है ना, कोई नहीं लेला, सब ईमानदारी की एगो चीज है ना पूजा जी, एगो ईमानदारी की एगो गौजाते है। तब है ये बोला था यार कबो कबो बस में वायाजे हो पोली से तू जाए तो देखबा कोई के हाथ नहीं बा, कोई के पैर नहीं बा, कोई के जब देखबा ओलो के बॉडी के एगो अंग नहीं बा ओलो के संगे, तो ओलो ऐसे हाथ पसार पसार के भीख मांगे लन सा, पैसा मांगे लन सा, देख के ता दिल भी एक कलिते हो जा ना।
1: कुछ नहीं रही, पैसा नहीं दे के तोहर साख में, तोहर पोतफे में, किपटा तोहर बस्ता में अगर एगो रोटियो हो तो निकाल के दे दे बालो के, वही अच्छा मान ला सहायता कर ले।
2: हवे में एगो आनंद भी मिले ना, ऊपर से भगवान देखा था हमने के,
1: देखा था
2: हमने के कर्म देखा था। और हम तो थोड़ा बोला हमार एगो सहेली बा, उ तस बाप जितना देवेला दान पूजा पाठ हमरो सहायता कबो कबो करेला देवेला हमार लड़का लोग सबके, तो ओकरो भगवान एगो शक्ति अच्छा से दे। अभी उ तनी तनी मारा ना देला, भगवान ओकरो एगो शक्ति दे, हमेशा हमने के सामने रही ओके देखब, देखब तो भगवान के एगो रूप हमार सहेली। हाँ और है ये बोला था आइए बहार को हम बात ले, जिंदगी के प्यार को हम बात ले, मिलके रोए मिलके आपने बात चली मैं भूल गई।
1: कोई बात नहीं कमल जी, आपको कहेंगे बहुत बहुत
2: धन्यवाद। आप तो

0: और आप तो बाहर ही बाहर है, पूजा है ना, तो पूजा करते करते बाहर आ जाती है, हमारे दिल में, हमारे मंदिर में, अपने आंगन में। धन्यवाद, शुभ शाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी इन शब्दों के लिए। और एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको हम सुनते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
2: हम ठीक हैं, आप ठीक हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ, बताइए।
2: हाँ, कैसे बोलते हैं, सहायता करने का वो लिखते हैं ना, वो गीत है, वो गीत सुन के तो कितना अच्छी लगती है। वो गरीबों के सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। वो गीत देखते हैं ना, तो ऐसे दूसरों को सहायता करना चाहिए, खाली अपनों को नहीं देखना चाहिए। वो गरीब है, वो धनी है, वो सबको सहायता करना चाहिए। कोई हॉस्पिटल में है, कहीं पर ही है, जिसका खाना नहीं है उसका थोड़ा खाना दे देना चाहिए। अभी तो ठंड के चलते है, वो कपड़ा नहीं है, किसी को कपड़ा दे देना चाहिए, वो कंबल खरीद कर दे देना चाहिए। सबको देखना चाहिए ना, जिसका नहीं है वो कितने कितने अभी लोग अभी तक खाना कम है, किन को देखना, किन को दे देना चाहिए
1: जी।
2: मंदिर में जाके जाते हैं तो सहायता करना चाहिए, सभी जगह जाने हैं तो थोड़ा सहायता करना चाहिए ना, अपनों के खाली नहीं देखना चाहिए ना, बच्चों के, माँ बाप को, सबको जो बीमार है सबको सहायता करना चाहिए। पूजा जी, हम इतने बोल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विचार के लिए और शुभ संध्या आपको। एक और श्रोता है, आइए श्यामा जी हैं लाइन पर, आइए उनसे हम बात करते हैं। प्रणाम श्यामा जी,
3: आपने मेरे साथ क्या किया है?
1: अच्छा बताइए, आपका जो नंबर शायद बहुत नीचे चला गया, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। चलिए बताइए श्यामा जी, आपका क्या कहना है?
3: मेरा कहना ये है पूजा
1: जी,
3: डूबते हुए को बचाना, गिरते हुए को संभालना, भटके हुए को अच्छी राह दिखाना, इससे बड़ी सहायता क्या हो सकती है
1: जी।
3: प्यासे को की प्यास बुझाना, भूखे को एक टुकड़ा रोटी देना, रोगी की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का हाथ थाम कर और प्यार से दो बोल बोलना, इससे बड़ी सहायता और क्या?

0: और इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। आपके यहाँ इतने सारे जानवर हैं और इतने आप अपने अपना जो प्यार है उन पर बरसाती हैं और उनकी देखभाल करती हैं एक बच्चे की तरह, उससे बड़ी जो है सेवा और क्या हो सकती है। इस
1: हाँ
0: पर
1: जी,
0: आप बात कर सकती हैं। तो
1: मैं अपने जानवरों को बच्चों की तरह पालती हूँ, नहाती हूँ उन्हें।
0: जी
1: अगर जिस दिन वो नहीं नहाते हैं तो वो भोजन तक नहीं खाएंगे, वो मुंह कैसे करते हैं फेर कर रह जाते हैं, जैसे उनकी लब पर हंसी नहीं है, उनके चेहरे खुश नहीं, उनका चेहरा खुश नहीं है। मैं बहुत सेवा करती अपने जानवरों को। और एक दिन मैं रात्रि में बीमार पड़ गई थी, मैं इतनी बीमार पड़ गई थी, पता नहीं मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो मैं जाकर अपने, मेरी जो छोटी है ना बेटी है, वो तो पलंग पर सोती है, एक कमरा है जिसमें कोई नहीं रहता है, तो वहाँ दो पलंग है तो एक पलंग पर सोती है। तो मैं जाकर उसे देखकर रोने लगी। मैंने सोचा कि काश तुम एक इंसान होता, या एक बेटा होता, या एक बेटी होती, एक प्राणी होती, तो आज मैं तुझसे ये कहती कि देखो मैं बीमार हूँ, जाकर किसी को कहो ना। मैं रोने लगी। मेरी जो कैसे जो मैं महसूस करती है कि मैं कुत्ते को नहीं पालती हूँ बल्कि बाल बच्चे को पाल रही हूँ। ये मेरे दोस्त है, मेरे अच्छे दोस्त है, और मैं संतुष्ट होती हूँ। जिधर जाती हूँ मुझे देखते हैं, वो जानवर मुझे देखते हैं, और कैसे कि एक तरफ से मेरी रक्षा भी करते हैं। हाँ, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए,
0: इससे बढ़कर
1: कुछ
0: और
1: नहीं
0: क्या चाहिए,
1: चाहिए
0: कुछ
1: ना।
0: नहीं
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: उसकी सेवा करती हूँ, समय पर खाना दे देती हूँ, कैसे मैंने तो खाना तैयार कर दिया सवेरे उनके लिए। कभी कभी देर हो जाती है, नहीं कहती हूँ कि रोज सवेरे खाना तैयार हो जाता है, नहीं, कभी कभी देर हो जाती है। कभी खाना नहीं चाहते हैं तो पुचकारती हूँ, पूछती हूँ बे किफे तो पापे मोरे तो पाबिया, ऐसे पूछती हूँ, जैसे कि हम बच्चों से पूछते हैं बे क्यों नहीं खा रहे हैं, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है खाने को, या क्या ऐसे पूछते हैं ना। तो उसी प्रकार मैं अपने जानवरों से बात करती हूँ। अगर मैं जानवरों से बात नहीं करूँगी तो गूंगी बन कर रह जाऊंगी पूजा, कोई बात करने वाला मेरे आसपास में नहीं है, ना दोस्त है। दोस्त तो है तो फोन लगाते हैं एक बार दिन में, जैसे कि बिना है, वो मेरी सहेली है, वो जो वो रहती है कहाँ कौदे मास पावे विश्वानी दुखी, वो फोन कर, अभी अभी फोन करके उसने मुझसे बात की। तो हाल चाल तो पूछते रहते हैं, भाई लोग तो हाल चाल तो पूछते रहते हैं, और भाई लोग तो विदेश में है, बहन विदेश में है, वहाँ से तो हाल चाल पूछते हैं, लेकिन एन वक्त पर मेरे सामने कोई नहीं है ना, जिससे मैं अपना दुखड़ा रोऊंगी। हाँ चलो मैं दुख नहीं कह सकती हूँ उन लोगों से, लेकिन वे तो महसूस मुझे मेरे चेहरे देखकर वे महसूस करते हैं।
0: जी
1: आपको पता है उनके आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं।
0: हाँ, जानते हो जी,
1: वो महसूस करते हैं कि ये
0: महसूस
1: जो
0: करते
1: मेरा मालिक है ये कुछ कहना चाहती है ऐसे ऐसे। तो मेरा काम यही है मुर्गियों की सेवा करना, आजकल तो बहुत मुर्गियां नहीं है बल्कि मेरे दो कुत्ते ही हैं, एक बेटी एक बेटा है, दोनों को देखती हूँ और खुश रहती हूँ उन लोगों को देखकर, क्योंकि वो मेरे रक्षक है ना, मेरे आसपास तो कोई नहीं है, वही तो है मेरे रक्षक।
0: वही
1: तो
0: तो।
1: ओके पूजा, मेरा यही कहना था, और मैं ये कहूंगी कि बड़ों की सेवा करने में हमें बहुत खुशी मिलती है,
0: और मुझे आपसे बात करने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब
1: इसलिए तो मुझे पिछला पूरी खीर खिला दिया।
0: नहीं, आपका नंबर शायद बहुत नीचे चला गया इसलिए मैंने देखा नहीं। पर श्यामा जी, आपसे एक और प्रश्न है मेरा। सबने अभी सेवा के बारे में, किसी की सहायता करने में के बारे में बात किया है। मैं आपसे, आप बड़ी हैं इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिनके मन में खोट है, मान लीजिए किसी का एक द्वेष है आपके प्रति, मान लीजिए वो खटाव है या कुछ ऐसे नाराजगी है, तो इसके कारण वो अपने दिल में वो खटास रखती है या रखता है, उसके वजह से, उसके कारण कि वो ना आपकी मदद करता है और ना दूसरों को आपकी मदद करने देता है, और मान लीजिए वो नाराज़गी उसके बर्ताव से ही हुआ है, तो आपने मतलब सहायता मांगा पर उसने सहायता नहीं किया है ना, और ना दूसरों को करने भी देता है, और आपको तरपाता है, ऐसे भी लोग होते हैं यहाँ पर जो अपने
1: बहुत
0: मतलब
1: कोई होते हैं। मेरे साथ ये हो रहा है अभी और हुआ है मेरे साथ। न वे बात करना चाहती है न अपने अड़ोसी पड़ोसी को बात करने देते हैं, आपसे दूर रहते हैं। तो इसीलिए मैं, इससे बेहतर है कि मैं जानवरों से प्रेम करती हूँ
0: जी।

0: और जानवरों से प्रेम करती हूँ, और अपने अपने जो खुद है मेरे भाई है भतीजे हैं उन लोगों से प्यार करती हूँ। ऐरों गैरों से मुझे क्या पड़ा है लेने के, मैं दूसरों के लिए नहीं जीती हूँ पूजा
1: जी,
0: मैं अपने लिए जीती हूँ, अपने भाई बहनों के लिए जीती हूँ, अपने भाई भतीजे के लिए भतीजियों के लिए जीती हूँ, मैं उन लोगों से खुश हूँ, यही बस है मेरे लिए।
1: हाँ,
0: अब जिसको आग लगाना है आग लगाया, घर जलाया, क्या करे, नष्ट भ्रष्ट करे, ये उनका काम है, वो अपना काम कर रहा है, अपना कैसे कैसे अपना रास्ता बना रहा है, इसका जवाब तो उसे भगवान के पास जाकर देना है ना
1: जी, ये तो है।
0: और वो जो ऐसे कर रहा है मेरे ख्याल से वो बहुत अनपढ़ है, बहुत गंवार है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। अगर पढ़ी लिखी होती उनमें समझ बूझ होती, देखो हमसे कोई खफा हो जाता है थोड़ी घड़ी के लिए, हम सोचते रहते हैं, हम बीमार भी हो जाते हैं, तो वे लोग हमें बीमार कर देते हैं।
1: हाँ।
0: सोचते सोचते हम बीमार हो जाते हैं कि नहीं
1: जी, जी, ये तो है।
0: और उनके लिए एक खुशखबरी, आप बीमार हो जाएंगे उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि वो तो अच्छे हित पृष्ठ है ना
1: जी।
0: तो वो आपका दर्द क्या समझेगा, वो कभी नहीं समझेगा
1: नहीं।
0: हम माफ उसे करते हैं जो हमें माफ करते हैं, जो हमें चाहते हैं।
1: हाँ।
0: भूल किससे नहीं होती है, भूल सभी से होती है,
1: सभी से होती है। हाँ।
0: कैसे कहते हैं, पैसन पापा फेल हो जाते हैं ना। हाँ, तो सब बराबर है,
1: पर कुछ
0: सब बराबर है।
1: हाँ।
0: हमें माफ करना चाहिए, लेकिन जो आपको नहीं माफ करेंगे, आपको दबोचेंगे, आपको अपने पैर की तरह रौंदेंगे, कुचलेंगे, तो कितने आप उसे माफ करेंगे,
1: कितना।
0: हाँ, नहीं माफ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दिल रोता है पूजा
1: जी जी।
0: हम भी इंसान हैं, हमारा जो मन मस्तिष्क है खराब हो जाता है सोते सोते, आपको पता है
1: जी, ये तो है।
0: इससे तो बेहतर है कि हम जानवरों से प्रेम करेंगे
1: जी।
0: आज अगर कवियों ने कविता लिखी है तो क्यों लिखी है, जो दिल का दर्द है, केवल श्रृंगार रस ही नहीं है, बहुत कुछ है हमारे हृदय में, जितने दर्द है वो गुबार बन के बाहर निकलता है
1: जी।
0: कहानियों में यही सब मिलती है, कविताओं में यही सब ज्यादातर मिलती है
1: जी,
0: ना। मैं जहाँ तक जानती हूँ, अगर मैंने अगर कोई कविता लिखी है तो ज्यादातर दर्दम है मेरी कविता। क्यों दर्दम है, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या हुआ है मेरे साथ
1: जी।
0: बचपन से आज तक क्या हम दुख सहते रहेंगे,
1: नहीं।
0: और जो आपको नहीं चाहते वो आपको कभी नहीं चाहेंगे, इतिहास दोहराती है और दोहराता जाएगा पूजा,
1: हाँ,
0: आपको पता है।
1: हाँ, और ना आपको बढ़ने बढ़ने देगा, और ना ही आपको, जब आप आगे बढ़ते हैं ना ही वो आपको देख सकता है, वो उसके
0: नहीं देख
1: मन
0: सकता
1: में
0: है,
1: जलन
0: किसी
1: है।
0: ना किसी प्रकार से
1: हाँ,
0: आपको वो रोकेगा, आपके
1: हाँ,
0: राह में वो आपकी राह में वो रोड़ा बनेगा।
1: हाँ, ये तो है, वो है। और जो सहायता करना चाहता है वो करेगा, वो बहाने नहीं बनाएगा।
0: हाँ, जिसको करना है तो करेगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे मुंहतोड़ जवाब दे देते हैं।
1: हाँ
0: हाँ, कि नहीं मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसे
1: जी।
0: कर देते हैं। लेकिन जो अपने होते हैं, जो अपनी भाई बहन होते हैं, भाई बेटे अपने, ये किसे कहते हैं, भतीजा भतीजी होते हैं ना, कुछ भी कहो वो आपको सुनेंगे
1: सुनेंगे। और कुछ
0: हाँ।
1: लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सपने दिखाते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये वो, पर कुछ करेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। और सहायता नाम का, मान लीजिए, उनके लिए एक भारी चीज़ है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने लिए सोचता है पहले, फिर जाके दूसरों के बारे में सोचता है। और अगर आपकी सहायता कर भी लिया तो मान लीजिए आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको आगे बढ़ना क्या वो लोग देख सकते हैं, नहीं, इसलिए तो हम
0: नहीं
1: कहते हैं।
0: देख सकते हैं, वो मनसूबे बनाते आपको गिराने के लिए, आपको फटकारने के लिए,
1: जी, ये तो
0: ये
1: है।
0: बहुत बहुत कैसे कहते हैं सपना बुनते हैं।
1: हाँ, ये तो है।
0: इन उनका यही काम है ना, क्योंकि आप उस, ये एक प्रकार का जलन है,
1: जलन जी,
0: ईर्ष्या है, द्वेष है, उनके मन में खोट है,
1: जी,
0: तो कैसे आपको खुश देख सकते हैं, वो कभी आपको खुश नहीं देख सकते हैं,
1: कभी भी नहीं जी, वो तो है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी, मेरे प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका फोन मैंने बहुत देर से लिया, उसके लिए बहुत बहुत मैं
0: कोई
1: क्षमा
0: बात नहीं,
1: प्रार्थी।
0: अगर मेरी बातों से जो अच्छी लगे उसे अपना लो, जो अच्छा नहीं लगेगा ना उसे छोड़ देना।
1: नहीं, आपकी सारी बातें बहुत अच्छी है, और आपको कहेंगे
0: औरों के लिए तो नहीं अच्छी थी।
1: नहीं, बहुत
0: हाँ,
1: अच्छी है।
0: औरों के लिए कभी कभी ऐसे होता है
1: हाँ,
0: कि जो अब अच्छी बात करते हैं तो उस पर विचार नहीं करते हैं,
1: नहीं
0: क्योंकि
1: करते।
0: जो इधर की बात उधर करता है ना, उसे
1: हाँ,
0: कहते हैं पालाप जिसे कहते हैं ना,
1: जी,
0: तो वो सुनते हैं,
1: हाँ,
0: क्या सुनते हैं पता नहीं, और क्या बकते हैं जाकर बाहर में, उसे ये भी उसे पता नहीं, वो जो जानते हैं क्या कर, यानी कि आग लगाते हैं, आग लगाकर क्या करते हैं, तमाशा देखते हैं,
1: तमाशा देखते हैं जी,
0: यही
1: ये तो
0: है।

तो चलिए इसी के साथ हम और आप कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ और मैं अंत में यही कहूंगी कि सहायता करना एक दान है, एक अवसर है, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं, ना ही दिखावे के लिए। ये अवसर आपको परमात्मा देता है, आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि आप खुद नहीं जानते, स्वयं नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में, वर्तमान में, भविष्य में आपके लिए क्या रखा है, कौन किसकी सहायता में आ सकता है। कभी कभी हम गुस्से में किसी को कुछ कह देते हैं, पर वो गुस्सा क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण रहा, उसको भी समझना आवश्यक है। कई लोग गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं और गुस्से के कारण कभी कभी दिल को चोट पहुंचाता है, इसी कारण हम किसी को गुस्से में कुछ बोल देते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि उससे हम रिवेंज ले, बदला ले, नहीं। बड़ों का काम है सहायता करना, ताकि जब आप बड़े होंगे आपके छोटे आप समझाएंगे कि अच्छा बनना इंसानियत कहलाता है, किसी को समझना इंसानियत कहलाता है, किसी की सहायता करना इंसानियत है। और मदद उससे ही मांगे जहां मदद मिले, वहां दरवाजे मत खटखटाइए, जहां केवल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आपको सनी डियोल बना देंगे। चलिए इसी के साथ हम और आप कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ और जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए कुछ ही घड़ी में हम बढ़ेंगे त्योहार पसंद कार्यक्रम की ओर।

सबको की नमस्ते और ही प्रणाम। तो हर प्रसिद्ध कार्यक्रम में सबको के हम स्वागत करत हैं जा। और जैसे बोलल गल बाते कि मैं हूँ ना, जी हाँ, आपके ही पसंद के गीत, तोहरे पसंद के गीत हमनी चलावत हैं जा। और सकबजा हमनी से अपन पसंद के गीत मांगे 402-808-5।

French Pod 402-420-85 Pod 952-51-7005 Pod. सगव जा हमनी के मिसाजो भेजे तो चला अभी हमनी के संगे मादालबिया से अनीता जी आज किशन गोगा के जन्मदिन के अवसर पर उनको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देव थवन जा पत्नी अंजनी बच्चे प्रीतम विशाल दीपक कवितानी शाहितु परिवार लालजी परिवार सिबोचन परिवार बधाई दे रहे हैं और शोकर सब संगत्या के देने से उकरा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और जे कोई अपना जन्मदिन मनावत हवन जा उस सब कोई के बोलब जा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं साथ में खुशनी माता दिन जो है आज ओकर जन्मदिन रहल और ओकर जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं ओकर पूरे परिवार माता दिन परिवार ओकर माँ सुनीता और पापा हवन मानोज और भाई कृतिश और ओकर सब जता हो माता दिन परिवार की ओर से उनको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं और जे कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा पूरे MBC टीम देने से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

तर चला अभी जुन्हा अनिता चाची चलाल हवन त्रियोले से और अपन लैका लोग खातिर खास तौर पर पतो पूजा और साथ में बातें बेटी अंजू दमाद हवन और बेटा हवन सचिन। तो चला अभी विनोद सुदत्त के गावल गीत की मांग कर ले बातें और चला है गीत वह हमने सुनी ना सा अनिता जी के देने से।

0: ई देखा बापा हमनी के सुनानो यान जी चलाल हवन जा और ए गीतवा के मांगले बाते मिसी सिरतन जी और
1: तेरा घर की चराग जब बब्बू
0: चार कोरी
1: तो अरे
0: 14 चार कोरी चार बरिस के
1: जब
0: हवन जा
1: से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से
0: हवन है गीतवा के बड़ी पसंद करेला तो चला है गीतवा तोहर खातिर मिसेज सुवतन जी
1: सर से उतर गया तो अरे
0: और जितना कोई सुनाने यान जी के गीत पसंद करे नंजा सब कोई खातिर
1: सन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुद ही चुनने से क्या होगा अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

तो चला हई अंतिम गीतवा हमनी चलावत हई जा बसंती जी खातिर जो हमनी के सुनत हवन जा, और साथ में कमला दीनू प्यारी आरोही और सहेली सीता जी, और साथ में नाती रियांश और आरोही खातिर

का सप्लाई का खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते तो चला है गीतवा तोहर खातिर और जितना कोई के लाइन नहीं मिलल बाते शैला जी गौन हुआ सुदेश से बाते श्यामा रघुनंदन जी और रवीना रामफल जी न

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। रविवार 9 अगस्त 2026 के इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस में पानी के घटते भंडार के बीच सोमवार से ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026 लागू होंगे। पीने के पानी से गाड़ियां धोने, पौधों की सिंचाई और स्विमिंग पूल भरने पर पाबंदी रहेगी। वहीं कौ वाश कारोबार को भी नए नियमों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। मानव तस्करी को लेकर मॉरिशस में फिलहाल 34 पीड़ितों की देखभाल और सरकारी संगठन कर रहे हैं, गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं। इनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। वहीं 21 मामलों की पुलिस जांच या कार्रवाई जारी है। दुनिया में भूख की समस्या में मामूली सुधार के बावजूद करोड़ों लोगों को आज भी भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। मॉरिशस में भी कई परिवार पौष्टिक भोजन जुटाने में

0: मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। चिरियो सोलेय ने कुपोषण से निपटने के लिए और प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बेकाबू जंगल की आग के बीच आपातकाल की घोषणा, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया। आग 9,500 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। उधर स्पेन के कुछ हिस्से भी जंगल की आग से जूझ रहे हैं। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। पानी की हर बूंद अब मायने रखती है। सोमवार से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026 लागू हो रहे हैं। पीने के पानी से गाड़ियां धोने, पौधों की सिंचाई करने या स्विमिंग पूल भरने पर पाबंदी होगी। देश के जलाशय फिलहाल अपनी कुल क्षमता के करीब 61% तक भी भरे हैं, लेकिन सूखे का असर सिर्फ जलाशयों पर नहीं, भूमिगत जल और नदियों पर भी दबाव पड़ रहा है। पानी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार का मार्शल प्लान भी अमल में है। इस पर हम हमारे इस बुलेटिन के दौरान एक बार फिर आएंगे। पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां कल से लागू हो रही हैं। इसका असर आम लोगों के साथ कई तरह की गतिविधियों पर भी पड़ेगा। कौवाश कारोबार को भी अब पानी के इस्तेमाल को लेकर नए नियमों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। ऐसे समय में जब देश में पानी के भंडार पर लगातार दबाव बना हुआ है, कौवाश संचालक इन पाबंदियों के लिए कितने तैयार हैं, इस पर हम एक बार फिर हमारे अन्य बुलेटिनों में आएंगे। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। नशे की लत युवाओं के लिए एक बढ़ती चिंता। डॉक्टर इद्रिस गुमानी ट्रीटमेंट सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक 16 से 24 साल के करीब 1,00,000 युवा रोजाना ड्रग्स का सेवन करते हैं। नशे की रोकथाम और इलाज के क्षेत्र में काम करने वाली इस संस्था ने आज प्लेनवेयर की अल अक्सा मस्जिद के सहयोग से एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस दौरान युवाओं को नशे के नुकसान और इससे दूर रहने के बारे में जानकारियां दी गई। कुणाल गुजी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: प्लेनवेयर के अल अक्सा मस्जिद में 12 से 18 साल के नौजवानों के लिए ड्रग्स पर एक जागरूकता सत्र लगाया गया। डॉक्टर इद्रिस गुमानी ट्रीटमेंट सेंटर के आयोजकों के अनुसार कम उम्र से ही ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स के धीरे धीरे बढ़ रहे मस्तिष्क पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है।
2: Nous faisons constater depuis ces cinq dernières années un rajeunissement dans la consommation des drogues en général, que ce soit la cigarette, l'alcool, le cannabis, avec les autres produits illicites.
1: पिछले पाँच सालों में ड्रग्स के आदि लोगों की आयु कम होती जा रही है। 19 साल का व्यक्ति 11-12 साल की उम्र से ही नशे का आदि होने लगता है। 20 साल पहले 26 से 29 साल के लोगों को ये समस्या होती थी, अब ये उम्र 18 से 24 साल हो गया है। इस पहल का मकसद है ड्रग्स के खतरे को कम करना, स्पष्ट और सही जानकारियां देना, दोस्तों के दबाव का सामना करने में नौजवानों को सक्षम बनाना।
3: Aujourd'hui, avec le problème de bullying dans l'école, le problème de peer pressure,
1: बुलिंग और दोस्तों का प्रभाव, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। बच्चों को जागरूक करना जरूरी है कि वे इस जाल में न पड़ें, क्योंकि इससे बच निकलना बहुत मुश्किल है। आयोजकों के अनुसार इस सत्र में शामिल कुल 26 युवाओं के ड्रग्स को लेकर विचार जमीनी हकीकत से काफी अलग हैं। औपचारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 55,000 युवा रोजाना मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। हालांकि डॉक्टर इद्रिस गुमानी केंद्र के अनुसार वास्तविक संख्या इससे दुगनी हो सकती है।
0: मॉरिशस की सड़कों को अब गूगल मैप्स पर उतारने की तैयारी है। इसके लिए वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की टीम मॉरिशस में है और खास कैमरा से लेस 3 गाड़ियां देश भर की सड़कों की तस्वीरें खींच रही हैं। करीब 6,000 किलोमीटर सड़कों को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। तस्वीरें

0: तैयार होने के बाद इन्हें गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू पर डाला जाएगा, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग मॉरिशस को देख सकेंगे। मॉरिशस के बाद रोड्रिग्स में भी ये काम किया जाएगा। दसापला स्वामी की रिपोर्ट पर एक बार फिर यशना मिश्रा का विवरण।
1: वे एक महीने तक देश का दौरा करके सभी सड़कों को नक्शे में उतारेंगे, साथ में पर्यटन स्थल भी, वो भी 360 डिग्रीज में। तीन गाड़ियां जिनके ऊपर कैमरे लगे हैं। वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 से फ्रेडेरिको की टीम का काम है ऐसे चित्र कैमरे में उतारना। ये 8K में 360 डिग्रीज कैमरे हैं जो स्ट्रीट व्यू चित्र खींचते हैं। हम इसे साधारण गाड़ियों में डालकर इसे एप्लीकेशन के साथ जोड़ते हैं। ये देखते हैं कि कौन सी सड़कें बची हैं। हम सिर्फ अच्छे मौसम में ही बाहर निकलते हैं ताकि सबसे अच्छी तस्वीरें खींच पाए। हर रोज गाड़ियां 250 किलोमीटर पार करती हैं। इस बोर्ड में देख पाते हैं कि 20% सड़कें नक्शे में उतार दी गई हैं। इस वक्त एक चालक एक मुख्य सड़क पर है। मॉरिशस में लगभग 6000 किलोमीटर सड़क है। चित्रों को सही रूप देकर गूगल मैप्स में डाला जाएगा। अंदाजा है कि 1.5 महीने लगेंगे चित्र खींचने में। 16 लोग इसमें जुड़े हैं 2 चरणों में। साल के अंत तक ये चित्र इंटरनेट पर आम होंगे। हिंद महासागर में मॉरिशस एकमात्र देश है जहां ये सेवा उपलब्ध है। इलाके के अन्य देशों की ओर भी हम बढ़ेंगे। 360 डिग्रीज फोटोज अब मुसाफिरों के लिए आम है। इस परियोजना से ज्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे। मॉरिशस टूरिज्म प्रमोशन अथॉरिटी इस परियोजना के सही संचालन के लिए सभी मंजूरियां दे रही हैं। पर्यटकों और नागरिकों को इससे फायदा होगा। 3D और 360 में मॉरिशस को देखना, विश्व डिजिटल नक्शे में भी ये दिखेगा। मॉरिशस के बाद कैमरे रोड्रिग्स ले जाए जाएंगे।
0: आज शुक्रवार को आत्सू ने सैंक्वा इलाके में बड़ी कार्रवाई की। मेट्रो नॉर्थ डिवीजन से जुड़ी एक टीम ने एक बैग बरामद किया जिसमें नशीले पदार्थों के साथ पैकेट मिले। बरामद नशीले पदार्थों में मुख्य रूप से हेरोइन शामिल थी। इन्हें अलग अलग तरीकों से छिपा कर रखा गया था। कुछ पदार्थ सील्ड प्लास्टिक पैकेटों में और फूड रैप में पैक थे, जबकि 175 एल्यूमिनियम फॉइल में भी नशीले पदार्थ छिपाए गए थे। इसके अलावा सिंथेटिक कैनाबिनॉइड के 2 पैकेट भी बरामद किए गए। कुल मिलाकर करीब 549 ग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 8.4 मिलियन मॉरिशन रुपए से अधिक बताई गई है। मामले की जांच जारी है। पुलिस अब नशीले पदार्थों के स्रोत का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। मानव तस्करी एक ऐसी समस्या है जो किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं। मॉरिशस में फिलहाल मानव तस्करी के 34 पीड़ितों की देखभाल NGOs कर रही है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। वहीं 21 मामलों की पुलिस जांच या कार्रवाई जारी है। देश में ऐसे मामलों की संख्या फिलहाल सीमित है, लेकिन इनसे निपटने के लिए गैर सरकारी संगठन, अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से कई व्यवस्थाएं मौजूद हैं। दुनिया में भूख की समस्या में मामूली सुधार जरूर हुआ है, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था FAO की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मॉरिशस में भी कई परिवारों के लिए भरपेट और पौष्टिक भोजन जुटाना आसान नहीं है। संस्था सिरियों सुलई के मुताबिक खासकर बच्चों को सही पोषण देने में कई परिवारों को परेशानी हो रही है। संस्था का कहना है कि कुपोषण से निपटने के लिए अभी और प्रयास की जरूरत है। भक्ति की परंपरा श्री कृष्ण भगवान के प्रति आस्था और पीढ़ियों तक आगे बढ़ता आध्यात्मिक संदेश, इसको उनके लिए ये साल 2 खास पड़ाव लेकर आया है। संस्था अपनी संस्थापना के 60 साल पूरे कर रही है। वहीं मॉरिशस में इसके संस्थापक श्रीला प्रभुपाद की ऐतिहासिक यात्रा के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। आधा शताब्दी बाद भी उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत मॉरिशस में

0: हैं यशरा मिश्रा।
1: भगवद गीता की शिक्षाओं को बढ़ावा देना और कृष्ण चेतना का संदेश लोगों तक पहुंचाना, इसी उद्देश्य के साथ भारतीय दार्शनिक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की। आज दुनिया भर में 800 से अधिक संस्थाएं उनके संदेश के प्रसार में योगदान दे रही हैं। आध्यात्मिक गुरु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1975 में मॉरिशस का दौरा किया। देश की उनकी एकमात्र यात्रा ने यहाँ के सदस्यों पर गहरी छाप छोड़ी और मॉरिशस में इस आंदोलन की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृष्णा कॉन्शियसनेस शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, प्रभु के साथ हमारा संबंध क्या है और हमें कैसे जीना चाहिए। प्रभुपाद को 1975 में उस वक्त के प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने आमंत्रित किया था। मॉरिशस में इस्कॉन की स्थापना को 60 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्वामी प्रभुपाद द्वारा दी गई शिक्षाएं और मूल्य आज भी इस विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हम कृष्ण भक्त हैं और हमें सभी जीव प्रिय हैं। हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में मॉरिशस पोस्ट के सहयोग से एक स्पेशल डे कवर तैयार किया गया। इसका अनावरण गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने किया।
0: जिसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां कल से लागू हो रही हैं। इसका असर आम लोगों के साथ साथ कई तरह की गतिविधियों पर भी पड़ेगा। कौवाश कारोबार को भी अब पानी के इस्तेमाल को लेकर नए नियमों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। ऐसे समय में जब देश में पानी के भंडार पर लगातार दबाव बना हुआ है, कौवाश संचालक इन पाबंदियों के लिए कितने तैयार हैं, सुनते हैं इस रिपोर्ट में संतना पोंसोनो की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
2: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के नए नियम लागू होने से पहले इस रविवार कई लोगों ने अपनी गाड़ियों की सफाई करवाई। कौवाश स्टेशनों पर कामकाज सामान्य रूप से चला, हालांकि इस सोमवार से गाड़ी धोने की आदतें बदलनी होंगी। इस स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों ने तैयारी के लिए कदम भी उठा लिए हैं। खासतौर पर वाटर सप्लाई नेटवर्क पर दबाव कम करते हुए कामकाज जारी रखने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक पसंदीदा समाधान है। इस सिस्टम से काम चलता रहता है बशर्ते पानी का काफी भंडार मौजूद हो। हालांकि कई हफ्तों से बारिश कम पड़ी है और कुछ कारोबार मालिकों के लिए अनिश्चितता का माहौल पहले से ही काफी गंभीर हो गया है। कुछ लोगों ने पाबंदियां लागू होने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। नए नियम लागू होने से पहले रविवार को टूरिज्म अथॉरिटी की टीमें जरूरी सफाई के कामों में जुटी रही। याद रहे कि CW की पाबंदियों में गाड़ियां धोने, घर आंगन की सफाई, बगीचों में सिंचाई और स्विमिंग पूल भरने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ये पाबंदियां इस सोमवार 10 अगस्त से लागू होंगी और अगले 30 नवंबर तक जारी रहेंगी।
0: मानव तस्करी एक ऐसी समस्या है जो किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं। मॉरिशस में फिलहाल मानव तस्करी के 34 पीड़ितों की देखभाल NGOs कर रही हैं। इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए गैर सरकारी संगठन, अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से कई व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर, अदिति अवतार का विवरण।
2: मानव तस्करी में लोगों का शोषण होता है, चाहे वे विदेशी नागरिक हों या स्थानीय लोग। इसके सबसे आम रूप हैं जबरन मजदूरी, यौन शोषण और जबरदस्ती भीख मंगवाना। मॉरिशस में इंटरनेशनल

0: ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक व्यवस्थित तरीका अपनाकर इस समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: We look at partnerships.
0: IOM की चीफ ऑफ मिशन आलिया हिरजी कहती हैं, हम साझेदारी, पीड़ितों की सुरक्षा, न्यायिक प्रोसिक्यूशन और रोकथाम पर बल देते हैं। मैं मॉरिशन सरकार की प्रशंसा करती हूं, जो इस सिलसिले में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए कटिबद्ध हैं और इसके लिए हमारी संस्था से समर्थन की मांग की गई है। हम देखेंगे कि किस तरह हम आपसी सहयोग बढ़ा सकें, जिससे मानव तस्करी के खिलाफ संघर्ष तेज की जा सके। मॉरिशस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या गंभीर नहीं है, लेकिन इस तरह का एक भी पीड़ित होना बड़ी बात मानी जाती
1: है।
0: मानव तस्करी के खिलाफ संघर्ष व्यवस्थित और मजबूत करने की दिशा में IOM ने पिछले दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री दफ्तर के समक्ष एक महत्वाकांक्षी कानूनी ढांचा प्रस्तुत किया। IOM की प्रोग्राम एसोसिएट जानवी गुरा कहती हैं, जरूरी है कि जागरूकता और तेज की जाए, विभिन्न साझेदारों की तरफ से अलग अलग पहलुओं के प्रयास होने चाहिए। इसके साथ ही कार्य योजना में इस बात पर भी बल दिया गया है कि पुरुषों के पीड़ित होने के पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पास्कल जैसे गैर सरकारी संगठन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीड़ितों की मदद के वास्ते अथक प्रयास करते हैं। अभी ऐसे 34 लोगों की देखभाल की जा रही है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल
2: हैं।
0: पास्कल की निदेशिका मिलानी वाले कहती हैं, जैसे ही पीड़ित शेल्टर में आते हैं तो हम उनकी समस्याओं का जायजा लेते हैं। कई लोग ट्रोमा से गुजरते हैं, दुर्भाग्यवश इसके लिए काफी समय लग जाता है, कुछ मामलों में 3 साल तक लग रहे हैं। हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और आत्मनिर्भरता के प्रोग्राम भी चलाते हैं, क्योंकि उन्हें में गवाही के लिए रहना पड़ता है। इस संघर्ष में विभिन्न टापुओं के बीच सहयोग महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके लिए गैर सरकारी संगठन जीमुआ अहम भूमिका निभा रहा है। हिंद महासागर के लिए संगठन के निदेशक यूलान ओडोल कहते हैं, मानव तस्करी जैसे अपराध के ज्यादातर पीड़ित मारागास्कर से होते हैं। जीमुआ की वहाँ भी एक शाखा है। हम विशेष रूप से जागरूकता पर बल देते हैं, जानकारियों की कमी से आसानी से ये अपराध किए जा सकते हैं। लाइन बैरक्स स्थित पुलिस की कम्बैटिंग ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यूनिट लगभग 3 सालों से कार्यरत है। इसके अंतर्गत अभी इस तरह के 21 मामलों की जांच चल रही है। चीफ इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद नाजिर अली कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मानव तस्करी के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। यदि परिस्थितियाँ गंभीर हो, जैसे यदि पीड़ित कोई बच्चा हो, कोई पत्नी हो, या यदि पीड़ित को ड्रग्स या और कोई नशा दिया गया हो जिससे उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके। पुलिस की कम्बैटिंग ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यूनिट ने 148 की एक हॉटलाइन, एक व्हाट्सएप नंबर और एक खास ईमेल जारी किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी गुमनाम तरीके से दे सकता है।
3: कई साल की देरी के बाद प्लानवानियों में DBM के SME पॉक का काम जल्द फिर शुरू होने की उम्मीद है। बाढ़ और सुरक्षा से जुड़े खतरों के कारण इस परियोजना का काम रोक दिया गया था। छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए बनाए जा रहे इस SME पॉक पर अब तक करीब 200 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। दैविक राजकुमार, याचना मिश्रा।
4: 2020 में प्लानवानियों में छोटे और मध्यम उद्योगों के इंडस्ट्रियल पार्क के कार्य रोक दिए गए, कारण 2022 में उत्पन्न बाढ़। तब से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए अब एक रिटेंशन बेसिन का निर्माण किया जाएगा। कार्य रोके गए क्योंकि जब जगह चुनी गई तो कोई अध्ययन नहीं किया गया और बाढ़ के कारण यहां पानी जमा हुआ। LDA जिला परिषद ने अनुमति नहीं दी। सभी अध्ययनों के बाद अब एक रिटेंशन बेसिन बनाया जाएगा, बाढ़ का पानी वहां जमा होगा। कार्य 70% पूरे हो गए हैं। बनने के बाद DBM के इस पार्क में ठेकेदारों के लिए 40 जगह उपलब्ध होंगे। कई मांगे मिली हैं। 40 स्टॉल्स होंगे। यदि हर एक SME के लिए 10 लोग होंगे तो लगभग 400 नौकरियां पैदा होंगी, उत्पादकता बढ़ेगी। चुनाव क्षेत्र के सांसदों के अनुसार लंबे समय से इस परियोजना

0: योजना का इंतजार हो रहा है। आज बैठक लगी देखने के लिए कि इस परियोजना को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के निवासी भी एक उद्योग शुरू कर
1: पाएं।
0: कई मांगे मिली जहां लोग इलाके में ही स्थान ढूंढ रहे हैं। ये एक सुनहरा मौका है उनके लिए। बाढ़ से बचाव के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी भी कार्य चला रहा है। रिटेंशन बेसिन और पार्क के निर्माण कार्य एक साथ चलाए जाएंगे।
2: टेक्निक, रफ्तार और नई सोच के साथ अब लक्ष्य विश्व मंच का है। स्टेम रेसिंग मॉरिशस जीतने के बाद 37वीं कॉलेज के ग्रेड 12 के छात्र वर्ल्ड फाइनल की तैयारी में जुटे हैं। टीम सीएसई वेलोसिटी अक्टूबर में सिंगापुर में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करेगी। फिलहाल टीम अपनी नई रेसिंग कार की रफ्तार और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। 3 दशकों के सफर के बाद पिल्स अब एक नए रूप में आगे बढ़ रही है। एचआईवी को लेकर जागरूकता फैलाने और इससे प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए काम और मजबूत करने के लिए संस्थाने नई पहचान पेश की है। इसमें नया लोगो, नई जागरूकता मुहिम और आने वाले समय में नई डिजिटल सुविधाएं शामिल हैं। पोर्ट लुइस के नूविला कम्युनिटी सेंटर में आयोजित एक समारोह में नए लोगो की लॉन्चिंग की गई।
3: Une nouvelle identité, l'ONG PILS, afin d'être une porte d'entrée et d'encourager ceux touchés par le VIH à venir de l'avant. Cette réinvention s'inscrit dans le cadre des 30 ans de l'organisation au sein de la société mauricienne.
4: संगठन के 30 साल पूरे होने के अवसर पर किया गया है। एनजीओ के संस्थापक निकोला रिटर कहते हैं, 30 साल से PILS को प्रणाली के अनुसार काम करना पड़ा। हमने प्रस्ताव रखा, नयापन लाया गया और ये दिखाया कि लोगों को इलाज प्रदान किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से अस्पतालों के बाहर। इस नई पहचान का अनावरण एनजीओ के नूविला सामुदायिक केंद्र में किया गया, जिसमें संगठन के सहयोगी और साझेदार भी मौजूद थे। इसके तहत रोकथाम और जागरूकता के लिए एक नया अभियान भी शुरू किया गया है, जिसका खास तौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके कार्यकारी निदेशक जोएल सामी कहते हैं, फील्स यौन संबंधी स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि नौजवान लोग नाजुक वर्ग के हैं, कम उम्र से ही उनके बीच जागरूकता फैला रहे हैं। लोगों के लिए जानकारी और सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से एक नई वेबसाइट भी शुरू की जाएगी। इसके साथ एक मोबाइल ऐप भी होगा। दोनों को इस साल नवंबर तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।
2: और विदेश में जो खबरें हैं सुर्खियों में, एक बम, कुछ ही पल और एक शहर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम ने हजारों जिंदगियां छीन ली और दुनिया को परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत दिखाई। आज उस घटना के 81 साल पूरे हो गए हैं। क्या हुआ था उस दिन और इतिहास में क्यों हमेशा के लिए दर्ज हो गया नागासाकी, सुनते हैं।
5: 9 अगस्त 1945 दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। आज इस हमले के 81 साल पूरे हो गए हैं। नागासाकी पर गिराए गए प्लूटोनियम बम का नाम फैटमैन था। इसे अमेरिकी B-29 विमान से सुबह 11:02 पर गिराया गया था। इस हमले में 1945 के अंत तक करीब 70,000 लोगों की मौत हुई थी। इससे सिर्फ 3 दिन पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें उसी साल के अंत तक करीब 1,40,000 लोगों की जान गई थी। इन दोनों हमलों के कुछ दिनों बाद 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा की और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। आज नागासाकी और हिरोशिमा के परमाणु हमलों में जीवित बचे लोगों की संख्या घटकर 91,105 रह गई है। जापान में इन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। उनकी औसत उम्र अब 86 वर्ष से अधिक है। समय बीतने के साथ इन घटनाओं के प्रत्यक्ष गवाहों की संख्या लगातार कम हो रही है।
2: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग बेकाबू होती जा रही है। तेजी से फैलती आग के कारण प्रांत में आपातकाल की

0: घोषणा कर दी गई और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। आग रातों रात लगभग दुगनी होकर 9,500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई। कई मकान और संपत्तियां भी इसकी चपेट में आई हैं। उधर स्पेन के कुछ हिस्सों में भी भीषण गर्मी के बीच जंगल की आग का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करें कुछ अलग, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से लेकर मणिपुर की रंग बिरंगी संस्कृति तक भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति, खेती और परंपराओं का अपना एक खास रंग है। कश्मीर में सेब की सदियों पुरानी पहचान अब हाई डेंसिटी खेती जैसी आधुनिक टेक्निक के साथ नया रूप ले रही है। तो मणिपुर में नवा तंगमय उत्सव यानी खीरा उत्सव स्थानीय उपज के साथ पारंपरिक गीत संगीत नृत्य और संस्कृति की खूबसूरती को सामने ला रही है।
1: खूबसूरत वादियां, दूर तक फैले पहाड़, ठंडी हवाएं और इनके बीच सेब से लदे बाग, कश्मीर की तस्वीर से सेब को अलग करना शायद मुश्किल है। यहां सेब सिर्फ एक फल नहीं बल्कि पीढ़ियों से चलती आ रही खेती की परंपरा और हजारों परिवारों की रोजी रोटी का अहम हिस्सा है। अब बदलते समय के साथ इन बागों में नई टेक्निक भी अपनी जगह बना रही है। हाई डेंसिटी खेती के तहत कम दूरी पर ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। पारंपरिक बागों के मुकाबले ये पेड़ जल्दी फल देना शुरू करते हैं और किसानों को बेहतर पैदावार हासिल करने में मदद करते हैं। कतारों में सजे छोटे छोटे पेड़ और उनकी शाखाओं पर लगे चमकते लाल सेब इन बागों को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान, लोक संगीत की धुन और मणिपुर की संस्कृति की खूबसूरत झलक। मौका था नवे टंगमय उत्सव यानी खीरा उत्सव का, जहां एक साधारण सी फसल के बहाने स्थानीय संस्कृति के कई रंग एक साथ देखने को मिले। उत्सव में स्थानीय किसानों की उपज और अलग अलग किस्मों के खीरे प्रदर्शित किए गए, लेकिन समारोह की रौनक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। पारंपरिक गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मणिपुर की समृद्ध विरासत को मंच पर जीवंत कर दिया। ये उत्सव स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ अपनी परंपराओं और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक खूबसूरत जरिया है।
0: बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारी की ओर, यशा मिश्रा के साथ।
2: पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद भी मौसम बरसाती रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। रवारेखा के परे 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:35 पर, शाम को सूर्यास्त 5:55 पर होगा।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारी सहयोगी शिव है, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर। शुभ समाचार सुनिए। लातापी रोड बोन अकोई में, लातापी रोड बोन अकोई में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्री रामस्वरूप निरंजन, जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:45 पर उनके बहनोई देवेंद्र राव के घर बोनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचा की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 2:45 PM। आलिता मारे बॉम्बू में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ज्योति नापुल, पैदाशनाम ननको और जिनची मादाम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है।

उनकी अर्थी कल 2:15 पर उनकी बेटी उषा देवी नापोल बिजलोल के घर आले तामागे बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय सैपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2:15 PM। कनाल लेन पाल्मा काट्रबोन में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री हीरालाल रामबन जैन जीवन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामबन के घर पाल्मा काट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। मिशन टुमारो एट 1 PM। ब्रांच रोड लालमाटी में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सुनीलाल रुपना जिन्हें सुनील के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी बबीता रुपना के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावौंचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM। गृधारी रोड कैथोसियो में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री महेंद्र गृधारी जिन्हें सीता के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे कुसी वर्मा गृधारी के घर कैथोसियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 1 PM। रुद्बासें कैट्रबोन में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड के श्री अंबिराव जयवंत सोनू जिन्हें अंबिराव के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले मेजिन शुगर स्टेट में काम करते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 उनके घर कैट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 9:30 AM। रुद पांचू स्टानले रोजिल में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्री भवानी दीन तिलोती पैदाशी नाम सांसनरुआ और जिन्हें शर्मा के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर स्थानीय रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगौद कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 10 AM। कांडालेन रोजिल में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मिनियामा इरापा पैदाश नाम कौपेन और जिन्हें आती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 उनके घर ट्रेफ रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगौद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 9:30 AM। स्कूल लेन कुतेज में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मानती बिकन पैदाशाम रामनारायण और जिन्हें मानती के नाम से लोग ज्यादा जानती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति देवानंद बिकन के घर कुतेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 1 PM। लेस्पेरांस ट्रेबुशे में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती महालक्ष्मी पुनित पैदाशी नाम सलांदी और जिन्हें रेखा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 उनके घर लेस्पेरांस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 9:30 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

MBC Radio 24 hours a day. सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। सीबी के इन ग्राहकों को सूचित किया जाता है जो बेलोम्ब और सैमौतें बिज कप में रहते हैं कि आगामी मंगलवार 11 अगस्त 2026 को प्रातःकाल के 9 से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी सभी ग्राहकों को सूचित करती हैं

जैसे ही सभी मरम्मत कार्य समाप्त हो जाएंगे तैसे ही सुचारू रूप से बिजली फिर से जारी कर दी जाएगी बिना कोई पूर्व सूचना से। सीबी सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं इन असुविधाओं के लिए। ये थी एक विज्ञप्ति सीबी की ओर से।

首歌的时间治愈所有烦躁，下面这首写给平凡生活里的温柔。

0: भज ले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: भज ले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? दिन भर के कार्य के बाद अब बैठकर थोड़ा सा आत्मचिंतन किया जा सकता है, सोचा जा सकता है कि मैंने दिन भर में क्या किया, कुछ कीमती चीज कमाई या सब दुनियावी चीजों में ही खोया रहा। इसीलिए भज ले प्रभु का नाम, इसीलिए आवश्यक है कि सर्व के हित के साथ हम जुड़ें, वैर और द्वेष से दूर हों ताकि मन शांत हो सके। तो सुनते हैं इस भजन को।

भजन में भाव हैं, जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती है विभिन्न अवस्थाओं में वो संसार के झंझटों में फंस जाता है। केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है,

श्रोतो, जीवन में शांति का बड़ा महत्व है। यदि जीवन में शांति ना मिली कार्यों को करने के उपरांत, तो फायदा क्या? इसीलिए हम कहते हैं भजले प्रभु का नाम। ये जो प्रभु का नाम भजना है, ये व्यक्ति को आत्मशक्ति देता है। ये लादने की चीज़ नहीं है कि मैं किसी को बोलूं कि बैठ के तुम प्रभु का नाम जपो और वह जपता जाए। अगर मान लो वह मेरा कहना मान भी लेगा तो मन उसका भटकेगा। भीतर से इच्छा शक्ति जब तक जागृत नहीं होगी, तब तक परिवर्तन ज़रूरी नहीं है। इसीलिए श्रोताओं, प्रभु का नाम लेते हुए मन में सत्य और अहिंसा जैसे तत्वों को आगे बढ़ाना, मनसा वाचा कर्मणा किसी को कष्ट ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, अहिंसा को लेकर कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि राम ने भी तो शस्त्र उठाए, कृष्ण ने भी तो युद्ध में भाग लिया, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन लिया। तो श्रोताओं, इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि अहिंसा जीवन का पहला धर्म है, लेकिन जहाँ असत्य है, जहाँ पर अन्याय है, वहाँ पर व्यक्ति को यदि कठोर होना पड़ता है तो यह होना ही चाहिए, क्योंकि संसार में सत्य की स्थापना के लिए कठोरता, तप और संयम चाहिए। पर यह निर्णय करना कि सामने वाला गलत कर रहा है नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो श्रोताओं, जो व्यक्ति ईश्वर का नाम लगातार लेता है, उसे यह समझ आने लगती है और उसकी समझ बढ़ने लगती है। लेकिन छोटे छोटे जीवों को, जो बेचारे संसार में केवल प्राण लेते हैं, जीते हैं, अपना घर बसाते हैं, उनको अपने स्वार्थ के लिए मारना, यह तो हिंसा है ना, यह अहिंसा नहीं है। तो इन बातों का ध्यान प्रभु का भक्त बहुत रखता है।

श्रोताओं, यदि हम प्रभु का भजन गाते हैं और प्रेम को हृदय में उतारते हैं तो हम किसी का भी नाजायज फायदा नहीं कभी उठाएंगे। अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए हम दूसरे को कष्ट नहीं देंगे, यहाँ तक कि हम खुद कष्ट को सहकर सामने वाले को सुख देने का प्रयास करेंगे। कोई बीमार है तो उसकी मदद करेंगे। आज तो इतना अहंकार है कि घर में कोई आए तो हम नमस्ते भी करना नहीं चाहते, तो प्रभु का नाम तो क्या भजेंगे। जो प्रभु का नाम भजता है उसके भीतर तो विनम्रता आने लगती है।

वासी प्रेम। और अंत में श्रोताओं, इस विनम्रता को समझना होगा। जितनी विनम्रता आएगी उतना ही अहिंसा का भाव बढ़ता जाएगा, और जितना अहिंसा का भाव बढ़ेगा उतने पूरी दुनिया के युद्ध और मन के युद्ध भी कम होंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का हित सोचें, पूरे समाज का हित सोचें। ये तब होता है जब हम सर्व के कल्याण की भावना से प्रभु का नाम ध्यान करते हैं। तो श्रोताओं, आइए अलका धनपत और यज को अनुमति दीजिए, इस भजन को सुनिए और उसी के साथ आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मस्जिद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की उर्दू नशियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से हैं। सामीन मोहतरम, आइए आज की उर्दू महफिल की इब्तिदा इस खूबसूरत कलाम से करते हैं।

मुहतरम सामीन, अल्लाह ताला के खौफ में रोना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जो अल्लाह ताला के खौफ से रोया यहाँ तक कि दूध थन में वापस न आ जाए। अल्लाह ताला का खौफ दिल को नरम करता है। गुनाहों पर निदामत और आंसू अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत महबूब है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:09 हो गल बाश, सभी श्रोतागण के हमार नमस्कार स्वीकार कर जा। आज हर रविवार के दिन और वो रात्रि में तो ठंडा गिरता तो हर खातिर भोजपुरी तड़का मन कर ले कोनो बढ़िया गाना सुने के तो अवश्य नंबर वा मिला ल का सौदे का थोवा सैक उषा तो हर संगे रात के 11 बजे ले। आज का पहल का गीत सुना जा नीरज गुप्त मधु के गावल गीत

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: रात के 9:21 हो गलबा श्रोता लोग एक से बरिया भोजपुरी गीतवन के भंडार बातें हमने के हिया बिना झिझक के मांग कर जा और गमतवाता शुरू कर जा हिया परी संगीता जी जन रही ला क्यू पी परी बखत हमने के सुनता गाना मांगा था वंजा अपन खातिर और अपन परिवार खातिर और साथ में सुदेश जी जो रहते हैं वाहकुआ इबकत काम करता ENT हॉस्पिटल में तो चला अगला गीत तुहर खातिर और पूरे स्टाफ खातिर

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

मॉरिशस के भोजपुरी जगत में तक कितने चमकता सितारा जगमगावेला और भोजपुरी तरका के माध्यम से और तो लोग के फरमाइश से वो लोग के शान और बढ़ेला। बहुत धन्यवाद आप लोगन के। अगला गीत भोजपुरी बोल के गावल गीत और ई गाना जाएगा संदीप जी खातिर उ रहिला लाफलोगा और बखत सात देवता और खासकर गाना एकर खातिर अपन पत्नी सुरेखा खातिर और बेटी आशा खातिर।

बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुद ही चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: रात के 10:53 हो गलबा श्रोता लोग, आज रविवार 9 अगस्त 2026 भोजपुरी तड़का तुहर नाम। जीवन में कबो कबो आप लोगन के लगेला कि बढ़िया मुश्किल होता, परंतु मनुष्य के धरती पर जन्म ले के दूसर का मतलब है समस्या के समाधान ढूंढे के अपन बुद्धि से, धैर्य से और विश्वास से। तो विश्वास रखिया और अगला गीत चलाओ अब जा अमृता जी खातिर जन हमने के सुनाता ओकुले से गाना अपन खातिर और अपन परिवार खातिर। सज्जन के सारी सुनीता ननकू के गावल गीत

रात के 10:10 हो गल बा। श्रोता लोग जितना साधन बा जिंदगी में खुशी से रहे कि आप लोगन के आप बोलब। संगीत, स्पोर्ट्स, टीवी और विशेष रूप से रेडियो तोहर उत्तम साथी तोहर जीवन में रस एवं बहार लावेला। त चिंता करे के ना चाहेला, समझदार के इशारा ही काफी बा। त चल अगला गीत सुना जा, बहुत ही प्यारा गीत, सुभावती डुमन के गावल गीत। और ये गाना बसंती जी खातिर जन हमने के सुनता मेबग से, गाना एकर खातिर पति राजन खातिर और बच्चे लोग और पूरे परिवार खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का।

रात के 10:29 हो गल बा संघतिया लोगन आप त भोजपुरी प्रेमी हवा जा अपन पुरखन के सपना सच करत हवा पर अब आप अपन लयका लयका के और नई पीढ़ी के ही भोजपुरी के पाठ धानी सिखाया जा चलपो पूरी चला चले के किशोर किमिया के गावल गीत और ये गाना खासकर सुदेवी जी खातिर जो न रहिला वाकवा और ये बखत हमने के सुना था गाना अपन खातिर और देवीना जी जो हॉस्पिटल में काम करीला ये बखत हमने के सुना था तो बो कुराज तो यू और ये गाना तुहर खातिर और तुहर दोस्तों खातिर तो चला दोस्त लोगन खातिर और जितना कोई कई वक्त गाड़ी चलावता तो तुहर खातिर भी ये गाना सावधानी बरते के चाहिए और काहे कि अभी तो बारिश होता

0: भोजपुरी तड़का।
1: श्रोता लोगन, ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तुहर से आज्ञा चाहत है, हमेशा अपन ख्याल रखिया और इस सभी से प्रेम से पेश आया जा। नमस्ते और शुभरात्रि।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर आप सुन रहे हैं सुनहरे पल, जहाँ हर शाम हम लेकर आते हैं पुराने बॉलीवुड गीतों की वो खुशबू जो दिल को सुकून दे जाती है। जिंदगी की भागदौड़ में हमेशा हम अक्सर अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं, है ना। लेकिन पुराने गाने हमें कुछ देर के लिए उन हसीन लम्हों में वापस लेके जाते हैं। शायद आज का कोई गीत आपका कोई पहली मोहब्बत की याद दिला दे, स्कूल के दिनों या परिवार के साथ गुजरे खूबसूरत पल याद दिला दे। तो मुस्कुराइए, पुरानी यादों को आप गले लगा लीजिए और हमारे साथ इस सुनहरे सफर में जुड़ जाइए और मजा ले लीजिए इन खूबसूरत गीतों का।

दोस्तों, जिंदगी में पैसा और कामयाबी जरूरी है, लेकिन सबसे कीमती चीज होती है हमारी यादें, और पुराने बॉलीवुड गीत उन यादों को हमेशा जिंदा रखते हैं। सुनहरे पल में हम सिर्फ गाने नहीं सुनाते हैं, बल्कि उन एहसासों को महसूस कराते हैं जो कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। तो अगर आप भी किसी पुरानी याद में खो जाना चाहते हो, तो बने रहे हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

सो माय लवली लवली लिसनर्स, उम्मीद है आपका दिन अच्छा सा गुजरा होगा। अब वक्त है थोड़ा सा सुकून पाने का पुराने गीतों के साथ। वैसे कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें और कुछ नगमे पुराने कभी नहीं होते। बिल्कुल जी, तो चलिए आज की ये खूबसूरत रात उन्हीं यादों और उन्हीं गीतों के नाम जो बस आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा

आई रियली होप कि आपको दिल से अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत पुराने गीतों का ये सिलसिला जो आपके और हमारे बीच चल रहा है। तो दोस्तों, बचपन की वो शामें याद है ना आपको, जब पूरा परिवार एक साथ रेडियो के आसपास बैठकर गाने सुना करते थे। आज सुनहरे पल उन्हीं यादों को फिर से ताज़ा करने आ गए हैं हम। जहाँ जिंदगी चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक अच्छा गीत दिल को हल्का कर ही देता है। तो बस ये अगला नगमा निशा की तरफ से आपके नाम ऑन रेडियो मॉरिशस।

वैसे तो देखा जाए कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं सकते। पहला प्यार, पहली नौकरी, दोस्तों के साथ बिताए पल और माँ के हाथों का खाना, पुराने बॉलीवुड गीत जो है ना, इन सब यादों को और भी खास बना देते हैं। तो दोस्तों, आज की ये खूबसूरत सी शाम अपने दिल को पुरानी यादों की सैर पर ले जाने के लिए तैयार रखे, क्योंकि अगला गाना मुझे बिल्कुल पता है कि आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ गुनगुनाएंगे। तो लीजिए ये गाना खासकर आपकी उन यादों के नाम।

वल जिंदगी एक किताब की तरह होती है, मानो या ना मानो हमारी जिंदगी बिल्कुल एक किताब की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना खुलता है, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। सुनहरे पल में हम उन्हीं पन्नों को फिर से पलटने वाले हैं पुराने गीतों के साथ। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और अगले गीत का आप दिल से आनंद लीजिए।

सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आ जाते हैं अपना कीमती वक्त निकालकर आपकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको दिल से अच्छा लगा आज का ये शो। लेकिन फिलहाल के लिए जाना तो पड़ेगा जी, तभी तो हम इजाजत मांग रहे हैं ताकि कल हम दोबारा वापस आ सके। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि और शब्बा खैर। अपना ख्याल रखना जी।

0: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहां तक कि।
1: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
0: डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
1: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।